रहाउ। बिन सतगुर प्रतीत न आवई, नाम न लागू पाउ, सुपनह सुख न पावी, दुख मह सवै समाय। जे हर हर कीचै बहुत लोचियै, किरत न मेटिया जाय। हर का पाणा भगती मन्या, से भगत पए दर थाय। गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों, बिन कृपा लया ना जाय। जे सौ अमृत नीरियै, पी बिख फल लागै ताय। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का पाणा कमावंदे, बिख होमै तज बेकार। मन हठ कितै उपाय ना छूटियै, सिमरत शास्त्र सो दोह जाय। मिल संगत साधु उभरे, गुर का शब्द कमाए। हर का नाम

गुर परसादी पाईए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगे गुर पाए। हर रस पीवे सहज रह उड़े।

गुर कै पाण जे चल है ता अन दिन राच है हर नाई रहाऊ। पंखी बिरख सुहावड़े उड़ह चहो दिस जाहे, जेता उड़ह दुख घणे नित दाजह तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज सुपाहे। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिए तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पये किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाऊ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाऊ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट कर्म कमावंदे नित नित होहे खवार। अंतर शांत ना आवई ना सच लगे प्यार, गुरमुखियां मुह सोहणे गुर कै हित प्यार। सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार, आए से परवान है सब कुल का करह उदार। सब नदरी कर्म कमावंदे नदरी बाहर ना कोई, जैसी नदर कर देखे सच्चा कैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याई है। मनमुख बूझ ना पाई गुरमुख सदा मुख उजले,

गुर भगत है बिरला पाए कोई रहाव। सदा सुहाग सुहागणी जे चलह सतगुर पाए, सदा फिर निह चल पाईए ना ओ मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछुड़े फिर कै अंक समाए, हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई भेखी भरम पलाए, गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चकाया गुरम

तै पाई दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े दूजा भाव ना जाने सतगुर भेटे निर्मल हुआ अन दिन नाम बखाने एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर ना जाने खत दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पलाए

पंडित पर वाद बखान है बिन गुर परम पलाय लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जा नाउ चेतै तां गत पाई जा सतगुर मेल मलाई सत संगत मह नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने बिटो जे हर सीती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सीती रंग राता प्रभ निकट बसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय, पल पल पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज न होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गाव्या थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

सहज मलाईसी शब्द मलावा हुई, बिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार। सहज ही सूझी पई सच्चा शब्द अपार, आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार। सहजे अधिष्ट पछाणिय निरपौ

है। सहज करह व्यापार तन दिन लाहा हर नाम लैन अखुत भरे भंडार नानक तोहट ना आवई दिए देवनहार। श्री राग महला तीजा। सतगुर मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाय पूरे शब्द सब सूझी हुई हर नामे रह समाय मन मेरे सतगुर सिंह चित लाय निर्मल नाम सद नव तनु

बुझै सच्चे सच्चा नाम। जिन्नी हऊ मैं मार पछाणिया हऊ तिन बलिहारै जाऊं। मन मुख सच ना जाऊं।

जग जलता देख कै भज पए सतगुर सरना सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्दे पव जल तरना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पथ खोई सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन नानक भगत सुखिये सदा सच्चे नाम रचन श्री राग महला पंजवां जा को मुश्कल अत बने टोई कोई न दे लागू होए दुश्मना साक पे भज खले सबो भजै आसरा चुकै सब असराऊ केते आवै उस पार ब्रह्म।

करी ना किस होवे काज कित आवे उस पार ब्रह्म ता निश्चल होवे राज जा को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया कदे

ब्रह्म तन मन शीतल होय काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संगार पोथी गीत कवित किश कदे न करन धरिया चित आवे उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरिया सास्त सिमरत बेद चार मोखागर बिचरी तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिखदारियां रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़ सातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृतना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग सब किस कीतो ने अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया किरपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यो ज्यो ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यो रंग दोहां सिरिया का खसम आप अवर ना दूजा थाउ सतगुर तुठे पाया नानक सच्चा नाउ तेरी राग महला पंजवा घर पंजवा जानो नहीं पावै कवन बाता मन खोज मार्ग रहाउ ध्यानी ध्यान लाव है ज्ञानी ज्ञान कमाव है प्रभ की नहीं जाता भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवै प्रकारा पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्थ तरमाता एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा एक लूक ना देवह दरसा एक मन ही जाता घाट ना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उकत उपावा त्यागी सरन पावा नानक गुर चरण पराता एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत ना पाया सुरग मच पाया।

आया सिरे सिर तंदे लाया वेख कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावैनो प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाई है जित मिले परम गत पाई है सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आप हूं तुद खवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागणी क्या निशानिया खसम हो खुतिया फिर है निमानिया मैले वेस तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाए जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नु मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सहिया से सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणे का रस आया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लए मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगता हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नदर करह निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिलिया नाम बखानी है सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हौ सतगुर बिटोह कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लए रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जां को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया, रब अपना बिरद संवारिया, कंठ लाए कह रखियों, लगे ना तत्ती वाउ जियो, मैं मन तन प्रभु त्याया, जिए इच्छे अड़ा फल पाया, साहा पातशाह सिर कसम तू, जप नानक जीवै नाउ जियो, तुदे आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सचो सच वर्तदा, जिस पावै तिसै बुझाए जियो, गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चकाया, कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो, गोपी नै गोवालिया, तुदे आपे गोए उठा लिया, हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे भन सवार जियो, जिन सतगुर स्यों चित लाया, तिनी दूजा पाहु चुकाया, निर्मल जोत तिन प्राणिया, ओए चले जन्म सवार जियो, तेरिया सदा सदा चंगे आईया, मैं रात देह बड़े आईया, अन मंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो, श्री राग महला पंजवा, पै पाए मनाई सोए जियो, सतगुर पुरख मलाया, तिस जेवड़ अवन ना कोए जियो, रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा, अम अबे थाम मिठड़ा, पैन पाई सब सजना, तुद जेहा ना ही कोए जियो, तेरा हुक्मे सामने आया, मैं सत का हल जो आया, नाऊ बीजन लगा आस कर, हर बोहल बख्श जमाए जियो, हाँ गुर मिले एक पछाण दा, दुईया कागल चेतना जान दा, हर इक तै कार लायोन, ज्यों पावे तिवें नभाए जियो, तुसी भोगे हो पुंचो हो पाई हो, गुर दी बाण कवाए पैनाइयो, हों हो आ माहर पिंड दा, बाने आंदे पांज शरीक जियो, हों आया सामे ते हंडिया, पांज किरसान मुजेरे मेंडिया, कान कोई कड ना हंगई, नानक बुट्टा को गगराओ जियो, हों वारी कुमा जामदा, एक साहा तुद ते आए दा, उजड़ थे हो वसायो, हों तुद विट हो कुर्बान जियो, हर इत्थे नित ते आए दा, मन चिंदी सो फल पाए दा, सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो, मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा, नौ निध नाम निधान हर, मैं पल्ले बद्दा शिक जियो, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुरे अंतर शब्द वसाया, सतगुर पुरख विखा लिया, मस्तक तर कै हाथ जियो, मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुर सिखा लहंदा पाल कै,

मन दड़ाया, सब मुक्त हुआ सह सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो, सब सिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुन हो अरदास जियो, फूक बजाए सब डिठियां, तुस आपे नयन छडाए जियो, हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसै रयान दा, सब सुखाली बुठियां, इहो हुआ हले मीराज जियो।

बिन मछली ज्यों मरे। मिल मेरे प्यारे प्राण आधारी, गुण साध संग मिल गावे। नानक के स्वामी तार अनग्रहो, मन तन अंक समावे। दखना सोहंदड़ो हबठाए, कोई ना दिसै दूजड़ो। खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेख ते चंतर। तेरे बचन अनूप अपार, संतन आधार। बाणी विचारिय जियो, सिमरत सास ग्रास।

हमारे मन वांछत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे नाथ के नाते सब कै साथे जप जुए जन्म ना हारी है नानक की बेनंती प्रभ पह कृपा कर पव जल तारी है दखना धूड़ी मजन साधखे साई थिए कृपाल लद्दे हब्बे थोकड़े नानक हर तन माल संत सुंदर स्वामी ता।

आप मूर्यो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोया भगत लखियन कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ न माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं।

नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेट तहरे, काम क्रोध लोभ मारिया। कथन न जाए अकथ स्वामी, सदकै जाए नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरिया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपालदा, घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है, तिस बिन अवर ना कोए। जो मोहे माया चित लाएंदे, से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया, हर अंत सखाई होए। मैं हर बिन अवर ना कोए। हर गुर सरनाई पाईऐ बणजारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना मिन पाईआ, हर किने न पाया नाउ। विच हऊं मैं कर्म कमावंदे, ज्यों वेसवा पुत निनाउ। पिता जात तां होईऐ, गुर तुठा करे पसाउ। वड भागी गुर पाया, हर एहलस लगा पाउ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया, हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ, गुर पूरे नाम दरड़ाया। हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जोबन सास है, तब लग नाम त्याए। चलदिया नाल हर चल सी, हर अंते लए छडाए। हों बलिहारी तिनको, जिन हर मन उठायाए। जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो, से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, जन नानक नाम त्याए। मन हर हर प्रीत लगाए, वड भागी गुर पाया। गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आप उपाएंदा, हर आपे देवैले। हर आपे भरम भलाएंदा, हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है, से विरले के ई के। हों बलिहारी तिनको, जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया, मन हर हर उठड़ाए। मन हर हर जपन करे, हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ। घट घट रमैया मन वसै, क्यों पाईऐ कित भत। गुरपूरा सतगुर भेटीऐ, हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है, हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम वसाहु है, हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम त्याया, रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्याहु हो हर प्रभ सत, गुर बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया, से आए मिले गुर पास। सेवक पाए वणजारिया मित्रा, गुर हर हर नाम परगास। तन तन वणजवा पारिया, जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले, ते आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया, जिन्ना आप तुठा गुण तास। हर त्याहु सास ग्रास, मन प्रीत लगी तिन्ना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना

तुदे उपाय कै आप कारै लाई तू आपे वेख विगसदा अपनी वडियाई हर तुदहो बाहर किछ नाही तू सच्चा साई तू आपे आप वरतदा सबनी ही थाई हर तसै त्यावो संत जन हो जो लय छुड़ाई। श्लोक महला पहला। फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ सबना जिया इका शाओ आप हो जे को भला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लिखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो किसे आगे मर चलिया त्रिग जीवन संसार ता कह पाछै जीवना पौड़ी तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वाह पार करीवे इक नानो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे वे आप छुट्टे परवार सिओ तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके वसिया सोए वक्त भी चारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जां कीमत पाए ता कही ना जाए सरै सरयत करह विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जिहे तिर देखा तेह तिर मौजूद। महला तीजा। गुर सभा एव ना पाई ना नेड़ ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रह हदूर। पौड़ी। सप्त दीप सप्त सागरा नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराण हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझे त्यावह जी जंत हर सार पाणा जो गुरमुख हर अराध दे तिन्हो कुरबाणा तू आपे आप वरतदा कर चोज वडाणा। श्लोक महला तीजा। कलोम साजनी क्या सदाई है हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब कै रंग रहै कबहू ना टूट स्नेहो। कलोम साजनी जाए सी लिखिया पी नाले जाए नानक सह प्रीत ना जाए सी जो तुर छोड़ी सच्चै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल ना चलई वेखो को व्यो पाए सतगुर सच दड़ाया सच रहो लिवलाए नानक शब्दी सच है करमी पल्ले पाए। पौड़ी। हरे अंदर बाहर एक तू तू जान है पेत जो कीचे

पौड़ी। हर के संत सुनो जन भाई, हर सतगुर की एक साखी, जिस तुर भाग हुए मुख मस्तक, इन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम, गुर बचनी सहजे चाखी। तह भया प्रगास मिटिया अंधहारा, ज्यो सूरज रहन कराखी। अदिष्ट अगोचर अलख निरंजन, सो देखिया गुरमुख आखी। सलोक महला तीजा। सतगुर सेवे अपना, सो सिर लिख लाए, विचो आप गवाए कै रहन सच लिवलाए। सतगुर जिनी ना सेवियो, तिन्ना बिरथा जन्म गवाए। नानक जो तिस भावे सो करे, कहना किछु ना जाए। महला तीजा। मन वेकारी वेड़िया, वेकारा कर्म कमाए। दूजै भाए अज्ञानी पूज दे, दरगाह मिलै सजाए। आत्म देव पूजिय, बिन सतगुर बूझ ना पाए। जप तप संयम भाणा सतगुरु का, करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावै सो थाए पाए। पौड़ी। हर हर नाम जपुह मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपुह मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपुह मन मेरे, जित दाल दे दुख भुख सब लह जाती। हर हर नाम जपुह मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा।

कर्म परापत होए सत्य रत्ते गुरु शब्द सियो तिन सच्चे सदा लिव होए नानक जिसनो मेले ना विछड़ै सहज समावै सोई महला तीजा सो भगौती जो भगवंत जानै गुर प्रसादी आप पछाणै धावत राखै इकत घर आणै जीवत मरै हर नाम बखाणै ऐसा भगौती उत्तम होए नानक सच समावै सोए महला तीजा अंतर कपट भगौती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए सत संगत सिंह बाद रचाए हर दिन दुखिया दूजै भाए रचाए हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर ना सवाही सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही जिनको हुआ कृपाल हर से

प्राणी जरा मरण भव विसर गया कटंब देख बिकसह कमला ज्यो पर कर जो है कपट नरा दूड़ा आयो है जमह तना तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए कोई कोई साजन आई कह मिल मेरे बीठला लै बाहड़ी वलाई मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमर पया माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया विखम घोर पंथ चालना प्राणी राव सस तह ना प्रवेश संग माया मोह तब बिसर गया जा तजियले संसार आज मेरा मन प्रगट भया है पेखी अले धर्म राहो तह कर दल करन महाबली

बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचर्ज एक सुनोरे पंडिया अब किश कहन न जाय सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दित नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह तार चोए अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब परम पलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाण।

नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना एहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नर हर मनहु बिसारिया फिर पछताव हैगा मूड़िया तू कमल कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रय मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महाबिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तूले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसम ते तौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल लाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिखै भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाचै पछताना निकुटी दे देख तुन उपजै मान करत नहीं बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझै थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक जल

तुम जो नायक आचहु अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर अराध्य मोको विचार देहु रविदास समदल समझावे को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वडभागी हर नाम ते आया गुरपूरै हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चलै जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पलै मेरा प्राण सखाई सदा नाल चलै गुरपूरै हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पलै जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावे मेरे प्राण जीवाया।

देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करहो गुर मेलहो, जन नानक हर तन पल्लै जियो। माज महला चौथा, मध सूदन मेरे मन तन प्राणा, हौ हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले बड़ भागी, मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो। हौ मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारक दीन करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मेल कमल विगसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावै। हर हर दया करहो गुर मेलहो, जन नानक गुर मिल रहसै जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सत संगत हर गुण गाए, जग भौजल।

मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिय जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हो रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दीजै गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिय जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो, माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पानी, हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वडभागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै, बिन भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल परिजै जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजै जियो, माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवहु संत मैं गल में लाइए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वड भागी हर संत मलाया, गुरपुरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रभ तारी, मल हूं मैं बिखिया सब नेवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा हौ गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाम मलुआ मल मल धुआ, मिल हर जन हर रस पीचै जियो, सतगुर दातै नाम दिड़ाया, वडभागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपूरै अमृत लीचै जियो, हर सत संगत सत पुरख मिलाइयै, मिल सत संगत हर नाम त्याइयै, नानक हर कथा सुनी मुख बोली, गुरम

तम दस्ते तिसकै हौ वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हौ सतगुरु विटो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरे हर नाल देखा लिया हौ सतगुरु विटो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हौ सतगुर विटो बताया जियो जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौप दे महले चौथे के माज महला पंजवां चौप दे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवै बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ कोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होआ देखे सारिंग पाणी तन सो देश जहां

प्यास प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यों बारक पी खीर अगावे ज्यों निरतन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यों अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो। जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर होवै जो नाम रस पावै। नाम निदान तिसह प्रापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना। तिसह प्रापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो। हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भय कनेरे। नाम निदाना गुरमुख पाई है कहो नानक विरली दीठा जियो। माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरे जन्म पदार्थ गहर गंभीर है।

पनीता सगल उदारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जाको खोज है सर्ब अपाए वडभागी दर्शन को विरला पाए ऊच अपार अगोचर थाना ओह महल गुरु देखाई जियो गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो नाम औखद मोको साधु दिया किल बिक काटे निर्मल थिया आनंद पया निकसी सब पीरा सगल बनास

संग राता प्रभ प्रत पाले सेवक सुखदाता पानी पक्का पीसो सेवक कै ठाकुर ही का आहर जियो काट सिलक प्रभ सेवा लाया हुक्म साहिब का सेवक मन पाया सोई कमावै जो साहिब पावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है जो किस ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही।

सो गहर गंभीरा गौहर जीओ माज महला पंजवा सब किश घर में है बाहर नाही बाहर टोले सो परम पलाही गुर प्रसादी जिन्नी अंतर पाया सो अंतर बार सुहिला जीओ चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द बीचारा आनंद बनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जीओ जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते।

संग जोत मलाया कहो नानक भ्रम कते कवाड़ा बहुड़ ना हुई है जौला जीओ माज महला पंजवा तिस कुरबानी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस विटों जो मन तन तुद आरा दे जीओ तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिसे अपने साजन जिन गुर मेल सो प्रभला दे जीओ सेवड भागी जिन तुम जाने सब कै मदे अलिपत निर्बाणी साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जीओ तिनकी शरण परया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजै नानक कौ तिस प्रभ अगम अगा दे जीओ माज महला पंजवा तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम होवा असथूली तू जल निध तू फेन बुद बदा तुद बिन अवर ना पा।

आपे तुद संभालिए दियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक भोरी नदर निहालिए दियो। माज महला पंज।

हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उधारी किन बिख काट हुआ मन निर्मल

सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख भया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बखाना जल थल नीर भरे सरस पर।

दयाला सगले तृप्त अगाए जियो वाण त्रिण त्रिपवन की तुन हरिया कर्णहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै आराधी मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदा।

तेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किस कीता तेरा हुए, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख पाया।

जी प्राण प्रभ मन है आधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, हास मनोरथ पूरन होवे, टीटत गुर दरसाया जियो, अगम अगोचर किश मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे है ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पुलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण।

राम ठाकुर अत पारी तुमरे कर्तव तुम ही जानहु तुमरी ओट गोपाला जीयो गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे।

गुर प्रसाद मन तारूं, तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्ब मया प्रतपाला जीओ, सत सत सत प्रभ सोई।

मिल गाव है गुण अगम अपारी, गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सोत्या यह जिन हम किए जियो, जन्म जन्म के

कर कृपा प्रभ भगती लाभ हो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवां पये कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वरसै सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठांड पाई करतारी जियो अपने जी जंत प्रित पारी ज्यों बारक माता संभारी दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारी जियो जल थल पूर रहया मेहरवाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन सतिस सदा त्यानी जे थिन मह सगल उदारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवां जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोइन चौबारी जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जियो हर रुखी रोटी खाए संभाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो संतां से तीरंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दलाब दे खोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला।

सुख सहज धुन उपजी साधु संग निवासा जीओ लागी प्रीत ना तू कै मूले हर अंतर बाहर रहया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जीओ अमृत वरख है अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी तृप्त अगाए रहे जन।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुखदाता दुख भंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा। अपने कीते नो आप प्रतपाले, पै पै रीत सह मनाई जीओ। जा की सरन पया गत पाईए, सास सास हर नाम ते आईए। तिस बिन होर

तुद त्याई जियो। माज महला पंजवां, सभे सुख पए प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे, सहज समाद लगी लिव अंतर, सोरा

गुर के चरण वसे मन माही, अंगीकार किया तिन करतै, दुख का डेरा टाहया जीओ, मन पन वसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसै कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जीओ, जो किछ करे सो आपे आपै, बुद्ध सियाणप किशु ना जापै, अपनिया संतां नु आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ, चरण कमल जन का आधारू, आठ पहर राम नाम वपारू, सहज आनंद गावे हैं गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ, माज महला पंजवां, सो सच मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित वस है हर जन,

जन तेरे सच शब्द मन माणो जियो सच सलाहन वड भागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

सुख पाया, सो जन्म न जूऐ हारी जीव। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया। हर कीर्तन गाव हो दिन राती, सफल एहा है कारी जीव। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया।

जय सागर कटिया जम की फासा जीव चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसिया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिते लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाऊ आप जपाई गुरु

निर्मल, जिन देखे सब उत्तर कलमल, नानक नाम त्याए त्याए जीवै, बिनसिया भ्रम पहु तीठा जीओ, माज महला पंजवा, झूठा मंगण जे कोई मांगे, तिस

आन दिन नित जागी, बाहां पकड़ तिस स्वामी मेले, जिसकै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांच है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइए, जिस सिमरत वार निह चल पाइए, नानक कहो प्रभ होए दयाला, तेरा कीता सहना, राग माज अष्टपदियां।

सुहावनिया मनमुख भूला ठौर ना पाई जमदर बद्दा चोटा खाई बिन नावै को संग ना साथी मुक्ते नाम त्यावनिया।

सुख पाया माया मोह चकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारनिया गुरमती परगास हुआ जी अन दिन हर गुण गावणिया रहाउ तन मन खोजे ता नाउ पाई धावत राखै ठाक रहाई गुर की बाणी अन दिन गावै सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साथ मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आन दिन सदा रह रंग राता दर सच्चै सो जी पावणिया पाप पुन की सार ना जानी दूजै लागी भरम पुलाणी।

जन निर्मल दर सत्य नाम सुहावणिया लेखा मांगे तां किन दीऐ सुख नाही फुन दूऐ तीऐ आपे बख्श लए प्रभु।

गत पाई, भगती रत्ता सदा बैरागी, आप मार मनावनिया, आप उपाय तंदे लाई, लख चौरासी रिजक आप अपड़ाई, नानक नाम त्याए सच राती, जो तिस भावे सो कार करावनिया। माज महला तीजा, अंदर हीरा लाल बनाया, गुर कै शब्द परख परखाया, जिन सच पल्ले सच बखान है, सच कसवटी।

बहुत पसारा, नाम निरंजन अति अगम अपारा, गुरमुख हो ऐसो ही पाई, आपे बख्श मनावणिया, मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई, गुर प्रसादी सच चित लाई, सचो सच वरतै सबनी थाई, सच्चे सच समावणिया, वे परवाह सच मेरा प्यारा, किल विख अवगुण काटन हारा, प्रेम प्रीत सदा त्याई, पै भाए भगत दृढ़ा बणिया, तेरी भगत सच्ची जे

हर तुद बाजो मैं कोई नाही, हर तुदै सेवी तै तुद सलाही। आपे मेल लैहो प्रभ साके,

राज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलै किने चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवे दर सच्चै

मन वसाई हम दिन सदा रहे भय अंदर भय मार भरम चुकावणिया भरम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजी गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणे भरमे भूला।

अंदर पीजे बैस सुथान हर गुण गावे है। आपे कर सत मनावणिया जिसनो नदर करे सो पाई गुर प्रसादी हो मैं जाई। नानक नाम वसै मन अंतर दर सच्चै सो बा पावणिया। माज महला तीजा सतगुर सेवियां वड्डी वड्याई। हर जी अचिंत वसै मन आई हर जी ओ सफले ओ बिरख है अमृत जिन पीता तिस तिखा लहावणिया। हों वारी जी ओ वारी सच संगत मेल मनावणिया। हर सत संगत आपे मेलै गुर शब्दी हर गुण गावणिया। रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया जिन हर का नाम मन वसाया। हर निर्मल हों मैं मैल गुआई दर सच्चै सो

शब्द बड़ियाई देवणिया रहाउ। वेला वखत सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन पाया। सच्चे सेवै सच वड़ियाई, गुर कृपा ते सच पावणिया। पाओ भोजन

निर्मल बाणी शब्द वखाण है। सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया। सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया। अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा। परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा। नानक नाम मिलै वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा, तेरिया खाणी तेरिया बाणी। बिन नावै सब परम पलाणी।

हर सच्चा गुर भगती पाई सहजे मन वसावणिया रहाउ सतगुर सेवे ता सब किश पाए जेही मनसा कर लागे तेहा फल पाए सतगुर दाता सबना वथू का पूरे भाग मलावणिया इहो मन मैला एक न त्याए अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए तट तीरथ दसंतर भवे अहंकारी होर वधेरे होमे मल लावणिया सतगुर सेवे ता मल जाए जीव तमरे हर स्यों चित लाए हर निर्मल सच मैल न लागे सच लागे मैल गवावणिया बाज गुरु है अंध गुबारा अज्ञानी अंधा अंध अंधारा।

रहाउ। पंडित पढ़ है साधना पाव है, दूजे भाई माया मन परमाव है, माया मोहे सब शुद्ध गुआई।

रात्रि भिद माया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार ना पावने आ, आपे रंगे रंग चढ़ाई से जल राते गुर शब्द रंगाई हर रंग चढ़िया अत अपारा हर रस रस गुण गावने आ, गुरमुख रिद सिद्ध सच संयम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई।

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलोह शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओ पत होवे। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हों वारी जीओ वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कहै गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतर।

मूड़ा बाहर पाली मनमुख अंधे फिर है बेताली जिथे वत होवे तिथों कोई ना पावे मनमुख परम भुलावणे।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिया नाम आधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

अमृत बाणी मन वसाई, अमृत नाम त्यावणिया रहाव। अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा नैणी। अमृत कथा कह सदा दिन राती, अवरा आख सुनावणिया। अमृत रंग रत्ता लिवलाई, अमृत गुर पर

नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया, सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी, तुझते बाहर किस ना होवे, गुरमुख सोजी पावणिया, गुरमुख तत है बीचारा,

अंतर मन मोह अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुनावणिया मन मुख भूला दूजे पाए खुआए नाम ना लेवे मरे बिख खाए अन्निन सदा विष्टा महवासा बिन सेवा जन्म गवावणिया अमृत पीवे जिसनों आप

मन निश्चल निज घर वासा पावणिया गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सचा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावणिया जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी हर नाम संभाल है से वड भागी सच्चा शब्द आप मलाई सत संगत सच गुण गावणिया लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे ओह अगम अगोचर शब्द सुद होवे अन दिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावणिया पढ़ पढ़ था के शांत ना आई तृष्णा जाले सुध ना काई बिख विहाज है बिख मोह प्यासी कूड़ बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाना नानक एको नाम वरतै मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया माज महला तीजा वर्ण रूप वरत है सब तेरे मर मर जमह फिर पवह कनेरे तू एको निश्चल अगम अपारा गुरमति बूझ बुझावणिया हों वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया किस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमति आप

तै सब थाई ज्योति ज्योत मलावणिया तिसना अगन जलै संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा।

सच सलाही सब घट अंतर सचो सच सुहावनिया सच सलाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया पर पूरे गुर पर साधी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावनिया सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निश्चल आवे ना जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमती सच समावनिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावनिया महाज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत सब माहि समाणी निर्मल बाणी हर सालाही जप हर निर्मल मैल गवावनिया हौ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावनिया हर निर्मल गुर शब्द सलाही शब्दो सुन तिसा मटावनिया रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आई मन तन निर्मल माया मोह गुआई निर्मल गुण गावै नित साचे के निर्मल नाद बजावनिया निर्मल अमृत गुर ते पाया विचों आप मोआ तिथे मोह ना माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन वसावनिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवै हौ मैं मैल गुर शब्दे धोवै निर्मल वाजै अनहद धुन बाणी दर सच्चै सोभा पावनिया निर्मल ते सब निर्मल होवै निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै निर्मल नाम लगे बड़ भागी निर्मल नाम सुहावनिया सो निर्मल।

मैला खाई फिर मैल बधाई, मनमुख मैल दुख पावणिया। मैली निर्मल सब हुक्म सबाई, सी निर्मल जो हर साची पाई। नानक नाम वसै मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा। मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सोह। हत उजल नाम त्यावणिया, हौ वारी जियो वारी, गोविंद गुण गावणिया। गोविंद गोविंद कह दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुनावणिया। रहाउ गोविंद गावह सहज सुपहाई, गुर कै भै उजल हौ मैं मल जाई। सदा आनंद रह भगत करह दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचै भगत दिरड़ाई।

माया मोह इस मनहन चाई अंतर कपट दुख पावनिया गुरमुख भगत जा आप कराई तन मन राता सहज सुपाई बाणी बजै शब्द बजाई गुरमुख भगत थाई पावनिया बहु ताल पूरे बाजे बजाई ना को सुने ना मन वसाई माया कारण पिड़ बंद नाचै दूजे पाए दुख पावनिया जिसे अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता इंद्री वस सच संयम जुगता गुर कै शब्द सदा हर त्याई एहा भगत हर पावनिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई नानक नाम गुर भगती पाई है।

जाहिं दुख कब ही नाहीं। सुख दाता सेवन सुख पाइन गुरमत मन वसावणिया। हौ वारी जियो वारी सुख सहज समाद लगावणिया। जो हर सेवह से सदा सोह सुबा सुरत सुहावणिया। रहाउ सबको तेरा भगत कहाय से भगत तेरे मन पाए। सच बाणी तुदै सालाहन रंग राते भगत करावणिया। सबको सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूकै फेरा। जा तुद भावै ता नाहि रचावै तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया हरख सोग सब मोह गवाया। इक सस्यों डिवलागी सदही हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाई नौ निध नाम वसया मन आई। पूरे भाग सतगुर पाया।

माज महला तीजा आत्म राम परगास गुर ते होवे हौं मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे मन निर्मल अन दिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हौं वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया तिन्ना भगत जना को सद नमस्कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावणिया रहाओ आपे करता कारण कराई जित पावै तित कारै लाई पूरै भाग गुर सेवा।

सदा मुकत हर मन वसाई, सहजी सहज समावनिया, बहु कर्म कमावै मुक्त न पाई, देसंतर भवै दूजे भाई खुआई, बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द दुख पावनिया, धावत राखै ठाक रहाई, गुर प्रसादी परम पद पाई, सतगुर आपे मेल मलाई, मिल प्रीतम सुख पावनिया, एक कूड़ लागे कूड़े फल पाई, दूजे भाई बिरथा जन्म गवाई, आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिख खावनिया, इस तन मह मन को गुरमुख देखै, भाई भगत जा हौ मैं सुखै, सिद्ध साधक मोल धारी रहे लिवलाई, तिन पी तन मह मन ना दिखावनिया, आप कराए करता सोई, होर के करे कीता क्या होई, नानक जिस नाम देवै सो लेवै, नामो मन वसावनिया, माज महला तीजा, इस गुफा मह अखुट भंडारा, इस विच वसै हर अलख अपारा, आपे गुपत प्रगट है आपे, गुर शब्दियां पवियां वणियां, हों वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावनिया, अमृत नाम महारस मीठा, गुरमती अमृत पियावनिया, रहाओ हों मैं मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम ना पाई कोई, गुर कृपा मन वसावनिया, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मा

हार दुख पाए, मन मुख अंधे सूझे नाही। फिर घिर आए गुरमुख वत पावणिया, गुर प्रसादी सच्चा हर पाए। मन तन वेखै हउमै मैल जाए, बैस सुखान सद हर गुण गावै। सच्चै शब्द सुमावणिया, नौ दर ठाके धावत रहाई। दसवें निज करवा सह पाए।

छोड़े गुरमुख शब्द सुहावनिया हौ वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावनिया गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर सेती चित लावनिया रहाउ गुरमुख जीवे मरे परवान आर जा ना सीजे शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाई गुरमुख सच समावनिया गुरमुख हर दर सोभा पाई गुरमुख विचों आप गवाई आप तरे कुल सगले तारी गुरमुख जन्म सवारनिया गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हौ मैं चूकै पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहज समावनिया गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावनिया गुरमुख आन दिन शब्दे राता गुरमुख जुग चारे है जाता गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावनिया बाज गुरु है अंध अंधारा

प्रगट पा सारा गुरसाखी मिटिया अंधियारा कमल विगास सदा सुख पाया ज्योति जोत मनावणिया अंदर महल रतनी भरे भंडारा।

हर गुण गावे शब्द सुहाई मिल प्रीतम सुख पावनिया जम जा गाती दूजे पाई कर लाई नाम भूले दे सजाई कड़ी मोहत का लेखा लेवे रतियों मासा तोल कढावनिया पे अड़ै फिर चेते नाही दूजे मुठी रोवे ताही खरी क्वाले उक रूप कलखणी सुपने फिर नहीं पावनिया पे अड़ै फिर मन वसाया पूरे गुर हदूर दिखाया कामन फिर राख्या कंठ लाई शब्दे पिर रावै सेज सुहावनिया।

पढ़ बुझ मानव सामणिया गुरमुख पढ़ हर नाम सलाह दर सच सूबा पावणिया रहाउ अलक अपेरो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई किरपा करे ता सतगुर भेट नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूट है गुर शब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख मै राता बिख ही माही पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किछु ना होए बख्शे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश श्रृंगार बनाई मन मुख आंधे से।

हर रस चख साध पावणिया, हर रस चख है से जन निर्मल, निर्मल नाम त्यावणिया रहाउ। सो निकर्मी जो शब्द बिचारी,

हर सर सागर निर्मल सूई, संत चुगह नित गुरमुख होई, इशनान करह सदा दिन राती, हौ मैं मैल चुकावणिया, निर्मल हंसा प्रेम प्यार, हर

मोह शब्द जनावणिया माया मोह जलाई सो हर सिउ चित लाई हर दर महनी शोभा पावणिया रहाउ देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त्र जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारी आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सत संयम सच कमावै गुरपूरै नाम त्यावणिया पे अड़ै तन परम फुलाणी दूजै लागी फिर पछोताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपनै सुख ना पावणिया पे अड़ै तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखै नाले फिर कै सहज रह रंग राती शब्द शिंगार बनावणिया सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया

भाउ गुर शब्द जलाया, एको रव रहया घट अंतर, मिल सत संगत हर गुण गावनिया, सतगुर ना सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, मनमुख नाम चेतना आवे, बिन नामे बहु दुख पावनिया, जिन शिष्ट साजी सोई जाने, आपे मिले शब्द पछाणे, नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लखावनिया, माज महला चौथा, आदि पुरख अपरंपरे।

प्रीतम मेरे तुद बिने अवरना कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावनिया अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करह तू लह मलाई पूरे गुर कै शब्द त्याई है शब्द सेव सुख पावनिया रसना गुणवंते गुण गावे नाम सलाहे सच्चे पावे गुरमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे सोभा पावनिया मनमुख कर्म करे अहंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर फिर आवन जावनिया आपे करता दे वडियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पहु भंजन गुर शब्दी सुख पावनिया माज महला पंजवां कर पहला अंतर अलख न जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब

कौन कर्म कौन निःकर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिया किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जित धावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याय, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता, तन गिरहि उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, होमै बादा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख निःकर्मा, गुरमुख करे सो सुपाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख विछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जित तावत रहता, गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याय, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बणाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस ते होयो आनंता, नानक एकस माहि समाए जियो, माज महला पंजवां, प्रभ अबनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला।

रख मन तन पावणिया। तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावणिया। रहाव तेरा कीता जिस लागे मीठा, घट घट पार ब्रह्म तिन जन दीठा। थान थनंतर तू है तू है, इको एक वरतावणिया। सगल मनोरथ तू देवन हारा, भगती

कर कृपा दास नदर निहाली गुण गावह पूर्ण अबनासी कह सुन तोट ना आवणिया एथे उथे तू है रखवाला मात गर्भ मह तुम ही पाला माया अग्न ना पो है तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बिन अवर ना जानणिया जिसको तू प्रभ पया सहाई।

ऊंच अथाह अपार अमोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावणिया, माज महला पंजवा कर दूजा, नित नित दयो संभाली है, मूल ना मनहु विसारी है, रहाओ संतां संगत पाई है, जित जम कह पंथ ना जाई है।

पाई है, तत्ती वाओ ना लग गई, जिन मन बुठाए आए दियो, से सुंदर सोहने साध संग जिन बहने, हर धन जिनी संजिया से।

जिसका नेह चल ताम चेत गोविंद अरादी है होवे आनंद घना संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल तल मई अल पूरिया रव्या विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाई सो प्रभु तिसकै पाई लगा वैसाख तीरन क्यों वाडियां जिन्ना प्रेम बशो हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओ पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह इक सहर के नाम बिन अगे लई है खोहे दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई।

पत होई। वैसाख सुहावा तां लगै जां संत भेटै हर सोई। हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगै सब निवन। हर सज्जन दावन

मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मलावै माई संत सहाई प्रेम के हौ किन कै लागा पाई बिन प्रभ क्यों सुख पाई दूजी नाही जाय जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाय आप त्याग बिनती करहे लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मलाइया से विछड़ कतह ना जाय प्रभ विण दूजा।

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरो वह रोज कीता किशु ना हो वही लिखिया तुर संजोग बड़भागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक होवे साध संग दिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां तिनकी सोभा क्या गणी जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सहे लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम कै बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूर तिन प्रभ सरणी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहु ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर नाह मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाह बिख्या पोहे ना सकई मिल

अगम अगाह शरण पई नारायण नानक दर पैया पूख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान जन्म कर्म मल उत्तरे।

अलगुण आनंद उपार्जन हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाय राम के कर कृपा दिया मलाई सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए इच्छ पुन्नी वड भागणी वर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए हर जिहा अवर ना दिसई कोई दूजा लवै ना लाए हलत पलत सुवारियों निश्चल दितियन जाई संसार सागर ते रखियन बहुड़ ना जन्मे ताई जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए अलगुण नित सलाही है जिसनो तिल ना तमाए जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगाह सच खरी सर्व सुखा निध चरण हर भौजल बिखम तरी प्रेम भगत तिन पाईया बिखिया नाही जरी कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म प्रभ सेम दे मन अंदर एक तरे महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे नानक मंगे दर्श दान कृपा करहु हरि माझ महला पंजवा दिन रैन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रैन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछड़िया हर मेल हो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैन हर फिर बिन चैन ना पाई खोज दिते सब गैन आप कमाण विछड़ी दोष ना काहू देन कर कृपा

बेनंतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सो सुनी हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुर पेय तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदार नहार आदि जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने।

साधन सद सदा सबना का बख्शिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दितीन जिंद गुर शब्दी आराधिय जपिय निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइय

नानक जीवै जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रैण जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्ब कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थां हर ओट गई मन अंदरी जप जप जीवा नाम कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राख है त्यों रहा तेरा दिता पैना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बनासन तम हरन ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिया नानक एहो सुआओ सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा सलोक महला पहला मलक मरीद तथा चंद्रहड़ा सोहिया की धुनी गावणी।

का आसिह जासनी मूल ना जाने आप बाल टंडोलिम ढूंढम डिठ मैं नानक जग तूएं का धवल हार पौड़ी तू करता पुरख अगम है आप शिष्ट अपाती रंग परंग अपार जना बहो बहो विद भांति तू जान है जिन अपाई है सब खेल तमाती एक आव है एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बधाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती जो मन चित तुद त्याई दे मेरे सच्चिया बल बल हो तिन जाती।

आई जिन रच रचिया तिसह ना जाने अंधा अंध कमाई जा भजै ता ठीक कर होए घाड़त घड़ी ना जाई नानक गुरबिन नाही पत पत बिन पार ना पाई महला दूजा दिन दे थाम हूं दिता चंगा मन

कमावे सो चहो कुंडी जानिए, जो धर्म कमावे तिस धर्म नाउ होवे, पाप कमाणे पापी जानिए। तू आपे खेल करहे सब करती, क्या दूजा आख बखाणिए। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, बिन ज्योति कोई किस करे हो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगड़ सुजानी है। पौड़ी तुदे आपे जगत अपायक है, तुदे आपे तंद लाया। मोह ठगौली पायक है, तुदे आप हो जगत खुआया। जिसना अंदर अग्न है, नह तिपत भुखा त्याया। सहसा एह संसार है, मर जमे आया जाया। बिन सतगुर मोह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया। गुरमति नाम त्याई है, सुख रजा जा तुद पाया। कुल उधारे अपना धन जने दी माया। सोभा सुरत सुहावनी, जिन हर सेती चित लाया। सलोक महला दूजा, अखी बाजो वेखना, विन कन्ना सुनना। पैरां बाजो चलना, विन हत्थां करना। जीबे बाजो बोलना।

जोग मेल मलाया, तिन्ही किया बजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुख हो उठे रोग पाप कमाया, हरख हो सोग बजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया, सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया, करता करे सो होग ना चले चलाया, श्लोक महला पहला कूड़ बोल मुरदार खाई, अवरी नो समझावन जाई, मुठा आप महाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे महला चौथा, जिसदे अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाई, ओहो हर मार्ग आप चलदा हो नानो हर मार्ग पाई, जे अगे तीर्थ होए ता मल लह छप्पड़ नाथै सगवी मल लाई, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अन दिन हर हर नाम त्याई, ओहो आप छुट्टा कुटंब सियो दे हर हर नाम सब सृष्ट छडाई, जन नानक तिस बलिहार ने जो आप जपै अवरा नाम जपाई, पौड़ी एक कंध मूल चुन खाहे वन खंड वासा, एक भगवा वेश कर फिर है जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा, बिरथा जन्म गवाई ना गिरही ना उदासा, जम काल सिरहो ना उतरै त्रेविद मनसा, गुरमति काल ना आवै नेड़ै जा होवै दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन घर ही माहे उदासा, नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निरासा, सलोक महला पहला जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे है मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाओ खुदाई का दिल हच्छे मुख ले हो, अवर दवाजे दुनी के झूठे अमल करे हो, महला पहला जाहो नाही ता क्या आखा किहो नाही क्या हुआ, कीता करना कहया कथना भरिया पर धुआ, आप ना बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू हुआ, नानक अंधा हुए कै दसेरा है सब समहाए साथ है, अगै गया मुहे मुह पाए।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माही निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावै पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी टहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्भ भरे भंडार रीते एक खने ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां हो वह तीनवा सोम हो वह दुध कीयो सगली धरती सक्कर हो वह खुशी करे नित जीयो।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाऊ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोहरा रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशाणिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम फलाणिया विस्ता अंदर वास साधना जानिया बिनमावे दुख पाए आवन जानिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया सलोक महला पहला सीहा बाजा चरगा कुहिया इना खवाली काह काहो खान तिना मास खवाली एह चलाए राह नदियां विच टिब्बे दे खाले खली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा जीवाले तां के असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाही एक ना शक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन समारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार।

सारे कर्म कमाई है, गुरमती आप गवाए नाम त्याई है, दूजी कार लाग जन्म गवाई है, बिन नावे सब विस पेंजे खाई है, सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है, बिन सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आई है, दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, नानक सच खरा सलाहे पत सिंह जाई है, सलोक महला पहला, तुद भावे ता वावे गावे, तुद भावे जल नावे, जा तुद भावे

सिख कहावै जां तुध भावै ता होवै राजे रस कस बहुत कमावै जां तुध भावै तेग बगावै सिर मुंडी कट जावै जां तुध भावै जाहे दसंतर सुन गल्लां घर आवै जां तुध भावै नाहिर चावै तुध पाणी तू भावै नानक एक कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावै महला पहला जां तू वड्डा सब वड्याईया चंगा चंगा होई जां तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मै विच रखै नानक सच्चा आप पौड़ी सतगुर सेवन संग परम चुकाई है सतगुर आखै कार सो कार कमाई है सतगुर हुए दयाल ता नाम त्याई है लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दै दर जाए सच चवाई है सच्चा अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सच्यार सच समाई है श्लोक महला पहला कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया हौ भाल विकुन्नी होई अंधेरै राहो ना कोई विच हों मैं कर दुख रोई कहो नानक किन बिद गत होई महला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार गुरमुख कोई उतरै पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै पौड़ी भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया करता आप अभुल है ना भुलै किसै दा भुलाया।

बोल बोल बिख खाया, चलन सार ना जाननी, काम क्रोध विस वधाया, भगत करन हर चाकरी, जिन्नी अन दिन नाम त्याया, दासन दास होए कै, जिन्नी विचों आप गवाया, ओना खसमै कै दर मुख उजले, सच्चै शब्द सुहाया।

वखतै उपर लड़ मोए दूजै बहुते राह मन किया मती खिंडिया बहुत पए असगाह गोते खाहे ना निकलह तीजै मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकिया खादा हुए स्वाह पी खाने स्यों दोस्ती चौथै आई ऊंग अखी मीत पवार गया पी उठ रच्यों नवाद सह भरियां की पिड़ बद्दी सबे वेला वक्त सब जे अठी पहो होए नानक साहिब मन बसै सच्चा नामन होए।

गुण गाहक एक वन भुखियां भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा ता रजै जा गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजै खाई है।

ठगियो ठग आइए जाइए तन मह तृष्णा यग शब्द बुझाइए सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान।

संसार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदै ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिए पाई है। गुर प्रसादी बुज सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस। आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस, जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस। हंडन कर्मा बाहरी महला पहला, मत पंखे रू किरत साथ। कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अक डाल, कब उच्ची परीत। नानक हुक्म चलाई है।

खट दर्शन कह भीख किसे सच समावना सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना मन्नी नाउ बसंख दरगाह पावना खालक कौ आदेश ताडी जावना।

आपण है देखू चाया पे लाए हुक्म पया तुर खसम का अति हूं टका खाए गुरमुख स्यों मनमुख अड़े डुबे हक न्याय दुहां सिरियां आपे खसम वेखे कर व्यपाय नानक एवै जानिए सब किस तिसहर जाय महला दूजा नानक।

साधना तृप्तिया सायर परेत सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा नेह पलंग तस जन्मस जावत ब्रह्मना बिंदते सागरं संसारस गुर

सुरही सा तन दही बनोवै इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नातै जित वड्याई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाही महला दूजा।

लाया, सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरमति खादा राज तिन सुख पाया, ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया। शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला, चौपदे दोपदे

नानक आखण बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किस कहन न जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भये करनी कामन कर मन लये साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी।

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ घट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाणे, पीतर होंदी वस्त ना जाने, हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊ आ

गुरमुख मुख तो बंद ना पाए, शब्द विचार छुट्टे हर नाई, तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, सांझ बिहाग तक आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास, नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्ये पूरे हर लोग, मन तन देले सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए, गौड़ी महला पहला, काम क्रोध माया मह चीत, झूठ बकार जागे हित चीत, पूंजी पाप लोभ की कीत, तार तारी मन नाम सुचीत।

मुंडा पड़वाऊ जेवा इंद्री एक सवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाहु आप मारे ता पाए नाऊ शब्द मरे फिर मरन ना हुए बिन मुए क्यों पूरा हुए परपंच व्याप रहया मन दू।

दरगाह मार सच सलाही धन गुरुद्वार नानक दर कर एक अंकार गौड़ी महला पहला उल्टे ओ

मन मानिया अमृत रस पीजे रहाउ जन्म जीत मरण मन मानिया आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कार करते जानिया जत सत तीरथ मज्जन नाम।

थाव नानक गुरमत सहज सुमाव गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाए मरन रहन रस अंतर पाए गर्भ निवार गगन पुर पाए मरन लिखाए आए नहीं रहना हर जप जाप रहन हर सरना रहाऊ सतगुर मिले तदुबदा भागे कमल बगास मन हर प्रभ लागे जीवत मरे महारास आगे सतगुर मिले सच संयम सूचा गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा कर्म मिले जम का पौ मूचा।

गुरबचनी सत शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांधे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले ब्रह्म दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जाके हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माहि निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लाभ लोभ मुच कूड़ कमावे, बहुत उठावे भारु, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों धारि उपर चारु, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ न आवे वारी रहाउ, हौ तुदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करह पराई, झूठी लाए तिबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करह चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रहिए, छुट्टड़ हुई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जां किश लिया, ता मन भला पाया, हलत ना सोभा पलत ना ढोई, अहला

भोग तिसै का पाना रहाउ, साहु हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके बनजारी, जियो पिंड सब रास तिसै की, मारे आपे जी वाले, गौड़ी चेती महला पहला, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना, मार है लूट है नीत नीत, किसे आगे करी पुकार जना।

नित कामण अवर लुटेन सो पंच जना ताई मड़ोली लूटिया देवरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना।

लभ लोभ की ताविसता, जपस निरंजन रचस मना, काहे बोलह जोगी कपट कना रहाउ, काया कमली हंस एयाणा, मेरी मेरी करत बिहानीता, प्रणवत नानक नांगी दाजै, फिर पाछै पछतानीता, गौड़ी चेती महला पहला, औखद मंत्र मूल मन एकै, जे कर दृढ़ चित की जैरे, जन्म जन्म के पाप कर्म के, काटन हारा ली जैरे, मन एको साहिब पाई रे, तेरे तीन गुणा संसार समाव है, अलख न लखना जाई रे रहाउ, सक्कर खंड माया तन मीठी, हम तो पांड उचाई रे, रात अनेरी सूजस नाही, लाज टूकस मूसा पाई रे, मन

आई कीते पंख उड़ाई हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे अगों देख पिछों देख तुझते कहां छुपावे तट तीरथ हम नव खंड देखे हट पटन बाजारा लैके तकड़ी टोलन लागा घट।

धन धरनी धरे अनत ना चाहया जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ हो।

गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन वसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हों जाऊं जियो मैं बनजार नराम की

शब्द पछाण सतगुर कै पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा चै सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

अवै जो पांडा हुई ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौरी ग्वार दी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहै जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ एक गावे है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाउ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जीवालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हौ मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए ताव

कथिया जाई, गुर शब्द मारन मन माहि समाहि, तेरे गुण अनेक कीमत नह पाहि, जिसकी बाणी तिस माहि समाणी, तेरी कथ कथा गुर शब्द बखाणी रहाओ, जह सतगुर तह सत संगत बना।

साई। गुरमुख भगत हर नाम समाई, आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार। नानक नाम रते तिन को जयकार, गौड़ी गवारी महला तीजा। एक सते सब रूप है रंगा, पौन पानी बैसंतर सब सहलंगा। पिन पिन वेख हर प्रभ रंगा, एक अचरज एको है सोई। गुरमुख विचारे बिरला कोई, रहाउ सहज पवै प्रभ सब नी थाई। कहां गुप्त प्रगट।

ते बूझै जन कोई रहाओ। असंत अनारी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै,

पार राम जप हो पवजल उत्तर हो पार रहाव परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाय मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया किरपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

ऐसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही। जैसे धरती मध्य पानी पर गासिया, बिन पग्गा बरसत फराही। बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किस करते है।

तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाए।

महला तीजा सब जग काल बस है बांधा दूजे पाई हम मैं कर्म कमावंदी मन मुख मिले सुजाई मेरे मन गुर चरणी चित लाए गुरमुख नाम निदान ले दरगाह ले छाई रहा लख 84 भरम दे।

आई, गुर का शब्द ना चीन्यो, फिर जो नी पाए, गुरमुख आप पछाणिया, हर नाम वसिया मन आई, अन दिन भगती रत्या, हर नामे सुख समाए, मन शब्द मरे प्रतीत होए, हम मैं तजे विकार, जन नानक करमी पाईयन, हर नामा भगत पंडार, गौड़ी बैरागण महला तीजा, पेयड़ दिन चार है, हर हर लिख पाया, शोभावंती नार है, गुरमुख गुण गाया, देव कड़ै गुण संभलै, सोहरे वास पाया, गुरमुख सहज समाणिया, हर हर मन पाया, ससुरह पेयै पिर वसै, कहो कित बिद पाईऐ, आप निरंजन अलख है, आपे मेलाइय रहाओ, आपे ही प्रभ देह मत, हर नाम ते आईऐ, वडभागी सतगुर मिलै, मुख अमृत पाईऐ, हों मैं दुबदा बिर सजाए, सहजे सुख समाईऐ, सब आपे आप वरतदा, आपे नाए लाईऐ, मन मुख गर्भ ना पायो, अज्ञान ज्ञानी, सतगुर सेवा ना करै, फिर पछताणी, गर्भ जूनी वास पाएंदे, गर्भे गल जानी, मेरे करते एवं पांदा, मन मुख परमाणी, मेरे हर प्रभ लेख लखाया, तुर मस्तक पूरा, हर हर नाम त्याया, पेटिया गुरसूरा, मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंद पबीरा, हर हर बख्श मलाए प्रभ, जन नानक कीरा, गौड़ी बैरागण महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया, हर तत बीचारा, मत मलीन प्रगट पई, जप नाम मरारा, शिव सकत मटाईया, चूका अंधियारा, तुर मस्तक जिन को लिखिया, तिन हर नाम प्यारा, हर कित बिद पाईऐ संत जनहु, जिस देख हों जीवा, हर बिन चसा ना जीवती, गुर मेले हो हर रस पीवा, रहाओ, हों हर गुण गावा, नित हर सुनी, हर हर गत कीनी, हर रस गुर ते पाया, मेरा मन तन लीनी, तन तन गुर सत पुरख है, जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया, सो गुर हम कीनी, गुण दाता हर राय है, हम अवगण यारे, पापी पाथर डूब दे, गुरमत हर तारे, तू गुण दाता निर्मला, हम अवगण यारे, हर शरणागत राख लेओ, मूड मुगद निस्तारे, सहज आनंद सदा गुरमति, हर हर मन त्याया, सज्जन हर प्रभ पाया, कर सोहिला गाया, हर दया तार प्रभ बेनती, हर हर चेताया, जन नानक मंगै धूड़ तिन, जिन सतगुर पाया, गौड़ी गुआर री महला चौथा, चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया, मैं मूरख हर हर जप पढ़िया, ना जाना क्या गत राम हमारी, हर भज मन मेरे, तर भौजन तू तारी, रहाओ, सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी, पर त्रै त्याग करी ब्रह्मचारी, मैं मूरख हर आस तुम्हारी।

चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पाज मिल साधु संगत जन की तर पौ जल कथ कथा सुन हर की गोविंद सत संगत में लाई हर रस रसना राम गुण गाई रहाउ जो जन प्याव है हर हर नामा तिन दासन दास करहु हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेन बड़ भागी पावे संत जना स्यों प्रीत बन आई जिनको लिखत लिख

पुत खाए, मीने प्रीत पई जल नहाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। ए हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहे हमारे।

जहाँ हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाटे गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवे अन खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखै माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआर री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कनी गुरसिख हर बोलो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलिया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ त्यागे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी गुआर री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहया बनवारी हर आपे तप तापै लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुन आपे हर आपे वेखै विगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत तारा हर अमृत आप पी आवनहारा।

बणंजह रंग स्यों जे आप दयाल हुए देह हम बणजारे राम के हर वणज करावे देरा सरे रहाओ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जे है बणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे

सौदागरी सौदागर धावे धन खटे आसा करे माया मोह वधावे त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिक संचय हटवाणिया बह हाथ कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए इह माया मोह कटंब है।

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करी सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै काम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की चै बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे।

कृपा तार रहाउ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे।

हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नाही किस ढंग ना मेरा क्या मुंह लै बोल है गुण विहून ना।

कपड़ पहनन दिया रासे अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हों कर जानी सब कीता तेरा वरतदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करहे सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओहरा कह चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखे जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखे रसना मास रात केरी कोई जानो मास काती कह किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखे पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कह किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सके बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुरु प्यारा कित बिद मिले हों खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाउ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुरु पूरा इच्छ पुन्नी जन केरिया ले सतगुरु तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़ी है जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरे हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कै अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरपूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावे मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुरमस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते
जन नानक नाम लए ता जीवै, हर जपियै हर कृपा ते, गौड़ी पूर्वी महला चौथा। करहो कृपा जग जीवन दाते, मेरा मन हर से तीराचे। सतगुर बचन दियो अत निर्मल, जप हर हर हर मन माचे। राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे, जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसया। गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहाउ, जिनको प्रीत नाही हर सेती, ते साकत मूड नर काचे। इनको जन्म मरण अत भारी, विच विष्टा मर मर पाचे। तुम दयाल सरन प्रतपालक, मोको दीजै दान हर हम जाचे। हर के दास दास हम कीजै, मन निरत करे कर नाचे। आपे साहा वड्डे प्रव स्वामी, हम बन जा रे है ताचे। मेरा मन तन जियो रास सब तेरे, जन नानक के साहा प्रभ साचे। गौड़ी पूर्वे महला चौथा, तुम दयाल सर्व दुख भंजन। एक बिनो सुनो दे काने, जिस ते तुम हर जाने स्वामी। सो सतगुर मेल मेरा प्राने, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूड मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने रहाउ। जितने रस अनरस हम देखे, सब कितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं भेटिया, ते साकत मूड देवानी। तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोहे पचाने। जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जप प्रगटे, मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी। कहो कितै हर पहु नसीऐ, हर आपे बख्श लए प्रभ साचा। हर आप छुड़ाए छुटिऐ, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ। सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछै छुटिऐ रहाव। मेरे मन सेवहु सो प्रभ सर्ब सुख दाता, जित सेवै निज कर वसीऐ। गुरमुख जाए लहु कर अपना, कस चंदन हर जस कसीऐ। मेरे मन हर हर हर हर हर जासे उत्तम, लैला हर मन हसीऐ। हर हर आप दया कर देवै, ताय अमृत हर रस चखीऐ। मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे, ते साकत नर जम कुटीऐ।

लेखा छुटिए जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटिए गौड़ी पूर्वे महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करहो हर दर्श दिखावहो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिल आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अन दिन नाम

अन दिन अन दया वडभागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड भागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यो पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कशु ना जान है आगे ज्यो हर राख है त्यों ठाडी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडी गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाउ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभे दुख पावे जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाई।

इस गढ़ में हर राम राय है, किस साधना पावे तीठा। हर दीन दयाल अनुग्रह किया, हर गुर शब्दी चख डीठा। राम हर कीर्तन गुर लिव मीठा। रहाउ हर अगम अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सत गुर लाग बसीठा। जिन गुर बचन सुखा ने ही अरे, तिन आगह आन परीठा। मन मुख ही अरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा। बिसियर कौ बहु दूध पी आई है, बिक निक सह फोल फलीठा। हर प्रभ्यान मलावु गुर साधु, कस गरड़ो शब्द मुख लीठा। जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा। गौड़ी पूर्वी महला चौथा।

मुख मस्तक पाग सुभागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ। कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागी। हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी। अंधियार है दीप ज्ञान जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागी। अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी। साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी। हुन सतगुर आगै सीस ना बेचिया हुए आवह जाहे अभागी। हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगी। जन नानक की लाज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगी। गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत।

गुर कै बचन हर पाया रहाउ, मेरा ही अरे प्रीत राम राय की, गुर मार्ग पंथ बताया, मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे, जिन विछड़िया हर गल लाया, मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हृदय नाल दिखाया, सहज आनंद भया मन मोरे, गुर आगे आप बिचाया, हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया, अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजे शब्द अनाहद, गुरमत मनुआ गावे, वड पागी गुर दर्शन पाया, तन तन गुरु लिव लावे, गुरमुख हर लिव लावे रहाउ, हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे, हम मल मल धोवे पाव गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे, हृदय गुरमत राम रसायन, जिहवा हर गुण गावे, मन रसक रसक हर रस आगामी, फिर बहोर न भूख लगावे, कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी, बिन कृपा नाम ना पावे, जन नानक को हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे, राह गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा, वडभागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो, वडभागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना, आवह संत हो मिल नाम जपाहा, विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो, जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामन करी हा जियो, मिल संत जना रंग मान रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठे टुल टुल मिलिया जी।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीउ मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीउ हर नाम मिलिया सोहागणी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीउ हर पायड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लैलाहा मन हस जीउ।

हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी दियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वाधाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हों तुद विकटण्यो हों सदवारी जी।

हर आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगते उपाएदा मेरे गोविंदा हर आप खेलै बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाएदा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है नंग नंगी जियो।

हर कथा मंग है हर चंगी दियो हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा राव रहया नहीं दूरी जियो हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहया परपूरी जियो हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखै आप हदूरी जियो हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा हर आप बजाए त्यों वाजै जियो हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर शब्दी हर प्रभ गाजै जियो आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजै जियो वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध का जय जियो गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखा हर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो फिर बहुड़ना।

मन लगा भाव जियो गुर शब्दी पाई हर प्रीतम राव जियो वड भागी जप नाउ जियो मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जियो मन हर रंग रतड़ा हर रस सदा।

मित्र हर पुरख सुजान जियो, गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो, हौ नाम बिटहु कुर्बान जियो, हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो, हर दसहु संतो जी

सुपने पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक कहूं मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवा क्यों भ्रमिए भ्रम किसका होई जा जल थन महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी गुआर री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म परापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझ ते होग अवर ना दूजा करने जोग ता मिलिए जानह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाई गौड़ी गुआर री महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पाव है मिटे जम त्रास नित गाव है हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर तार शीघ्र कार्य लिहो सवार रहाओ अपने प्रभ स्यों हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाणप सगली त्याग संत जना की चरणी लाग सर्ब जी है जा कै हाथ कदे ना विछड़े सब कै साथ अपाव छोड़ गहो तिसकी ओट निमक माही होवे तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटावो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआर री महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाओ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कट्टे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाई गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन नाया व्यहार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआर री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्याओ रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बे सुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किस नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी ग्वारी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखन हार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

हर कीर्तन मनसी तल पहे, जन्म जन्म के किल विख गए, सर्व निदान पेखे मन माए, अब ढूंढन काहे को जाए, प्रभ अपने जब पहे दयाल, पूर्ण होए सेवक काल, बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास, एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूर रहे हो सब जाए, गुर पूरै सब परम चकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया, गौरी ग्वार दी महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उबरे से बांध लख खरे, जेहे तंदे

रहाउ हस पवन हस्त असवारी जोआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटक आखारे गाया तामह मन संतोख न पाया तखत सभा मंडन दोलीचे सगल मेवे सुंदर बागीचे अखेर बिरत राजन की लीला मन ना सुहिला पर पंच हीला कर कृपा संतन सच कहया सर्व सुख एहो आनंद लहया साध संग हर कीर्तन गाईऐ कहो नानक वड भागी पाईऐ जा कै हर तन सोई सुहेला प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाओ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

राम गुण गाओ, निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिए कतहु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई, गौड़ी गुआरी महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तने अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै, कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै, कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवा गवाररी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार, एको बनज एको व्यवहारी, अवर ना जान है बिन निरंकारी, हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते, संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी गुआरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

रंग सो जागै जिस प्रभ कृपाल एह पूंजी साबत धन माल रहाओ दूजा गौड़ी गुआरी महला पंजवा जाके वस खान सुल्तान जाके वस है सगल जहान जाका किया सब किश होए तिसते बाहर ना ही कोए कहो बेनंती अपने सतगुर पाए काज तुम्हारे देन बाहे रहाओ सब ते ऊंच जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्ब व्यापत पूर्ण तनी जाकी शोभा कट कट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टह जिस सिमरत जम किशु ना कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे संत सभा कहो सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण आधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास गौड़ी गुआरी महला पंजवा सतगुर दर्शन अगन निवारी सतगुर भेट तह मैं मारी सतगुर संग नाही मन डोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जा सच महराती शीतल शांत गुरते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाऊ संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रेण मजन सब धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मह ए हमरी जिंद कृपा निध कृपाल त्यावो साध संगता बैठन पावो मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी गुआरी महला पंजवा साध संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताज अभमान भये निर्वैर आठ पैर पूजो गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी जब ते सुनिया हर जस कानी।

पार ब्रह्म स्यो लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया अन्यहारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जाके कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई गुरपुरे ते ए मत पाई रहाउ करन करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगम अगोचर सदा बेअंता सिमर मना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्ब निदान

जामी सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रब चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्शना में तय कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन।

पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारनी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस सियो मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस सियो ने रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना दोहा सनिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी ग्वार भी महला पंजवा कल युग मह मिल आए संयोग जिचर आ गया तिचर भोग भोग जलै न पाइय राम स्नेही किरत संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हठ जल जाइय प्रिय संग न पावे बहु जोन पवाइय सील संयम प्रिय आग्या मान तिस नारी को दुख ना जमान कहो नानक जिन प्रियो परमेश्वर कर जानिया धन सती दरगाह परवानिया गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा हम तनवंत भागठ सच

अमोल परे पंडार अखूट अतोल खाव है खर्च है रल मिल पाई टूट न आवे वद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लियार लाए गौड़ी महला पंजवां डर डर मरते जब जानिए दूर डर चूका देखिया भरपूर सतगुर अपने कौ बलिहार छोड़ न जाई सर पर तारे रहाव दुख रोग सोग बिसरे जब नाम सदा आनंद जा हर गुण गाम बुरा भला कोई ना कही जय छोड़ मान हर चरण गही जय कहो नानक गुर मंत्र चितार सुख पावे साचे दरबार गौड़ी महला पंजवां जांका मीत साजन है समिया तिस जन कहो कहो का की कमिया जा की प्रीत गोबिंद स्यों लागी दुख दर्द भ्रम ता का भागी रहाउ जा को रस हर रस है आयु सो अन रस नाही लपटायु जा का कहया दरगाह चले सो किसको नदर ले आवे तले जा का सब किस ता का होए नानक ता को सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवां जा कै दुख सुख सम कर जापै ता को काड़ा कहां बियापै सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाउ जा कै अचिंत वसै मन आए ता को चिंता कतहु नाहि जा कै बिन सिओ मन ते परमा ता कै कछु नाही डर जमा जा कै हृदय दियो गुरनामा कहो नानक ता कै सगल निदाना गौड़ी महला पंजवां अगम रूप का मन महथाना गुर प्रसाद किने बिरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसह प्राप्त तिसलै पुंचा रहाव अनहत बाणी थान निराला ता की धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कार गुरु नानक को दिया गौड़ी महला पंजवां कवन रूप तेरा अरादो कवन जोग काया ले साधो कवन गुण जो तुझ लै गावो कवन बोल पार ब्रह्म री जावो रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो कमन सो बिद जित पव जल तरु कमन तप जित तपिया होए कमन सो नाम हमे मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा।

देव आद पुरख अपरंपर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पए समरथ अंगा।

माया वड्याई सो वड्डा जिन राम निबलाई रहाउ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै कहो नानक एहो तत बीचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा गौड़ी महला पंजवां पूरा मार्ग पूरा इशनान सब किश पूरा।

हर कै मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवां संत की धूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्स पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवां हर गुण जपत कमल पर गासै हर सिमरत त्रास सब नासै सामत पूरी जित हर गुण गावे बड़े भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निदनामा साध संग पूर्ण सब कामा

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कतह ना डोले जा कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसाह जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नाम

नाम भगत कै सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान, हर का नाम जन को तारे, सास सास जन नाम सुमारे, कहो नानक जिस पूरा भाग, नाम संग ताका मन लाग, गौड़ी महला पंजवां, संत प्रसाद हर नाम ते आया, तब ते तावत

राध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरन आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन मह लेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवां जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ भागै रहा।

ऐल करत जन सूहै तां कौ माया अगन ना पूहै। मन तन मुख हर नाम दयाल, नानक तजिया ले अवर जंजाल। गौड़ी महला पंजवा, छाड़ सियानप बहु चतुराई। गुरपुरे की टेक टकाई, दुख बिन से सुख हर गुण गाई। गुरपुरा पीतिया लिवलाई रहाओ, हर का नाम दियो गुरमंत्र। मिटे वसूरे उतरी चिंत, आनंद पए गुर मिलत कृपाल। कर कृपा

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी पै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण गा।

जात पूरा गुड़ काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिस भेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवां, साध संग तां की सरनी परो, मन तन अपना आगै धरो। अमृत नाम पीवो मेरे भाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। ताज अवमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कार हो। सास सास प्रभ मनह संभाले, सो तन संचो हो जो चाले नाले। तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग, कहो नानक ता की चरणी लाग। गौड़ी महला पंजवां, सूके हरे किए खिन माए, अमृत दृष्ट संच जीवाए। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ। मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा, कर दया सतगुर गुणतासा। दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फुरमाए। इच पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सुफल फले। गौड़ी महला पंजवां।

आओ सिमरत सिमरत प्रभ का नाम सगल रोग का बिनसे आथाऊ सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवा पले दिनस पले संजोग जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओह बेला कहो हौ बल जाऊं जित मेरा मन जपै हर नाऊ रहाऊ सफल मूरत सफल ओह करी जित रसना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे बिन

अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा पै मह रचियो सब संसारा तिस पहो नाही जिस नाम आधारा पहो ना व्यापै तेरी सरना जो तुद पावै सोई करना रहाओ सोग हरख मह आवन जाना इन सुख पाया जो प्रभ पाना।

नाऊ, तुमरी कृपा ते दरगाह थाऊ, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाऊ, तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करूं अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास, गौड़ी महला पंजवां, तन बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपहु नित प्राणी, नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ, नाम बिना नाही मुख भाग, परत

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्श पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाओ, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवां, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाव, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुर जी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवै परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवां, करै दुख कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बेख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बाता चोटा खावे, अनक पढ़दे मह कमावे विकार, खिन मह प्रगट होवे संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस कृपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवां, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाव, संत संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे है दयाल, गौड़ी महला पंजवां, सिमरत स्वामी किल विख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंदन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवां, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन को वापारी पूरा, जिसे

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जानह स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कैर दैवसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना परापत साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरै हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरता कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जा कर दे वसह भगवान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी वडियाई।

ते अंधला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तू ही वडियाई माया मगन नरक ले जाई रहा रोग।

मुक्त फल पाए। उक्त सियानप इससे कश नाही, कर कृपा नानक गुण गाही। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड भागी हर कीर्तन गाइए। पार ब्रह्म तू देह ता पाइए रहाउ, हर के चरण हृदय उरतार। भव सागर चढ़ उतरह पार, साधु संग करहो सब कोय। सदा कल्याण फिर दुख ना होय, प्रेम भगत भज गुणी निदान। नानक दरगाह पाइए मान, गौड़ी महला पंजवा। जल थल महियल पूर्ण हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल

कर कृपा प्रव कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना, गौड़ी महला पंजवा, पौ सरनाई जिन हर जाति, मन तन शीतल चरण हर राति, पै भंजन प्रभ मन ना बसाही, दरपत दरपत जन्म बहुत जाही रहाउ, जा कै हृदय बस्यो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम, जन्म जरा मृत जिस वास, सो समरथ सिमर सास ग्रास।

किल विख खोए, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रबिया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जा की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवाने।

रहाउ बिखैठ गौरी जिन जिन खाई ताकी तृष्णा कबहू न जाई दारण दुख दुत्तर संसार राम नाम बिन कैसे उतर सपार साध संग मिल दोए कुल साध राम नाम नानक आराध गौड़ी महला पंजवा गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी पूरा न्याओ करे करतार अपने दास को राखन हार रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप निंदक मुआ उपज वड ताप तिन मारिया जे रखे न कोई आगे पाचे मंदी सोए अपने दास राखे कंठ लाए शरण नानक हर नाम त्याए गौड़ी महला पंजवा महजर झूठा की तुने आप पापी को लागा संताप जिसह सहाई गोविंद मेरा तिसको जम नहीं आवे नेरा रहाओ साची दरगाह बोले कूड़

आप अपन कमाए आपे बांधे दरब गया सब जी कह साथे नानक सरन परे दरबार राखी पैज मेरे करतार गौड़ी महला पंजवा जन की धूर मन मीठ खटानी।

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत। मन बच क्रम प्रभ अपना त्याय, नानक दास तेरी सरनाई, गौड़ी महला पंजवां, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव। रहाउ सीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवां, तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लहिए, रसना राम नाम जस कहिए। रहाउ किन ऊपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्वाण। गौड़ी महला पंजवां, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार संभाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाय, दास की पैज रखे मेरे भाई। रहाउ आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जापे।

कहो नानक जिस कृपा तार है हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है गौड़ी महला पंजवां थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अन दिन जागे, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए।

नाम जपत मन पय आनंद रस गाए गुण परमानंद खेम भया कुशल घर आई तीर्थ साध संग गई बलाए रहाउ नेत्र पनीत पेखत ही दर्श तन मस्तक चरण कमल ही परस गोविंद की टहल सफल एकाया संत प्रसाद परम पद पाया जन की कीनी आप सहाय सुख पाया लग दासह पाए आप गया ताया पह पए कृपा निदान की सरनी पए जो चाहत सोई जब पाया तब ढूंढन कहां को जाया अस्थिर पए बसे सुख आसन गुर प्रसाद नानक सुख बासन गौड़ी महला पंजवा कोट मजन कीनो इशनान लाख अरब खरब दीनो दान जा मन वस्यो हर को नाम सगल पवित्र गुण गाए गोपाल पाप मिट है साधु शरण दयाल रहाव बहुत उर्द तप साधन साधे अनक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसन अरादे सिमरत शास्त्र वेद बखाने जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जपत प्रभ सिंह मन माने अगाध बोध हरे अग्नि अपारी नाम जपत नाम हृदय बिचारी नानक कहो प्रभ कृपा तारी गौड़ी महला पंजवा सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुर हृदय बसाया गुरु गोविंद पार ब्रह्म पूरा किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ अन दिन जपो गुरु गुर नाम ताते सिद्ध पए सगल काम दर्शन देख शीतल मन पए जन्म जन्म के किल बिख गए कहो नानक कहां पै पाई अपने सेवक की आप पैज रखाई गौड़ी महला पंजवा अपने सेवक को आप सहाई नित प्रत पार बाप जैसे माई प्रभ की शरण उबरे सब कोए कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव अब मन बसया करने हारा पै बिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के किल बिखलाते कहन ना जाए प्रभ की वडियाई नानक दास सदा सरनाई राग गौड़ी चेती महला पंजवा दुपदे।

तू संग हमारे बास जियो रहाओ, तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार, जी प्राण सुख दातिया, निमख निमख बलिहार जी, हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्त हो उदर गोपाल, मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल, क्या सुख तेरे सम्मला, कवन विधि विचार, सरल समाई दास हित, ऊचे अगम अपार, सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नाम महारस माहे, सो प्रसन्न भय केसवा, सेजन हर गुण गाहे, मात पिता सुत बंध पो, तू मेरे प्राण आधार, साध संग नानक भजै, बिख तरिया संसार, गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवां।

हाल। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से बड़ भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्रापत सो हर गुण गाहै। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

नाम आधारी राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवनो गुण प्राण पत मिलो मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई नाहिन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो हौ फिरत तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नान साध संग मेरी जलन बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिल बे कौ प्रीत मन लागी पाई लगो मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ भागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा।

रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करहु निवास।

पास गौड़ी महल्ला पंजवा हर पीखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवो दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाउ सेवा करो दास दासन की अनक पांत तिस करो निहुरा तुला तार तुले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख भेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मुहे मार्ग दे बताई रहाउ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बस्ते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले ओह बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रहो तिन दिया ताला कुंजी गुर संपाई अनक अपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहाउ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीतले सतगुर मुझे बतायो रहाउ जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे एहो विश्वास हुए आयो कह पह करो अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो लहयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निद नाम निदान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्त तत मलायो गौड़ी महला पंजवा औज कटै दिन सरै नाय।

आग्या बसन सुहेला एह संसार विकार सहसी मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए की आए हर रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सुई विहाज हो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पाव हो सुख सहजे बहुर ना हुए गो फेरा अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास इही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी।

बा राखु राखन हारी खेद कर है और बहुत संताव है। आयु शरण तुहारी कर कर हारियु अनक बहु भांति छोड़ है कतहु नाही। एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया। जीत लये ओए महा बिखादी सहज सुहिली बाणी। कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अबनासी राया निरपो संग तुम्हारे बस्ते

अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्श हर राया सोई हुआ जो तिस पाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोह मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछे गौड़ी महला पंजवा हौं तां कै बलिहारी जां कै केवल नाम आधारी रहाओ महिमा तां की केतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा तां कै चरण परों तां जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन अवध जो दीसै सब किस जोग मह काटिया नाम निदान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया निमख निमख नमस्कारा दीखिया गुर की मुंदरा कानी दृढ़े हो एक निरंकारा पांच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैरागने आग्याकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेपूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडभागी भेट माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याए ले मीता हर औखद जाको गुरदिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो ते तन ते गुर शब्द दीपक परगासा भ्रम की जाली ताकी काटी जाको साध संगत विश्वासा तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बोहित साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा गुर भेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवा दया मया कर प्राण पत मोरे मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गात्मित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभराते ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किस नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभ होआ आनंदन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवा
तुम हर से तीर आते संत हो, नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते, ओढ़ पहचाव हुदाते रहाओ। तुमरा मर्म तुमा ही जानिया, तुम पूर्ण पुरख बधाते, राखो सरन अनाथ दीन कहो, करहो हमारी गाते। तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे, तुम जानो अपनी पांते, कर कृपा जिस राखो संगे, ते पार पुराते। ईत ऊत प्रभ तुम समरथा, सब किस तुम रह हाथे, ऐसा निदान देहो मोको, हर जन चले हमारे साथे। निर्गुण यारे कहो गुण की जय, हर नाम मेरा मन जापे, संत प्रसाद नानक हर पेटे, मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवां, सहज समायो देव, मोह कौ सतगुर।

राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारी इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटा प्रित पारी रहाउ महा कष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरनी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राख पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रत्न अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूड़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नू सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नू रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिखिया पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है अहम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत भने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान भय भीत चीन राम सेवक भय रहत कीन लख चौरासी जोन फिरह गोविंद लोक नहीं जन्म मरह बल बुद्ध स्यान पहु मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाइय नीत नीत हर सेविय सास सास हर त्याय रहाओ संत संग हर मन वसै दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै संत प्रसाद हर जापी है सो जन दुख ना व्यापी है
जां को गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अग्नते। नानक को प्रभ मया कर मेरा मन तन वासै नाम हर। गौड़ी महला पंजवा रसना जपिए एक नाम इहा सुख आनंद घना आगे जी कै संग काम। रहाओ कटिए तेरा अंगरोग तू गुर प्रसाद कर राज जोग। हर रस जिन जन चाखिया ता की तृष्णा लाथिया। हर विश्राम निद पाया सो बहुर न कत ही ताया। हर हर नाम जा को गुरदिया नानक ता का पहो गया। गौड़ी महला पंजवा जा को बिसरे राम नाम ताहू को पीर। साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर। रहाव जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ता कै कर तल नव निद सिद्ध। जो जान है हर प्रभ धनी किस नाही ता कै कमी। करन हार पछानिया सर्ब सुख रंग माणिया। हर धन जा कै ग्रह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै। गौड़ी महला पंजवा गर्भ बड़ो मूल इतनो रहन नहीं गहो कितनो। रहाओ बेबरजत बेद संतना वाहू स्यों रे हितनो। हार जुआर जुआ बिदे इंद्री वस लै जितनो। हरन भरन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो। नानक उदरे साध संग कृपा निद मैं जितनो। गौड़ी महला पंजवा मोहे दासरो ठाकर को तान प्रभ का खाना। रहाओ ऐसो है रे खसम हमारा खिन मह साज सवार नहारा। काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा। सरन परयो ठाकुर वजीरा तिना देख मेरा मन धीरा। एक टेक एको आधारा जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा है कोई ऐसा हूं मैं तोरै इस मीठी ते एहो मन हो रह। रहाओ अज्ञानी मनुख भया जो नाही सो लोरै। रैण अंधारी कारिया कमन जुगत जित भोरै। प्रमतो हारिया अनक विधि कर टोरै। कहो नानक कृपा पही साध संगत निद मोरै। गौड़ी महला पंजवा चिंता मन करना मई। रहाओ दीन दयाला पार ब्रह्म जाकै सिमरन सुख भय। अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग खय। कृपा निद प्रभ मया धार नानक हर हर नाम लय। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए। जान दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए। रहाओ एक रैन के पहुन तुम आए बहु जुग आस बंधाए। ग्रह मंदर संपै जो दिसै ज्यों तरवर की छाए। तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरियो ठाकुर खिन मह होत पराए। पहरे बागा कर इशनाना चोआ चंदन लाए। निरपहो निरंकार नहीं चीनिया ज्यों हस्ती नवाए। ज्यों होए कृपाल ता सतगुर मेले सब सुख हर के नाए। मुक्त भया बंधन गुर खोले जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रत्न जन्म सफल गुर किया दर्शन को बल हरिए। रहाओ जेते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइए। जो हुए दयाल सतगुरे अपना ता एह मत बुद्ध पाइए। मेरे मन नाम लए जम बंध ते छूटे है सर्व सुखा सुख पाइए। सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आइए। नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चाले।
कर सेवा सतगुरे अपने की, गुर ते पाईऐ पल, गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी, बिनसे सर्ब अंदेसा, नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिटियो सगल कलेशा, राग गौड़ी महला पंजवां।

अनेक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनेक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाऊ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

मेरी नेरी गौड़ी महला पंजवा मातो हर रंग मातो रहाओ उही पियो उही कियो गुरह दियो दान कियो वाहू स्यों मन रातो उही पाठी उही पोचा उही प्यारो उही रूचा मन ओहो सुख जातो सहज खेल आनंद खेल रहे फेर पए मेल नानक गुर शब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर नाम लेहो मीता लेहो आज्ञा बिकम पंथ पै आन रहाओ सेवत सेवक सदा सेव तेरा संग बसत है काल कर सेवा तू साध की हो कातिय जमजाल होम जग तीर्थ किए बिच हों मैं बधे विकार नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निश्चल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो साकते आवह जाहे।

कीर्तन हुए उदार राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुखरे हरख सोग मान मृत दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ जो लो हो किस सोचो चितो तौलो दुखन भरे जो कृपाल गुर पूरा पेटिया तौ आनंद सहजे जेती सियानप कर्म हो किए केते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भये जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जौ लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान भरे पोट डार गुर पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आग्यो रहाओ मान अभमान दो समानी मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो निरपौ भये संत भ्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो ना लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो सरनाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्ब लोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावै फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूझत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारै नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावै करता होए जनावै रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इह मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इह मेरा परम मोह कस सूजस नाई इह पैखर पय पैरा तब इह कहां कमावन परिया जब इह कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन एहो रचन रचाया कहो नानक करन हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिथे जप तप संयम कर्म कमाणी एहे ओरै मूसे रहाओ।
भरत नेम संजम मह रहता, तिनका आड़ ना पाया, आगे चलन और है पाई, ऊहा काम ना आया, तीर्थ नाए अर तरनी प्रमता।

बल बल जाई जियो किस निव निव लागो पाई जियो ओथी पंडित बेद खोजंता जियो होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो गीत नाद कीर्तन गावंता जियो हर निरपो नाम त्याई जियो पहे कृपाल स्वामी मेरे जियो पथत पवित लग गुर के पैरे जियो प्रम पहु काट किए निर्वैरे जियो गुर मन की आस पुराई जियो जिन नाओ पाया सो तनवंता जियो जिन प्रभ त्याया सो सोभा वंता जियो जिस साधु संगत तिस सब सुकरनी जियो जन नानक सहज समाई जियो गौड़ी महला पंजवा माज आओ हमारे राम प्यारे जियो रैन दिनस सास सास चितारे जियो संत देव संदेश।

वण तेण त्रि भवन सुख परमानंदा जीओ सेज सुहावी इहो मन बिकसंदा जीओ पेख दर्शन इहो सुख लहिया जीओ चरण पखार करी नित सेवा।

दुख परहरिया जीओ, हर हर नाम जपे जप तरिया जीओ, एहो अजर नानक सुख सही है जीओ। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन।

जोर तुम्हारे सुख वसा सच शब्द निशान रहाल सबे गल्ला जातियां सुन कै चुप किया कद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया दे बजारत सारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया इकस दोहो चौहो क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अध नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात रंग रत्ते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा मांझ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधिया पूरन सतगुर ज्ञान रहाव जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाम जम कंकर ने

सब फिक्किया तन मन फिक्का होय, बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय। अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार। साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे, औगण सब मटाए कह पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर हर

ओंकार सतगुरु प्रसाद राग गौड़ी महला नौवा साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनस भागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जान और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाना जन नानक एहो खेल कथन है किन्हू गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई एक बिनसै एक अस्थर मान अचरज लखियो ना जाई रहा काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा करमा न्यू

रहियो राम सरनाई। गौड़ी महला नौवा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों, एह विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग, देख तास उठ तावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी, मूड़ता ही बिसरावे, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा, साधो एहो मन गहियो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, जाते थिर न रहाई रहाओ। कठन क्रोध कट ही के भीतर, जेहे शुद्ध सब बिसराई।

तौ सब बिद बने आई गौड़ी महला नौवा। साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमूलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ। पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अवमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो। गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावे वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावे माया मोह महा संकट बन ताश्यो रुच उपजावे।

गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहलस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यू हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पर रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मोह धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए ना देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रातो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज सुमाना गौड़ी गुआर री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुरे अंकस सच शब्द निशान राज द्वार है सोभ सो मान चतराई न चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर्म है अमृत तस्कर ले नन्ना कार न कोई करे राख है आप वड्याई दे नील अनिल अग्न इक ठाई जल निवरी गुरबूज बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा मैं आखों कैसा सागर डूंघर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन न डरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन बखानिया जिन बूझया तिन सहज पछानिया देख बीचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रहया समाई निज कर व्याप रहया निज ठाई।

मेल मलाए गुण संग्रह औगण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन धावे साचे सूचे मैल ना पावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते पावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाऊ अदिष्ट दिसै ता कहया जाय बिन देखे कहना बिथा जाय गुरमुख दिसै सहज सुभाय सेवा सुरत एक लिवलाय सुख मांगत दुख आगल होए सगल विकारी हार परोए एक बिना झूठे मुक्त ना होए कर कर करता देखै सोए तृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुपाए गुरमती नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए तन मह साचो गुरमुख भाव नाम बिना नाही निज ठाव प्रेम परायण प्रीतम राव नदर करे ता बूझै नाव माया मोह सर्ब जंजाला मनमुख को चील कुशत बिकराला सतगुर सेवे चूकै जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बूझै एक लिवलाए निज करवासै साच समाए जम्मण मरना ठाक रहाए पूरे गुरते एह मत पाए कथनी कथों ना आवे और गुर पुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख भाणै तिसै रजाए नानक नीच कह लिवलाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चितवास काम क्रोध अहंकार बनास।

सुख पावे भरम भुलानिया एक तिल भूले बहोर पछतानिया कंस केस चंडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमत धर्म धीरज हर नाय नानक नाम मिले गुण गाय गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पैर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहां सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहां सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोड़ शिंगार करे अत प्यारी बिन जगदीश भजे नित खुआरी दर कर महला सेज सुखाली अहनस फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लश्कर ने बखवासी पाजे बिन जगदीश झूठे देवाजे सिद्ध कहावो रिद्ध सिद्ध बलावो ताज कुलह सिर छत्र बनावो बिन जगदीश कहां सच पावो खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस काजा हौमै ममता गुर शब्द वसारी गुरमत जानिया रिद

परपंच ब्याद क्या गै कवरी, भाई मिलै सच साचै साचरी, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिलै मन धोई, राव ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अगल जगत पर जारै, सो उभरै गुर शब्द बीचार।

ब्राह्मण हितकारी, क्रोध बनासे सगल विकारी, पत मत खोवे नाम वसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यो तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वस सेई, बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे न लेखे पावे, वेस करे बहु भस्म लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम बसार सह जम दुख रहाव, चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम बसारे है सब कूड़ो कूर, नेजे बाजे तखत सलाम, अदकी तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावह नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे घाटे घाट, किसको वाह वाह जे वाट दिखावे, किसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, किसको वाह वाह जे मेल मलावे, वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाणे दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला, हौ मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हौ हौ करत नहीं सच पाईए, हौ मैं जाए परम पद पाईए रहाओ, हौ मैं कर राजे बहुत आवह, हौ मैं खपह जन्म मर आवह, हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै, चंचल मत त्यागै पंच संघारै, अंतर साच सहज घर आवह, राजन जान परम गत पावह, सच करनी गुर परम चकावह, निरपो कै कर ताड़ी लावे, हौ हौ कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो झगर चकावे, जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही, हौ मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया, ब्रह्म कमल पयाल ना पाया, आग्या नहीं लीनी परम पलाया, जो उपजै सो काल संघारिया,

आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरै सहजे पत पाईऐ अंतर शब्द निधान है मिल आप गवाईऐ नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावै नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावै गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरी क्या तिन स्यो कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता, चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस, इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आपको, सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझी है, सब ब्रह्म समाया, राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ, मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना पी

माहे। सूतक भोजन जेता किस खाहे, सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै ना जन्मै काल ना खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोय, बिन नामै को मुक्त ना होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द बीचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरै ना आवै जाए, नानक गुरमुख रहै समाय। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हिरदय उर धारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पढ़ तजो विकारा, गुरमुख भोजन उतरो पारा। रहाउ गुरमुख विचो हउमै जाए, गुरमुख मैल ना लागै आए। गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई। अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किस कमावै सो थाए ना पाई, आवै जावै तौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बाग ज्यो लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

इह संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संगारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई गुरमुख।

अहंकारी आप ना चीन बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिसते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण भरमे नाही निज घर वासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे।

माया दासी भगतां की कार कमावे, चरनी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुनह से तनवंत दिसह जुग माही, तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हों मैं मार ब्रह्म मलाया, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे, अंतर तामस आप ना पछाणे, ता प्रभ पाए गुर शब्द वखाणे, गुर सेवा करो फिर काल ना खाए, मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ, गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे, गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावह सहज सुपाए, बिन गुर साचे परम पलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की सरनाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई, सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता, मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे मीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हिरदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द वजाए, सतगुर ते कमन कमन ना सीधो मेरे भाई, भगती सीधे दर सोभा पाई, नानक राम नाम वडियाई, गौड़ी महला।

तीजा त्रै गुण बखाने भरम ना जाए बंधन ना टूटे है मुक्त ना पाए मुक्त दाता सतगुर जुग माहे गुरमुख प्राणी भरम गवाए सहज तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ त्रै गुण काले की सिर कारा नाम ना चेत है उपावन हारा मर जम है फिर वारू वारा अंधे गुरु ते भरम ना जाई मूल छोड़ लागे दूजे पाई बिख का माता बिख माही समाई माया कर मूल जंतर परमाए हर जियो विसरिया दूजे पाए जिस नदर करे सो परम गत पाए अंतर साच बाहर साच वरताए साच ना छपे जे को रखे छुपाए ज्ञानी बूझ सहज सुपाए गुरमुख साच रहिया लिभ लाए हमें माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाए सतगुर दाता शब्द सुनाए धावत राखे ठाक रहाए पूरे गुर ते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझे कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख भया परगास गुरमुख गावे है सच गुण तास दासन दास नित होवे दास ग्रह कटंब मह सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई जा हिरदय वसिया सच सोई गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होई हुकम पछाणे बूझे सच सोई।

तन सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसे अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुर पाया पूरे वड भागी हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रविया चरण निवास जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए हृदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाई है गुणी निदान रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाए गुर किरपा ते मिले मलाए हर दासन को दास सुख पाए मेरा हर प्रभ इन बिद पाया जाए हर किरपा ते राम गुण गाए त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार त्रिग सेज सुखाली कामन मोह गुबार तिन सफल जन्म जिन नाम आधार त्रिग त्रिग ग्रह कटंब जित हर प्रीत ना होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर ना कोए सतगुर ते हम गत पत पाई हर नाम त्याया दूत सगल मटाई सदा आनंद हर नाम लिव लाई गुर मिले हमको शरीर सुध पई हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई बिनसे क्रोध खिमा गह लई हर आपे कृपा करे नाम देवे गुरमुख रतन को बिरला लेवे नानक गुण गावे हर अलख अपीवे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागुण महला तीजा सतगुर तेजो मोह फेरे तेवे मुख बुरे दिसन अन दिन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो किरपा तार सत संगत मिलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर भाम दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखी है हृदय धार नाम मिले है पत पाई है नाम मने है सुख होए सतगुर ते नाम पाई है कर्म मिले है प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टकन तरत असमान ना चलई विच विस्ता पए पचन एहो जग परम पलाया मोह ठगौली पाए जिन्ना सतगुर भेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हौ मैं मैल गवाए शब्द रते से निर्मले चलह सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख्श मलाए जन नानक शरणागति ज्यों भावे तिवें छडाए राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले एक ओंकार सतगुर प्रसाद करहले मन परदेसिया क्यों मिलिया हर माए गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए मन करहला सतगुर पुरख

मन करहला अत निर्मला मल लागी हो मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाई मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाय मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला

है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वड भागिया हर एक नदर निहाल आप छड़ाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौ निद नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला बड़ भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम भवह बाहर पाल गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वड भागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इह मन मह करत गुमाना तब इह बावर फिरत बेगाना जब इह हुआ सगल कीरीना तातेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इह जान समंदा तब सगले इस मेल है फंदा मेर तेर जब इन्ह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इस ते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला कर किरपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर मह दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी कर्ण करामन सब किश एक है आपे बुद्ध विचार विवेक है दूर ना नेरे सब कै संगा सच सलाहन नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा तिसकै हिरदै रविया सोए मन पन सीतल निश्चल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाउ जास जपत पौ अपदा जाए धावत मनुआ आवै ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत एह हो मैं भागै जास जपत वस आवै पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत ए तृष्णा बुझै जास जपत हर दरगाह सिजै जास जपत कोट मिटह अपराध जास जपत हर होवै साध जास जपत मन शीतल होवै जास जपत मल सगली खोवै जास जपत रतन हर मिलै बहुर न छोड़ै हर संग हिलै जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सहज निवास जास जपत एह अग्न ना पोहत जास जपत एहो काल ना जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाथा
जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवां, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ता कै आत्मै होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ता कै होए, जाको दया मया प्रभ सोए रहाओ, साजन दुष्ट जाकै एक समान, जेता बोलन तेता ज्ञान, जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान।

जपना, सहजे पूजन सहजे पाओ, सहजे मिट्यो सगल दुराओ, सहजे हुआ साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्मन संग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी, जाके सहज

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया तां कै तार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रै गुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दीसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे तां का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निचल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगाह सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अनदिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको भये कृपाल कृपा निद तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यों जुरे ता सबको मीत हर स्यों जुरे ता निश्चल चीत हर स्यों जुरे ना व्यापै काड़ा हर स्यों जुरे ता हुए निस्तारा।

भांत जाकी दृष्ट हुए सदा निहाल मन मेरे कर की काल ना को चतर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस भागा गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीव है साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन मह जिया कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काग बतन बिस्ता महवास बिन सिमरन पय कुकर काम साकत बेसवा पूत नाम बिन सिमरन जैसे सींग सतारा बोलह कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन घर दब की न्याई साकत थान पृष्ट फराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद ना पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा गुर कै बचन मोहे परम गत पाई गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे नाव गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाव रहाव गुर कै बचन सुन रसन वखाणी गुर किरपा ते अमृत मेरी बाणी गुर कै बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर कै बचन मिटिया मेरा परम गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर कै बचन कीनो राज जोग गुर कै संग तरिया सब लोग गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर कै बचन पाया नाउ निध जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा तिसकी कटिया जम की पासा गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोको दीना जियो, अपना दस राय आपे मुल ली।

रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावै कोट कर्म करतो नरक जावै हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चालै दयाल पुरख पूर्ण प्रतपालै रहाव बिनसत नाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रह आसमाए सुंदर सुगढ़ चतुर जी दाता भाई पूत पिता प्रभु माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास माया सिलक काटी गोपाल कर अपना लीनो नदर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण ध्यान सर्व सुख भोग पूर्ण पुरख नव तन नित बाला हर अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस नाम भगत कौ दीन राग गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद खोजत फिरे अस

सुन पंथ डराऊं बहुत पैहारिया मैं तकी ओट संता लेहो उबारिया मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया सब गुण किसे ही नाही हर पूर भंडारिया चहो जिस जपिए नाओ सूख सवारिया मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया गुर काढ़ेओ पुजा पसार मोह कुपारिया मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया मैं पायो सर्व निदान अकथक थारिया हर दरगाह शोभावंत बहां लुडारिया जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया गुर सेवा भौजल करिए कहो पुकारिया गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ ताज हम मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दिसे सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किने गुरमुख लहियो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहो ते रहियो दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो जिन सेव्या सो पार परेओ जन नानक गुरमुख जगत तरेओ महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए मेरे मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो निर्गुण यारी की बेनती देहो दर्श हर रायो नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो।

मिठरस भोग भोजन सब झूठ कितै ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा धन मिलै मलाई बिन पिर नींद ना आवे मुंदन मानड़िया जियो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो हो सखी सहेलियां बिन नाम प्रीत प्यार नाही वस है साच सहेलियां सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सहु जानिया नानक नाम ना छोड़ै सा धन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ी हो हम फिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द सनेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो मेरी इच्छ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहस्सी मुंद मन अमाहो साजन रहस्ये दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सा तन करै बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करह रलिया इच्छ मेरी पुनिया गौड़ी चंत महला पहला सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे क्यों धीरैगी नाह बिना प्रभु वे परवाहे तन नाह बाजो रह ना साकै बिखम रैन कनेरिया नह नींद आवै प्रेम पावै सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए नानक सा तन मिले मलाई बिन प्रीतम दुख पाए फिर छोड़ियाड़ी जियो कमन मलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे शब्दे सुहावे तां पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली तां फिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सा तन तां फिर रावे जां तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़ आरे क्यों खूलै गल जेवड़िया जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल धोवै नाम बिना गत कोए ना पावै हठ निग्रह बेबाणै नानक सच कर शब्द सियापै दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वापार मीठा भगत लाहा अन दिनो तिस बाज वखर कोए ना सूजै नाम ले वो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा गुर पूरे सच पाया राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद सा तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न साकै गुर बिन महल न पाईऐ जो गुर कहे सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाईऐ हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए धन रैन सुहेलड़िए जियो हर सिओ चित लाए सतगुर सेवे पाओ करे जियो
ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗਾ ਭਾਉ ਸੁਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ, ਜੀ ਕੀ ਮੇਲੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਉ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਨਾਮੇ ਧਰੀ ਪਿਆਰੂ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲ ਹਾਰੂ। ਤਨ ਇਕੱਲੜੀ ਜੀਓ ਬਿਨ ਨਾਹ ਪਿਆਰੇ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਮੁੱਠੀ ਜੀਓ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਰੇ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਖੁਆਈ ਕੂੜ ਵਗੁੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ। ਸਾ ਤਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਹਰ ਜੀਓ ਆਪ ਮਲਾਏ। ਤਾਂ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਮੇਲੇ ਜੀਓ, ਹਰ ਬਿਨ ਕਵਣ ਮਲਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਜੀਓ, ਕੌਣ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ ਇਉਂ ਮਿਲੀਐ ਮਾਏ, ਤਾਂ ਸਾ ਧਨ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਗ ਨ ਪਾਏ। ਕਾਮਣ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।

कापड़ तन ना सुहाई। कापर तन सुहावै जां पिर भावै, गुरमती चित लाइयै सदा सुहागण जां सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाइयै। गुर शब्दै मेला तां पिर रावी, लाहा नाम संसारी नानक कामण नाह प्यारी, जां हर के गुण सारी। सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारी। गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे, सा धन सुहागण सदा रंग राती, साचै नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गही है, दुबदा मार निवारे, नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जूए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो होमे मारी। हर का नाम हृदय बसाई, ऐसा करे सिंगारू, नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैणी नींद ना आवै जियो, भावै अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावै, मरियै हावै, बिन फिर क्यों सुख पाईऐ। गुर आगै करो बिनंती, जे गुर पावै, ज्यों मिलै तिवें मिलाईऐ। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरै ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सहज सुपाई, मन मोहन मोए लिया जियो, दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे, रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिया प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम अत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हमे मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी, किस आगै जाहि पुकारे। नानक मनमुख थाउ ना पाए, बिन गुर अत प्यारे। मुंद एआणी भोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा। आपे मेल मिलिया जियो, आपे बख्शन हारा। अवगुण बख्शन हारा, कामन कंत प्यारा। कट कट रहे आसमाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाईऐ। सतगुर बूझ बुझाई, सदा आनंद रह दिन राती, अन दिन रह लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए। राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए। शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंघाए। इन बिद दुत्तर तरियै, गुरमुख भगत प्राप्त होवै। जीवतियां इउं मरियै, जिन मह राम नाम किलविख काटे। पए पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा। कंचन पए मनूरा, स्त्री पुरख काम व्यापे जियो। राम नाम की बिद नहीं जानी, मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो। डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी, गत नहीं जानी। हम मैं तात संसारे, जो आया सो सब को जासी। उभरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम बखाने। आप तरह कुल तारे, नानक नाम बसै घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जियो।

सेवा सुरत भगत एह साची विचो आप गवाई है हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुण दाता अब गुण काटे हिरदय नाम वसाए नानक सद बलिहारी सच्चे विटो आपे करे कराए गौड़ी महला तीजा।

छोड़ परदेस सदाए दूजै किनै सुख ना पायो पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए भरम भलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुर शब्दी चित लाए मन मुख मुग्द गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन बैराग भया जियो क्यों देखा प्रभ दाते मेरे मीत सखा हर जियो गुर पुरख बधाते पुरखो बधाता एक श्री तर क्यों मिलह तुझे अड़ीनिया कर करह सेवा आसीस चरणी मन आस दर्श निमाणिया सास सास ना घड़ी विसर पल मूरत दिन राते नानक सारिंग ज्यों प्यासे क्यों मिली है प्रभ दाते एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों धीरे गुणवंत नाहा दयाल बाला सर्व गुण परपूरे फिर दोष नाही सुख है दाते हौ विछुड़ी बुरियारे बिनवंत नानक दया तार हो कर आव हो नाह प्यारे हौ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हौ सिर अर्पी तिसमीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता सीस सुथान गुर पह संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलियां करै कामण मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो वजी वादाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहरख उपजिया दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे बजे है घर मह फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई गौड़ी महला।

जह साध संत इकत्तर होवे है तहां तुझै त्यावही। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासी मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू मान है एक जी अवर सब राली। मान है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल धारिया, तुद बचन गुर कै वस किया आदि पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल धारिया, बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना, मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना। जम काल किनको लगे नाही जो एक मन त्यावे, मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना, बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान लहया अभमान जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुद नो धन कहया तिन जम नेड़ ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मरारी, बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवां सलोक, पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधु, त्याए मना मरार मुकंदे कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन श्री तहर चरण कमल अराधिया, जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधिया। कल मलै दहता शुद्ध करता दिन सरैन आराधु, बिनवंत नानक करहु कृपा गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया, श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वच्छल बिरदाया। भगत वच्छल पुरख पूरन मन है चिंदिया पाईए, ताम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया, बिनवंत नानक करहु कृपा पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी, करुणा में समरथ स्वामी कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारू, सरन जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह जपत नाम मरारी, बिनवंत नानक करहो कृपा समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी सब ते ऊच दयाला, बिसंबर देवन को एक है सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना दया तारी सब किस है, काल कंटक लोभ मोह नासे जी जा कै प्रभ बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला, बिनवंत नानक इच पुन्नी जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवां, सुन सखिए मिल उदम करेहा मनाए लह हर कंते, मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह है साधु मंते। सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई एह रीत भली भगवंत है। नानक जरा मरन पै नरक निवारे
पनीत करे तिस जंत। सुन सखिए एह भली बिनंती, एहो मतांत पकाइए। सहज सुभाए अपाद रहत होए, गीत गोविंद गाइए। कल कलेश मिटे है ब्रह्म नासे, मन चिंदिया फल पाइए। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, नानक नाम ते आइए। सखी इश करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए। चरण प्यासी दर्स बैरागन, पेखो थान सबाए। खोज लहो हर संत जना संग, समर्थ पुरख मलाए। नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता, सेवड भागी माए। सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग लिया। सुन सखिए मेरी नींद पली, मैं आपनड़ा फिर मिलिया। प्रम खोयो शांत सहज स्वामी, प्रगास भया कौल खिलिया। वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सुहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सुहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा। गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा। गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल, कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आप है किया कराया, आप है करमे जोग। नानक एको रब रहया, दूसर हुआ ना होग पौड़ी। ओं साध सतगुर नमस्कार, आद मद अंत निरंकार। आप है सुन आप है सुख आसन, आप है सुनत आप ही जासन। आपने आप है उपायो, आप है बाप आप ही मायो। आप है सूखम आप है अस्थूला, लखी न जाई नानक लीला। कर कृपा प्रभ।

है एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुख कियो अकारा एक सूत परो मनहारा पिन पिन त्रै गुण विस्थार निर्गुण ते सरगुण दृष्टार सगल पांत कर करह अपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू भांत ते आप नरारा नानक अंत न पारा वारा सलोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है तेह संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते भिन्न ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय भरम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु एह पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा सलोक धन तन कहा पकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाछ है सुरगना आछ है अत प्रिय प्रीत साध रज राच है धंधे कहां व्यापहता हूं जो एक चाड़ अनकत ना जाहू जा कह ही दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग ना हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूजे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझे जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मैं एक को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवनहार मन है बिसराना तारू कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जिहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर कृपा सतसंग मलाए नानक तां कै निकट ना माय सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप असे आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपे पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दुआयो वा का अंत ना जाने को जो जो करे सो फुन हो ये कहते सगला बिसथारा नानक आप सवार नहारा सलोक राच रहे बनता बनोद कुसुम रंग बिखशोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मान बिन हर जह रचो तह तह बंधन पाहे जेह बिद कतु ना छूटी है साकत तेऊ कमाहे हौ हौ करते कर्म रत

मोहे न बुझ सो प्रभ सदहु संग लेखै गणत ना छूटिया काची भीत ना सुध जिसै बुझाए नानका तेह गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो राते रंग एक कह नानक गूढ़ा रंग पौड़ी रारा रंग हो या मन अपना हर हर नाम जप हो जप रसना रे रे दरगाह कह ना को आओ बैठ आदर शुभ देव वाह महली पावह तू बासा जन्म मरन नह हुए बनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाकै हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ विकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखै रस राते अहम बुद्ध माया मद माते या माया मैं जन्मे मरना ज्यो ज्यो हुक्म त्यों त्यों करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लावो तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना सलोक लाल गोपाल गोबिंद प्रभ गहर गंभीर अथाह दूसर नाही अवर को नानक बेपरवाह पौड़ी लल्ला ता कै लवै न को एकह आप अवर न हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीट हस्त मह पूर समाने प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेह जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सह जे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए जास रसन हर हर जस भनिए आए बसह साधु कै संगे अन दिन नाम त्यावह रंगे आवत सोजन ना महराता जाको दया मया बेदाता एकह आवन फिर जोन ना आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा भाव दुख दर्द तृष्णा बुझै नानक नाम समा

तर या भवजल करना यया जन्मना आवै सो एक नाम ले मन है पुरो यया जन्मना हारी है गुरपूरे की टेक नानक तेह सुख पाया जा कह हिर एक सलोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के मीत गुरपूरा अपदेसिया नानक जपी है नीत पौड़ी अन दिन सिमर हो तास को जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे छाड़ चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धिया ग्रह बनता कस संग ना लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक तेते बहुर ना आया सलोक अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कई है नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खाट शास्त्र हो ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उदयानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कशकीनो सो अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसह गोपाला सलोक कुंट चार दह दिस भ्रमे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कस दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंत दिखारे आपे काहू उद्यान भ्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कै पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास हिमागिरी भी आनंद सहज जपत रह गुणतास खेल है बिगसह अंध स्यों।

नानक जो प्रभ भाणिया पूरी तिना परी सलोक गन मिन देखो मने माही सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटै नानक नाम अरोग पौड़ी गग्गा गोविंद गुण रवो सास सास जपनीत कहां बसासा देह का बिलम ना करे हो मीत नह बारक नह जोबन नह बिरदी कस बंद ओह बेरा नह दूजी है जो आए पर जम फंद ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं ए ठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहां लपटाए गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जा को प्रिय है सुहाग सलोक कोके शास्त्र वेद सब आन ना कथतो कोय आद जुगादी हुण होवत नानक कै सोए पौड़ी कग्गा कालो मन है एह बिन हर दूसर नाही नह हुआ नह होना जत कत ओही समाहे कुलह तो मन जो आवे सरना नाम तत कल मह पुनः चरना काल काल अनक पछतावे बिन हर भगत कहां थित पावे कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जा को दिया सलोक नान काले सब दिवस सास नह बदन कटन तिल सार जीवन लो रह परम मोह नानक ते गुवार पौड़ी गंगा अंगरासै काल ते जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मह मरह आत्म राम ना कीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जिहे आप दुआए गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै सो जीवत जेह जीवत जपया प्रगट भये नानक नह छपया सलोक चित चितमो चरनार बिंद ऊंद कवल बिग शांत प्रगट भये आपै गोबिंद नानक संत मतांत पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन उआ दिन संजोग सुभागा चार कुंट दह दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार बचार बिनस्यो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा सलोक छाती शीतल मन सुखी

दास तुम्हारे, दास दासन के पानी हारे, सच्चा सार होत तेरे संता, अपनी कृपा करहु भगवंता, शाड सियानप बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई, शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। सलोक जोर जुल्म फूलह कनो, साची देह विकार, हम बुद बंधन परे, नानक नाम छुटार पौड़ी। जज्जा जानै हौ कछु हुआ, बांधियो ज्यों ननी भ्रम सुआ, जो जानै हौ भगत ज्ञानी, आज्ञा ठाकुर तिल नहीं मानी, जो जानै मैं कथनी करता, व्यापारी बसधा ज्यों फिरता, साध संग जे हौ मैं मारी, नानक तां को मिले मरारी। सलोक चालांगे उठ नाम जप, निसबासुर आराध, कारह तुझै ना व्यापई, नानक मिटै उपाद पौड़ी। चज्जा चूरन मिटै तुमारो, राम नाम स्यो कर व्यवहारो, चूरत चूरत साकत मुआ, जां कै हृदय होत पाओ बीया, चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दृष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। सलोक यतन करो तुम अनक बिद, रहन न पावो मीत, जीवत रहो हर हर भजो हो, नानक नाम प्रीत पवड़ी। जन्या जानो दृढ़ सही, बिनस जात एह हेत, गणती गणो ना गण सको, ऊठ सधारे केत, न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यो करिए संग, ज्ञान होया बिद सही चित, झूठो माया रंग। ज्ञान तो सोई संत सोए, प्रमते की चत पिन, अंध कूप ते तेह कड्डो, जेह हो वो सो परसन। ज्ञान कै हाथ समरथ ते, कारण करने जोग, नानक तेह उस्तत करो, न्याहू कियो संयोग। सलोक टूटे बंधन जन्म मरन, साध सेव सुख पाए, नानक मनो ना बिसरे, गुण निध गोविंद राय पौड़ी। टहल करहो तौ एक की, जाते बिरथा ना कोए, मन फन मुख ही है बसे, जो चाहो सो होए, टहल मैल ता को मिले, जां को साध कृपाल, साधु संगत तौ बसे, जो आपन होहे दयाल। टोहे ताहे बहु पवन, बिन

रसिया ठाकुरे अपने जो जन पाया नानक वा का मन सीतलाया। श्लोक दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी डड्डा डेरा एहो नहीं जह डेरा तह जान वा डेरा का संयम गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर खाल जाका तसु नहीं संग चाल वा डेरा की सो मित जान जाको दृष्ट पूर्ण भगवान डेरा निश्चल सच साध संग पाया।

पुरै अपदेसिया नरक नाहे साध संग पौड़ी नन्ना नरक परहै ते नाही जाकै मन तन नाम बसाही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मह ना होए खपते नन्ना कारना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो निध निधान हर अमृत पूरे तह बाजे नानक अनहद तूरे सलोक पत राखी गुर पार ब्रह्म तज परपंच मोह बिकार नानक सो अरादी है अंत न पारा वार पौड़ी पप्पा परमित पार न पाया पतत पावन अगम हर राया होत पनीत कोट अपराधु अमृत नाम जप है मिल साधु परपंच त्रोहो मोह मिटनाई जाको राखो आप गुसाई पातशाह सत्तर सिर सो नानक दूसर अवरना को सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतह पई मन जीत नानक गुर ते थित पाई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ देह कल युग मह पाया फिरया अवसर चरै ना हाथा नाम जप हो तो कटिया फासा फिर फिर आवन जान ना होई एक जप हो जप सोई

सलोक। सत कहूं सुन मन मेरे, शरण पर हो हर राय। उक्त सियानप सगल त्याग, नानक लय समाए। पौड़ी सस्सा सियानप छाड़ आना, हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना। सहस भांत करह चतुराई,

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदासत पीसर पीवे अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौ पी हों मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटे गर्भ गमा।

अपमान। आपस कहो जो जाने नीचा, सो गनिये सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट कीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, एक है सगल सृष्ट साज।

सगल कटाको देव हुदान कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी।

जो होवन सो दूर परान छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाई तिस पर हरे चंदन लेप उतारे धोए गर्धब प्रीत पस्म संग होए अंध कूप मह पतत बिकराल नानक काढ़ ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छपश नाही कछ करे छपाया बाहर ज्ञान।

नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह नेहो ओढ़ निबिहावे कहां बजारत बूझै डोरा निस कहिए तो समझै पूरा कहां

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम

जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्ब थोक नानक तिन पाया, अगंत साहु अपनी देरास, खात पीत बरतै अनद उलास, अपनी अमान कस बहुर साहले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास ना होवे, जिसकी बसत तिसे आगे राखै, प्रभ की आज्ञा माने मातै, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल, अनक भांत माया के हेत, सर पर

लपट रहे हो तह अंध अंधार, बताऊ स्यों जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तन धन कुटुंब सुभा।

मिथ्यारथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रोहो मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रिय रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा।

जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के नरारथ धाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर अपदेसै

ते रहत, सब कछ जान आत्म की रहत, जिस पावै तिस लय लड़ लाई, थान थन अंतर रहे आसमाई, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी, सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव, अष्टपदी जेह प्रसाद छत्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे, जेह प्रसाद सुगंधत तन लाव है, तिस को सिमरत परम गत पाव है, जेह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसै त्याहे सदा मन अंदर, जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरहो तिस रसना, जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याहिए त्यावन जोग, जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावै है, तिसै त्याग कत अवर लुभावै है।

मुखता को जस रसन बखान जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावह नानक पत सेती घर जावह जिह प्रसाद अरोग कंचन देही निव लाभ तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावह हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके

ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागु हो, गुर प्रसाद नानक मन जागु हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पाप को

साध जना की अचरज कथा अष्टपदी, साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान, साध कै संग बुझै प्रभ नीरा, साध संग सब होत नबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरनै कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी, साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै, साध कै संग आवह बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग न कतहू धावै, साध संग अस्थित मन पावै, साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

साधक्या संग नाही हौ ताप, साधक्या संग तजै सब आप, आपे जाने साध बुदाई, नानक साध प्रभु बने आई। साधक्या संग न कबहू धावे, साधक्या संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साधक्या संग बसै थानी उच्चै, साधु कै संग महल पहुंचै, साधक्या संग दृढ़ है सब धर्म, साधक्या संग केवल पार ब्रह्म, साधक्या संग पाहि नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साधक्या संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मी

सेवा। साध कै संग सोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरता जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट दीठा, साध संग भय आग्याकारी, साध संग गत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जान है, जेता सुनह तेता बखियान है, साध की उपमा तिहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई, सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जा

जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुए निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म

ना पाईऐ धर्म नानक किस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म नाम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान तू दास दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास

आर अष्टपदे कई कोट होए पुजारी, कई कोट अचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रम है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर।

कई कोट भय अबमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिरह, कई कोट पर दुख ना करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठते ही खाए, कई कोट काल है थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाना तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अबनास, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्म।

के दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सास

जल थल मही अल सोए। अष्टपदी करन करामन करन जोग, जोत पावै सोई होग। हिन मह थाप उथाप नहारा, अंत नहीं किस पारा वारा। हुक्मे तार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनकरंग प्रकार।

ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावे सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आत्मला।

आज्ञा सुख पावे, हनुमंता हुए कर कर बावे, त्रिण समान कस संग ना जावे, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ता का हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, हिन मह हुए जाए पसमंत, किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे।

तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई

को उठ धावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी तिसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करन हार इसके हाथ

जाए। नानक सद ही रहे आसमाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्तार, सब

अपार कौतक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन ना जाए सत सत सत प्रभ स्वामी।

अष्टपद संत कै दुख में आर जा घटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाय, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे को रखे ना कोय, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होय, संत किरपाल किरपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख भवै, संतन कै दुखन काग ज्यो लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै।

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जल मथा बड भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिस की कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लागह दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बूझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किस जन्म नह किस मरे अपन चलते आप ही करे आमन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड धारन धार रहो ब्रह्मांड अलख अभेव।

नानक सो जन सदा अरोग ज्यो मंदर को थमै थमण त्यो गुर का शब्द मनै अस्थमण ज्यो पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए।

तिरै संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती घर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। ताज अभमान ले।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि, सगल दे

चलत करे खिन माहे, पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए, नाना विद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहि समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश, सत नित बूझै जे कोय, नाम जपत ता की गत होय, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करनै हार, अवर ना बूझ करत बीचार, करते की मित ना जानै किया, नानक जोत सुभावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भये बिस्माद, जिन बूझया तिसे आया स्वाद, प्रभ कै रंग रात जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी।

आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पीखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को।

वडाई। अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात राख है, ताकी गत मित कोए ना लाख है। प्रभु के सेवक को ना पहुंचे, प्रभु के सेवक उचते उच्चे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया। नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राख है, भस्म करे लश्कर कोट लाख है। जिसका शासन काटते आप, तां को राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु भांत,

बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत इह मन तन तृपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृष्ट।

नानक जिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाउ तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाउ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उच्चरै।

बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया ना जाइय, नानक ऐसा गुरबद भागी पाइय। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगहने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावै तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग ना लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक परम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका साथ इन कृपा धारी, साध संग जप नाम मरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बना।

ओत पोत रविया रूप रंग पये प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चल बिन भजन विखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर अपाव सब मीत बसार हो चरण कमल रिद मह उरतार हो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत इहो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कुंट उठ धावह तो धन हर सेवा ते पावह जिस सुख को नित बांचह मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनक अपावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवखद लाए सर्व निदान मह हर नाम निदान जप

0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास। तित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी।
1: तत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा। आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरदेव। इउं रतन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनक अपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद बिचारे। हर की भगत करहु मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए।

मन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथन लिया मलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल ना भान सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन दिया सो क्यों बिसरे जे अगन मह राख गुर प्रसाद को बिरला लाख सो क्यों बिसरे जे बेखते काड जन्म जन्म का टूटा गांड गुरपुर तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो इहो काम आन त्याग जप हो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जप हो अवरहा नाम जपाव हो भगत भाई तरिय संसार बिन भगती तन हो।

आधार जो जो जपै सो हुए पनीत भगत भाए लावे मन हीत हम निर्गुण आर नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बातनवंत।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कह ते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत भरम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अवनासी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा।

मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोचै तो नानक एक जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप दुहू पाख का आप है धनी उनकी शोभा उनहू बनी आप है कौतक करे अनद चोज आप है रस भोगर निरजोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत अतुल ज्यो बलाव हो त्यो नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दिसतार अष्टपदी आप कथा आप सुनने हार आप एक आप विस्थार जान तिस भावै तां सृष्टि अपाई आप

दृष्ट दर्शन पेठत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पहे अमरा।

देखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रह सत बचन साधु सब कह जो जो होए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बार पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता

कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्ब भूत आप वरतारा, सर्ब नैन आप पेखनहारा, सगल समगरी जाका तना, आपन जासे आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आगे अकारी कीनी माया, सब कै मत अलिपतो रह, जो किछ कहना सो आपे कह, आग्या आवै आग्या जाए, नानक जा भावै ता लई समाए, इसते हुए सो नाही बुरा, होरै कहो किने कछ करा, आप भला करतूत अतनी की, आपे जानै अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआऊ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक

अष्टपदी पूरे गुर का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उधार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरन नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत जिस जन आवै।

नानक संत निर्मल पए, जिन मन वसया सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखे फाल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग भ्रम तो घणो, सदा संगार है नीच, हरख सोग सहसा संसार, हों हों करत बे आए, जिन किए तिसह न जाननी।

यह जो नारद यह परपंच सलोक खट शास्त्र ऊंचो कह अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊंचो पार ब्रह्म गुण अंत न जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसेओ पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याए सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुभाए नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो शरण पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदे आप फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

सारिय नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरै तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस जिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बस

मन मह चितव पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाइय नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाइय सलोक एको एक बखानी है बिरला जाने स्वाद गुण गोबिंद ना जानिए नानक सब बिस्माद पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध।

स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्तासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सब कौ संतोख है, पांच भू आत्मा

पतत उदारन मन बसे, नानक छूटे नाम पौड़ी, त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन न मन मह आयु, सुख सागर प्रभ निमुख न गायु, हरख सोग का देह कर बांधेउ, दीर्घ रोग माया असाध्यु, दिने विकार करत श्रम पायु, नैनी नींद सुपन बरड़ायु, हर बिसरत होवत एह हाल, सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट

हूँ मैं छुट्टी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कुटुंब सियो, गुण गोबिंद।

नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभे आप दिन दिन चढ़े सुआया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरहु हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की सरन सलोक दुख बिन से सहसा गयो सरन गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक।

जिन भजिया भगवंत खतरी ब्राह्मण सूद बैस उदरै सिमर चंडाल जिन जानियो प्रभ अपना नानक तिसह रवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोई एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक किरपा ते हर त्याई है गुरमुख पावे कोई महला चौथा हौमै माया सब बिख है नित जग तोटा संसार लाहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार हौमै मैल बिख उतरै हर अमृत हर उरतार सब कारज तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख किरपा धार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याएंदी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिमें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करह सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

आप मलाई गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस देसो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगण मेट गुण प्रगटे आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो आन दिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम हर नामे ही त्रिपतावे हर नाम तान हर नाम देवान हर नाम रख करावे जो चेत लाए पूजे गुरमूरत सो मन

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच वख कडे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का आख्या सिखावे नाही तिना मुंह भलेरे फिरे दईए गाले जिने अंदर प्रीत नहीं हर केरी से किचर कवेराइन मन मुख बेताले सतगुर नू मिले सो अपना मन थाए रखे ओ आप वरतै अपना।

0: अनहार तिनके काज दइए आंदे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जां करता वल ता सब को वल सब दर्शन देख करह साबास साह पातशाह सब हर का किया सब जन को आए करह रहरास गुरपूरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपूरे दान दिया हर निहचल नित बख्शे चढ़ै सुआया कोई निंदक वड्याई देख ना सकै सो करते आप पचाया जन नानक गुण बोले करते के भगता नो सदा रखदा आया पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड दाता दाना तुद जेवड मैं होर को दिस ना आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाएंदे से कूड़े आर कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना सलोक महला चौथा अगों दे सत भाओ न दिच्चे पिछों दे आख्या कम ना आवे अद विच फिरै मन मुख वेचारा गली क्यों सुख पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे ता अपिहो पीवे शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावे सदा आनंद रह दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावे महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावे उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल विख पाप दोख लह जावे फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावे बहंदियां उठदियां हर नाम त्यावे जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरह नाम जपावे पौड़ी जो तुद सच त्याईंदे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराद दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाई पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ है मुख कोले मन खोटे दइए विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुख नो पाया पास ना दे कोई बहन जगत मह गूह पर सगवी मल लाए मन मुख आया प्राई जो निंदा चुगली नो बेमुख करके भेजिया उथे पी मुह काला दोहां बेमुखा दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई बेमुख सुनै नफरै पौली पौंदी फावा हुए कै उठ घर आया अगे संगती कुड़मी बेमुख रलना ना मिलै ता बहुती भतीजी फिर आन घर पाया हलत पलत दोवें गए नित भुखा कूके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो साचै मार पचाया एहो अखर तिने आखिया जिन जगत सब पाया महला चौथा साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों रज खाए जे साहिब कै घर वत होवे सो नफरै हाथ आवे अणहोंदी कित्थों पाए जिस दी सेवा कीती फिर लेखा मंगी है, सा सेवा औखी होई, नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी।
1: नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे,
0: भगत मुख है ते बोल दे, से वचन हवंदे, प्रगट पहारा जापदा सब लोक सुनंदे, सुख ना पायन मुद नर संत नाल कहंदे, ओए लोचने उन्ना गुणे नू, ओए अहंकार सुनंदे, ओए विचारे क्या करहें जां भाग तुर मंदे, जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे ना संदे, वैर करहें निर्वैर नाल धर्म ने आए पचंदे, जो जो संत सरापिया से फिर है पवंदे, पेड़ मुडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा, अंतर हर गुरु त्याई दा, वड्डी वड्याई तुस दित्ती पूरे सतगुरु, कटै नाही एक तिल किसे दी कटाई, सच साहेब सतगुरु कै वल है, तां चख चख मरे सब लोकाई, निंदका के मुह काले करे हर करतै आप वधाई, ज्यों ज्यों निंदक निंद करहें त्यों त्यों नित नित चढ़ै सवाई।

सच साहा हमारी सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लै है गुण कथ है निरारे सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सुवारे तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अनहोंदी पराई मुंह कढ ना सके।

जिन नाम अरादिया आप करिया जिन्नी दिखा तिन्ना लए छाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जान दिखा पूरा सतगुरु ता अंदरों हो मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर कृपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुरपुरा करी वसाए सी जिने अंदर नाम निधान है तिनका पौ सब गवाए सी जिन रखण को हर आप होए होर केती झक झक जाए सी जन नानक नाम त्याए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुर सिखा कै मन भावदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़ै सुआई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन सब आन निवाई जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई।

है क्यों संतो निर्मल हुए गुरमुख गुण वे हाजी है मल हों में कड्डे धोए सच मणंज है रंग।

राग सुलखणी जे खसमै चित करे पाणे चले सतगुरु कै ऐसा शिंगार करे सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे ज्यों उबली मजीठे रंग गह गहा त्यों सच्चे नो जियो दे रंग चलूले अतरती

उठा सतसंगत मह हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया ओए पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचै नवखंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अगे पिछे ढोई नाही गुरसिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे जिन हिरदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत भलाया दुरमत बिखिया बेकार सतगुरु मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल लय जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाहा है सो करे जिस अंदर भिजै जिनी एक मन एक अराध्या तिनका कंध ना कबहू सिजै तन तन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजै सच सच्चा जिन मन भामदा से मन सच्ची दरगाह लिजै तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजै सलोक महला चौथा साकत जाए निवह गुर आगे मन खोटे कूड़ कूड़ आरी जां गुर कह उठो मेरे भाई वह जाहे कुसर बगलारी गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै चुन कड्डे लड्डो वारे कोई अगे पिछे बह मुह सुपाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा भख सो ओथै नाही जाए कूड़ लहन भेडारे जे साकत नर खवाइए लोचिए बिख कड्डे मुख उगलारे हर साकत सेती संग ना करियो हो उए मारे सिरजन हारे जिसका एहो खेल सोई कर वेखै जन नानक नाम समारे महला चौथा सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उर तारिया सतगुरु नो अपड़ कोई ना सकई जिस वल सिरजन हारिया सतगुरु का खड़ग संजोव हर भगत है जित काल कंटक मार वडारिया सतगुरु का रखण हारा हर आप है सतगुरु कै पिछे हर सब उभारिया जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का सो आप उपावन हारे मारिया एहे गल होवै हर दरगाह सच्चे की जन नानक अगम विचारिया पौड़ी सच सुतिया जिनी अराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग मह जानिए है जो गुरमुख सच रवे हों बलिहारी तिनको जे अन दिन सच लवे जिन मन तन सच्चा भामदा से सच्ची दरगाह गवे जन नानक बोलै सच नाम सच सच्चा सदा नवे सलोक महला चौथा क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै से पूरे पुरख प्रधान करमी सतगुर पाई है अन दिन लगे ध्यान तिनकी संगत मिल रहा दरगाह पाई मान सौंदे वाहो वाहो उच्च रह उठदे पी वाहो करेन नानक ते मुख उजले जे नित उठ संभालेन महला चौथा सतगुर सेविया अपना पाईए नाम अपार भौजल डुबदियां कढ़ लए।

आया जिन हर प्रभ दिता जोड़। महला तीजा माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला। गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किश जानदा, जो जिया अंदर वरतै। तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणतै। सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनतै। तू घट घट एक वरतदा, सच साहिब चलतै। सतगुर नु मिले सो हर मिले, नाही किसै परतै। सलोक महला चौथा, एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है। गुरमुख लाइयै चित, क्यों सास ग्रास वसारी है। बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई। एहो जियड़ा हर प्रभ वस, ज्यों भावै त्यों रख तू। जन नानक नाम बखश। महला तीजा, मनमुख अहंकारी महल ना जाने। खिन आगै खिन पीछे, सदा बलाइय महल ना आवै। क्यों कर दरगाह सीजै।

जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्निया ता पाप कसम्मल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्निया तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने, सलोक महला तीजा जिन गुरु गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाओ, हलत पलत दोवै गए दरगाह नाही थाओ, ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए, सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय, सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुरु भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

गुमान करहै मूड़ गुमानिया विस खादी मरिए आए लगे नी देह थोड़े ज्यो पक्का खेत लुनिए जेहे कर्म कमावंदे तेवे हो पणिए जन नानक का खसम वड्डा है सबना दा धणिए सलोक महला चौथा मनमुख मूलो भुलिया विच लब लोभ अहंकार झगड़ा करदिया अन दिन गुदरे शब्द ना करहै विचार शुद्ध मत करतै सब हिर लई

0: वेद कहंदे
1: भगत मुखै ते बोल दे से वचन हवंदे प्रगट पहारै जाप दे सब लोक सुनंदे सुख ना पायन मुग्ध नर संत नाल कहंदे ओए लोचन ओना गुणा नू ओए अहंकार सड़ंदे ओए वेचारे क्या करहै जा भाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसै ना संदे वैर करन निर्वैर नाल धर्म ने आए पचंदे जो जो संत सरापिया से फिर है पवंदे पेड़ मडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे श्लोक महला पंजवा गुरु नानक हर नाम दरड़ाया भन्नन कण समरथ प्रभ सदा संभाल है मित्र तू दुख सबाया लथ महला पंजवा खुदया वंत न जानी लाज को बोल नानक मांगे नाम हर

नानक सतगुर मिलिया पाया नाम धन माल महला चौथा। सतगुर के जी की सार न जापै के पूरे सतगुर भावे। गुर सिखा अंदर सतगुरु वरतै जो सिखा नु लोचै सो गुर खुशी आवे। सतगुर आखे सो कार कमावन सो जप कमावे।

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे। जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े। जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों भावै त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुध गौड़ी की वार महला पंजवां।

थान थनंतर राव रहया जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाणा नानक प्रभ शरणागती साध साध कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धणी नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौ जल पार पौ। महला पंजवा वाऊ संदे कपड़े पहर है गर्भ गवार नानक नाल न ना चलनी जल बल होए शार पौड़ी से ही उबरे जगह विच जो सच्चा रखे मोहे डिठे तिन कै जीविए हर अमृत चखे काम क्रोध लोभ मोह संग साधा पखे कर कृपा प्रभ अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी को सकै ना लखे। श्लोक महला पंजवा नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवै चित जित दिन विसरै पार ब्रह्म फित पलेरी रुत। महला पंजवा नानक मित्राई तिस स्यों सब किस जिस कै हाथ कमित्रा से कांडी है एक विख ना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। श्लोक महला पंजवा डिठड़ो हब ठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुआओ जिन्ना सतगुर भेटिया। महला पंजवा दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे वत सुहावी साए नानक नाओ जपंदो तिस धनी पौड़ी सिमरत शास्त्र सोध सब किनै कीम ना जानी जो जन भेटै साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख एह रतना खाणी मस्तक होवै लिखिया हर सिमर प्राणी तो सा दित्यै सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा अंतर चिंता नैणी सुखी मूल ना उतरै भुख

विचार जो जा चंडी हेकड़ो गाली ब्या विकार नानक धनी विहूणिया महला पंजवा नीह जे विद्या मन पछाणु विरलो थियो जोड़न हारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव हो जियड़े दाता बख्शिंद किल विख सब बनास होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दस्या जपिय गुरमंत माया स्वाद सब फिक्किया हर

एक जिस तो सदेवै आप जित खादै मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सुपाए तन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व

ज्ञान रंग रूप रस बाद के करह पराणिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भाव ही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

सारी पौड़ी रसना उतरै हर श्रवणी सुने सो उतरै मित्ता हर जस लिखे लाए भावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उधरे बिख्या गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

तन फुटन जिन्ना साहिं विसरै मोहल्ला पंजवां प्रेतों की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारे निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे नानक का प्रभ वड्डा है।

तू तरवर हौ पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोग काहे दुख मानिया।

कबीर जी नगन फिरत जो पाईऐ जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग क्या नांगे क्या बांधे चाम जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति भेद न गई आकाई बिंद राख जो तरिय पाई खुसरे क्यों ना परम गत पाई कहो कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई गौड़ी कबीर जी।

पर चाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पाव है काल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महारास पीजै।

दो स्यों लाइय चतराई ना चतर भुज पाई है रहाओ पर हर लोभ अरलोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहमेव मिल पाथर की करही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती कहो रे पंडित बामन कब के हुए बामन कह कह जन्म मत खोए रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम का

कबीर जी, अंधकार सुख कबह न सोई है, राजा रंक धू मिल रोई है, जो पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए को कां की माया, जस जंती

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हों मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग होए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कही है काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समार।

तौ कीजै जौ आपन जीजै। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवनहारा रहाओ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

पंच पदे ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन पया मगहर की बासी कांसी मग

केवल राम भगत निज भागी गौड़ी कबीर जी जे मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द परगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मानिया मर मर जाते जिन राम ना जा।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लाव खोजत तन मह ठौर ना पाव लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक भाई देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अन

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जो बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार। पंडित देखो हृदय बिचार, प्रीत बिना कैसे बदे स्नेह। जब लग रात तब लग नहीं नेह। रहाओ साहन सत करे जी अपने, चोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन तन

नहाऊं। इनकै सद बलिहारै जाऊं। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन पावे रहाउ। जेहे कट राम रहया परपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बीचारा रहाउ, सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तव अनुभव पाया, गौरी कबीर जी मन का सुपहो मनह व्यापी, मनह मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाउ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई, कहो

बूझै बूझनहार सुभागा रहाउ। सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई, सांकल जेवरी लै है आई। आपन नगर आपते बांधिया, मोह कै पांद काल सर सांधिया। रहाउ कटी ना कटै टूट नह जाई, सास आपन होए जग को

तुझह ले तारू हिचह ता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव ते रह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

तारा कह कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट खेलै।

पदे 35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हम हो ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन

जाना, इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका भर्म गया तिन साच पछाना, इस मन को रूप न रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पियो, एह मन लीन भये सुख देव, जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी ग्वार री अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे।

सोरठ पी रे जी न लाज लाज तोहे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात।

आऊ कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाऊ। साधु संगत दियो रलाय, पंच दूत ते लियो छडाय। अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना। सतगुर

सूतक सूतक ओपत होई गन में सूतक मुए फोन सूतक सूतक परज बेगोई कहो रे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जप हो मेरे मीता रहाओ नैनो हो सूतक बैनो हो सूतक सूतक श्रवनी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परै रसोई हासन की बेद

धारी उपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरखै केह तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जस सुनह ना हर गुण गाव है बातन ही असमान गराव है ऐसे लोगन स्यो क्या कही है जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है रहाओ आप ना देहे चुरु भर पानी तेह निंद है जेह गंगा आनी बैठत उठत कुटलता चल है आप गए और नहु काल है छाड़ को चर्चा आन ना जान है ब्रह्मा हूं को कहो ना मान है आप गए और नहु खोव है आग लगाए मंदर में सोव है अवर्ण हस्त।

साध जीवत पितर न मान को मुए श्राद्ध कराही। पितर भी बपरे कहो क्यों पाव है कौआ कूकर खाही। मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते जा।

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती हल्की लगे ना भारी रहाउ अर्ध उर्द दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहां समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बनजारा रहाउ काम क्रोध दोए भये जगाती मन तरंग बटवारा पंच तत् मिल दान नवेर है टांडा उतरियो पारा कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बन आई घाटी चढ़त बैल एक थाका चलो गोन छिटकाई।

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे तां सुहागन जानी गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पल मीठा अवरना दूजा भाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बांधे बहु।

एक है बद हम ही जिसे बुझाए सुई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दाहने बेकारा हर पद दृढ़ कर।

किस नाही, पांच तात तह नाही, एड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगण कत जाही, तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समा।

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कहिए किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए बिनासी, काको ठाकुर का।

अविनाशी गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंता सुन गुफा मह आसन बैसन कल्प विवर्जित पंथा मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मरतना सोग बियोगी रहाव खंड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है टूटे हुए पसारी मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी थिर पई तंती टूटस नाही अनहद किंगरी बाजी सुन मन मगन पए है पूरे माया डोल ना लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बहत्तर

समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजै फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनहु बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

देव गौड़ी अगन ना दह पवन नहीं मगन कस कर नीर ना आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है रहाओ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहवा नारायण परे ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुभद ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे ओ रहाओ ज्यों उद्यान कुसम पर फुल्लत किन्ह ना कराओ लयो तैसे भ्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो या धन जोगन अर सुत दारा देखन कौ जो दयो तिन्ही माए अटक जो उर्जे इंद्री परेर लयो औद अनल तन तिनको मंदर चहु दिस ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुरु ओट लयो।

झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाव जां तिस भावै ता हुक्म मनावै इस बेड़े को पार लंघावै गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सारग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन मह उर्द तप करता तव जठर अग्न मह रहता लख चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठौर ना ठायो कहो कबीर भज सारग पानी आवत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी है दरिये ना नरक निवास होना है सो होई है मन है ना की जय आस रमैया गुण गाइये जाते पाइये परम निदान रहाओ क्या जप क्या तप संजमो क्या वर्त क्या इशनान जब लग जुगत ना जानिए भाओ भगत भगवान संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है बिद निरतिया सो होए कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जेह घट बसै मरार गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार।

रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उस

जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण रसना राम रवीजय राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे वाका स्वरूप देख मोही ग्वारन मोको छोड़ ना आऊ ना जाहू रे तो हे चरण मन लागो सारंग धर सो मिले जो बड़ भागो रहाउ बिंद्राबन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जा का ठाकुर तुही सारिंग धर मोहे कबीरा नाहू रे गौड़ी पूर्वी बारवा

छाडोह परम प्रगट होए नाचोह, या माया के डांडे सूर के सनमुख रनते डरपै, सती के सांचे पांडे डगमग छाड रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, लीनो हाथ संदौरा रहाऊ काम।

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक

जास गुण गाव है तास बस है मूरे प्राणा न रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पये मन बासन त्याग घटियो अभमानाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बस्यो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महा सुख भ्रमत रहे मन मानाना।

आद मैं जाना लिख अर मिटे ताई न माना ओंकार लख जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा हर जी तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा खक्खा एह खोड़ मन आवा खोड़े शाड ना दह दिस तावा खसम जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै।

गह गगन रहाई, कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कबह ना होई, तां घट माहे घाट जो पावा, सो घट छाड अब घट कत तावा, नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम स्यानप एह, चचा रचत चित्र है भारी।

इह है शत्रपत पासा शक के ना रहो शाद के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे शाद कत आप बंधावा जज्जा जो तन

परवाना, कत झक झक और न समझावा, झगर किए झगरो ही पावा, नन्या निकट सो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जां कारण जग ढूंढियो, नेरो पायो ताहे, तटा बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल के ना जाही।

भूपत पहचानिया, ममा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, ममा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध हुए,

उपजै पाओ, पूर रहया तह त्रे पवन राउ, खखा खोज परे जो कोई, जो खोजै सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो पव जल तरत ना लावे बारा, सस्सा सो सह सेज सवारे, सोई सही संदेह निवारे, अल्प सुख छाड परम सुख पावा, तब एहे त्री ओह कंत कहावा, हा हा होत हुए नहीं जाना, जब ही हुए तबह मन माना, है तो सही लख जो कोई, तब ओही ओह एहो ना होई, न्यो न्यो करत फिर

हर प्रेम सुधा रस पीवै कोए, जरा मरण दुख फेर ना होए। छठ खट चक्कर शहु दिस धाय, बिन परचै नहीं फिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिस तावै, तो जोनी संकट बहुर ना आवै। शीतल निर्मल भया शरीरा, दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवै सूर, एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो, अचरज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगम बखान, अर्ध उर्ध बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार, रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरहु ध्यान, कतनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश, पसरह कला सहज परगास। आदि अंत मद हुए रहे आथीर, सुख सागर में।

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराए बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंकल।

माहि, ऐनस कसमल तो वह नाहि, सो किरत सहारै सो एह ब्रत चढ़ै, अन दिन आप आप स्यो लड़ै, सुरखी पांचो राखै सबै, तो दूजी दृष्ट ना पैसै कबै, थावर थिर कर राखै सोए, जोत दी वटी घट मह जोए, बाहर भीतर भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग घट मह दूजी आन, तौ लो महल न लाभ जान, रमत राम।

योग की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाओ तारी ले गनका बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेउ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उग्र सैन कौराज दी।

जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

रूपुरुख निरंजन हर पुरुख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो संत हो जी सब दुख वसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको

सर्ब निरंतर रव रहिया, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा पहया, रतन उपाय तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन की।

आहे ज्योति ज्योत समाणी पीतर ता छोड़े माया के लाहे सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया सगल भवन तेरी माया हरारे रूप नरालम बैठा नदर करे विच छाया बिना शब्द वजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो सहोराता

याद, जब लग हृदय न आवह याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ, मन की मत मता गल मता, जो किस बोलिए सब खतो खता, क्या मुँह लै कीचै अरदास, पाप पुन धोए साखी पास, जैसा तू करहे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जे ही तू मत देहे ते ही को पावे, तुझे आपे पावे तिवें चलावे, राग रतन परिया परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते का इहो तन माल, जे को बूजै इहो विचार, आसा महला पहला, कर किरपा अपने घर आया, ता मिल सखियां काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, सहो वी आहण आया, गावो गावो कामणी बिबेक बिचार, हमरै घर आया जग जीवन पतार, रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ, जा सहो मिलिया ता जानिया, तिहो लोका हमें शब्द रविया है, आप गया मन मानिया, अपना कार्ज आप सवारी, पूर्ण कार्ज ना हुई, जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई, भणत नानक सबना का पिर एको सोए, जिसनो नदर करे सा सुहागण होए, आसा महला पहला, ग्रहो बन समसर सहज सुपाय, दुर्मत गत पई कीरत थाए, सच पौड़ी सचो मुख नाम सतगुरु।

अधिक त्यास भेख बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम निस्तरे, सिफत सलाहन सहज आनंद, सखा सहन प्रेम गोविंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन

संग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ता कै सदबल हारे जाओ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वार जिन पाया धन नारी।

जात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेते एको सो होए आसा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पाव है से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बेख वत अत भौजल

गुरमुख निर्मल रह प्यारी, ज्यो जल अंब ऊपर कमल नरारी। बुरा भला कहो किसनु कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

तू ही आसा महला पहला काया ब्रह्मा मन है धूती ज्ञान जनेऊ ध्यान कुस पाती हर नामा जस जाचू नाऊ गुर प्रसादी।

सो प्रगट जाय। सच निशान है ठाक न पाय। पंडित पढ़े बखान है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखा आख बखानी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। इस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवै। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेमो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है कर है सोई, आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आसन रास पई, पुरी अवस्था गुरमुख पाई। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

ब्रह्मपुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटै ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यो रह समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हों पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किस लेव हो जो उपजै सो अलख अपेव हो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत दिरडाई सगली सौदी टोटा आवे नानक राम नाम मन भावे आसा महला पहला चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच रासी ता तीर्थवासी घुंगरू वाजे जे मन लागे

मेरा सहो जागे हौ निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हौ निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगे।

आधार गंग बनारस सिफत तुमारी नावै आत्म राव सच्चा नावण तां फीऐ जां एनस लागै भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबहू न खूटस नाहीं आसा घर चौथा महला पहला।

घर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पाए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमन लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवह उदासी मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाऊ फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल रु

रहाउ। हर हर हर कंठले पहरे दामोदर दंतले, कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तरे, मधुसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले, तीर्ज धरी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे, मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे, ज्ञान राओ जब सेज आवे ता नानक भोग करे, आसा महला पहला कीता हुए करे कराया, तिस क्या कही है भाई जो किस करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई तेरा हुक्म भला तुद पावे, नानक तां को मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई, जे को दरगहा बहुता बोले नाओ पवे बाजारी, सतरंज बाजी।

वह मुंदरा खिंता खिमा हंडावू, जो किस करे भला कर मानू, सहज जोग निद पावू। बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी, परम तंत मह जोगं अमृत नाम निरंजन पाया। ज्ञान काया रस भोगं रहाऊ, शिव नगरी मह आसन बैसो। कल्प त्यागी बादं सिंही शब्द सदा तुन सोह, एनस पूरे नादं

सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावै कर करनी कस पाई पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआई बाबा मन मतवारू नाम रस पीवै सहज रंग रच रहिया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाउ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवै क्या मद छूछ भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बैकुंठ करे किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारे कहो नानक सुन परथर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैं की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारे ता मन रूस न होई रहाव सकता सिंह मारे पै बगै खसमै सा पुरसाई रतन बगार वगोए कुत्ती मोया सार ना काई आपे जोड़ बछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगै दाणी मर मर जीवे तां किस पाई नानक नाम वखाणे राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावे बड़ भाग गुर कै शब्द सच्चे बैराग खट दर्शन वरते वरतारा गुर का दर्शन अगम अपारा गुर कै दर्शन मुक्त गत हुए साचाया।

कोई गुर के दर्शन सदा सुख होए। गुर के दर्शन मोख द्वार सतगुर सेवे परवार साधार। नुगुरे को गत काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर के शब्द सुख शांत शरीर गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवे नानक गुरमुख साच समावे। आसा महला तीजा शब्द मुआ विचों आप गवाए। सतगुर सेवे तिल ना तमाए निरपहु दाता सदा मन हुए। सच्ची वाणी पाए भाग कोई।

साचे शब्द समाहे सेवड भागी जिन नाम त्याया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहार है जाऊं दर साचे साचे गुण गाव आपे देवे सहज सुपाए नानक कीमत कहन ना जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई श्री वछुने मेल मलाई आपे मेले मेल मलाई अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन बिद होए हर अपरंपर अगम अगोचर गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए विरले कर्म प्राप्त होए ऊची बाणी ऊचा होए गुरमुख शब्द बखाने कोए विणनावे दुख दर्द शरीर सतगुर भेटे ता उतरै पीर बिन गुर भेटे दुख कमाए मनमुख बहुती मिले सजाए हर का नाम मीठा अतरस होए पीवत रह पियाए सोए गुर कृपा ते हर रस पाए नानक नाम रते गत पाए आसा महला तीजा मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर सेवत ही सुख शांत शरीर शब्द तरे जन सहज सुपाए किनकै हम सद लागह पाए जो मन राते हर रंग लाए तिनका जन्म मरण दुख लाथा ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाओ शब्द चाखै साचा साध पाए हर का नाम मन वसाए हर प्रभ सदा रहे।

आई गुर प्रसाद वसे मन आई गुरमुख विचों आप गवाए हर रंग राते मोह चुकाए अत निर्मल गुर शब्द विचार नानक नाम सुवारन हार आसा महला तीजा दूजै पाए लगे दुख पाया बिन शब्द बिरता जन्म गवाया सतगुर सेवै सूजी।

सुख पाई, संत संगत मेल हर गुण गाय, नामी नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की वाणी नाम बजाय, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में लाहा हर जप लै जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजै लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तिथ घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हो मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरों फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवै ढिल ना पाई, मन मुख परम भुलै संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्लै ना पाई, मन मुख भुला जन्म गो

होए नानक नाम वडाई होए आसा महला तीजा मनमुख झूठो झूठ कमावे खसमे का महल कदे ना पावे दूजह लगी भरम पलावे ममता भादा आवे जावे दुहागनी का मन देख सिंगार पुत्र कलत धन माया चित लाए झूठ मोह पाखंड वकार रहाओ सदा सुहागन जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अन दिन हरदावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागन साची जिस साच प्यार अपना पिर राखे सदा उर तार नेड़े वेखे सदा हदूर।

नानक साच समावै सोए। आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपाई। गुर कै भै साचै साच समाई।

खबर ना कोई। गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरे भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिसे आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासै अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाउ मोह गमान गुर शब्द जलाए।

पहचान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जीव आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सियों चित लाए भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा घर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणे सतगुर मिले सच सूझी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाउ इस जुग में निरपो हर नाम है पाईए गुर विचार बिन नामे जम कै वस है मन मुख अंध गुआर हर कै भाणे जन सेवा करै बूझै सच सोई हर कै भाणे सलाहिए भाणे मने सुख होई हर कै भाणे जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा।

रत न पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन

हर गुण सद ही आख वखाण, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा घर दूजा महला चौथा। किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुर्म सके नाल जवाई। किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। हमारा धड़ा हर रहया समाई, हम हर स्यो धड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख धड़ा अवर न कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक। रहाव जिन स्यो धड़े कर है से जाहे, झूठ धड़े कर पछो ताहे। थिर न रह मन खोट कमाहे, हम हर स्यो धड़ा किया जिसका कोई समर्थ नाहे। यह सब धड़े माया मोह पसारी, माया को लूजह गवारी। जन्म मरह जुए बाजी हारी, हमरे हर धड़ा जे हलत पलत सब सुवारी। कलयुग मह धड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सतसंग मलाए, हमरा हर धड़ा जिन एह धड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा पाओ धड़े बह पावे, प्राया सिदर अटकले अपना अहंकार वधावे। जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर धड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवे। आसा महला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया।

माया मलतारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

धंधा, सबने फल कर्म किए दुख धंधा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। महला चौथा, राग आसा घर छेवे के तिन, हथ कर तंत वजावै जोगी, थोतर वाजै बेन, गुरमत हर गुण बोलो जोगी, एह मनुआ हर रंग भेन, जोगी हर देहो मती उपदेस, जुग जुग हर हर एको वरतै, तिस आगै हम आदेश रहाउ, गाव है राग भांत बहु बोल है, यह मनुआ खेलै खेल, जो वह कूप सिंचन को बसधा, उठ बैल गए चर बेल, काया नगर मह कर्म हर बोव हो, हर जामै हरिया खेत, मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो, हर सिंचो हो गुरमत जेत, जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी, जो देहो मती तित चेल, जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

आवत जात बार खिन लागे हम तब लग समारो नाम मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सकूं जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुण गावे कब को नाचे पाम पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाच हो हर हर त्याई ऐसे संत मिल है मेरे भाई हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे अन दिन हर निबलाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत भले तुद भाव है जिनकी पत पाव है थाए नानक आख नाराजे हर गुण ज्यों आख है त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वणज लै जाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा आया मन तुरा हो हम मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर हुई है गुरपूरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समानिया रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलने आज के काल तुरो फुरमाया बिरथा जन्म तिना जिन्नी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया दर सच्चे सतियार महल बुलाया रहाओ अंतर नाम निदान गुरमुख पाईऐ अन दिन नाम त्याए हर गुण गाईऐ अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईऐ हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआईऐ नानक आपे आप खुआईऐ गुरमत मन परगास सच्चा पाईऐ राग असावरी कर सोलवा के दो महला चौथा सोधंग एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम अन दिन हर नाम कीर्तन करूं सतगुरु मोको हर नाम बताया हम हर बिन खिन पल रह ना सको रहाऊ हमरे सर्वन सिमरन हर कीर्तन हम हर बिन रह ना सको हम एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रह

सकूं, जैसे करहल बेल रिझाई रहाऊ। हमरा मन बैराग बिरकत भयो, हर दर्शन मीत कै ताई। जैसे अल कमला बिन रह ना सकै, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राख सरन जग

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस भौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरी तिन हुए ना आपै, एक सती कहावे है तिन बहुत कल पावे। हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी पुलाय। पंडित मोहे लोभ सवाय, त्रै गुण मोहे मोहया आकाश। हम सतगुर राखे दे।

समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधिया जोत स्वरूप अनाहद वाजिया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रिय सो राती धन सुहागण नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओहो रह समाई आसा महला पंजवां निज भगती सी।

वख वख परमावे घर की नायक घर वास ना देवे जतन करूं पुरजाई फरेवे रहाव तुरकी भेजी आई।

दुए मनुख पहचावो, तृतीये मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया, महा आनंद अचिंत सह जाया।

माना कर मस्तक धार राखियो कर अपना क्या जान है एहो लोग अजाना रहाव सुहाग हमारो अब हुन सोहयो कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान सद कुचिया सदा रंग माने नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने कहो नानक जो पिरह शिंगारी थिर सुहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उनमू कर परना

तन ते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाउ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटै त्रिकुटी किस निज घर वासा, ऊंचा चढ़ै सो पवै पयाला, तरन पड़ै तिस लगै ना काला, भ्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत कर हो।

के चौपदे एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कब हो ना बिहावे दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोको पिरह मिलावे रहाओ चार पहर चहु जुगह समाने रैन पई तब अंत ना जाने पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख।

सुखन दान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई भाई न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु ना जाई रहाओ तोट ना आवे नखोट ना जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना तिन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवा।

आओ दिन ते सर पर पौसी रात रहन गई फिर होए प्रभात माया मोहे सोए रहे अपागे गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक।

त्यों कर प्रत पाला आसा महला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार।

रहाउ। त्रिपत अगावन साक्य नाय, अठसठ मज्जन संत तुराय। सब मैं जानू करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक। दास सगल का छोड़ अभमान, नानक को गुर दीनो दान। आसा महला पंजवां, बुद्ध परगास भई मत पूरी। तांते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले। बूढ़त कोर अंधकूप में,

गुर पूरै प्रगट मार्ग दिखाया, जाप ताप काशि उकत ना मोरी, गुर नानक सरनागत तोरी। हास

मन सदा आनंद आन रसा मह व्यापै चिंद हर रस पीवै अलमस्त मतवारा आन रसा सब हो शेरे रहाउ हर रस की कीमत कही न जाए हर रस साधु हाट समाए लाख करोरी मिले ना केहे

आद एक ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुरमते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावे, ता प्रीतम होवे मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

आप सहाय गुण निदान नित गावे नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवा औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिनसिया थाउ ताप गया बचन गुर पूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवा पांचत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

सदा सदा आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पावह किलख जाही सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर भेटे।

संग मेली सुख सहज आनंद सोहेली साध संग गुण गाए अतोली हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा काम क्रोध माया मद मत सर ए खेलत सब जुए हारे सत संतोख दया धर्म सच एह अपने ग्रह भीतर वारे जन्म मरण चूके सब भारे मिलत संग भयो मन निर्मल।

छोड चल्या एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, अपदेश करे आप ना कमावे, तत शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी।

0: कर कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा।
2: राग आसा कर पंजवा महला पंजवा।

आया कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाली आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचे आप निवारी पंच जना ले वसगत राखे मन में है इकंकारी तेरा जन नृत करे गुन गावे रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द वज

नावे कर संग साधु चरण पखारे संत धूर तन लावे मन तन अर्प धरे गुरे आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा तनका जन्म मरण दुख भागे।

आया रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काढ़ लिए महापव जलते अपनी नदर निहाल रहाओ जां कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाइय सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गा

मुकुट पाए अंधकूप महा कोरते बाहा पकड़ गुर काढ़ लिए निरपव पाए सगल पव मिटिया राखे राख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार्य

राख है, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिसको बेपना को भाख है, ओहो सुख ओहा वडियाई, जो प्रभु जी मन पानी, तू दाना तू सद मेहरवाना, नाम मिले रंग माणी।

प्रब अंतर जामी साध संग हर पाई खोल कवार दिखाले दर्शन पुनरप जन्म ना आई है मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरों रे पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तां कै संग तरों रे रहाव महा उद्यान पावक सागर भये हरख सोग मह बसना सतगुर भेट भया मन निर्मल जप अमृत हर रसना तन धन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांधिया गुर प्रसाद भये जन मुक्ते हर हर नाम आराध्या राख लिए प्रभ राखन हार जो प्रभ अपने पाणे जियो पिंड सब तुमरा दाते नानक सद कुर्बानी।

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्णना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी। काजर कोट मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी। महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भगत नानक सुख पाया

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुकाने हो रा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज तरी कान कड़न ते शूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया, सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहा मह फलिया, ऐसा करहु बिचार ज्ञानी, जाते पाइए पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है भाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

तेरै ओलै। भ्रम के परदे सतगुरु खोले रहाउ, हुक्म बूझ रंग रस माणी। सतगुर सेवा महानिर्वाणी, जिन तू जाता सो गिरस्त उदासी।

अवतार, नरक सुर्ग फिर अवतार, गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर की

चित आवै सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत टह दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान साच शब्द जाका निशान गुरपूरै हर।

बाट काट ज पीजै, गुर प्रसाद हर अमृत पीजै, दिन सरैन हर कीर्तन गाइय, सो जन जम की वाट ना पाइय, आठ पहर जिस विसरह नाही, गत होए नानक तिस लग पा।

सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलोखिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण कराम ने अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलाब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पये पनीत संतन की तूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस भेटे।

रतन जन्म एहो सफल भया, कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवां, सतगुरे अपना सद सदा संहारे, गुर के चरण केस संग झारे।

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखों एकै ओही

मूर्ख मुगध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आस मन धारी, जप तप संयम कर्म ना साधा, नाम प्रभु का मन है अरादा, किशु न जाना मत मेरी थोरी, बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी, आसा महला पंजवा, हर हर अखर दुए एह माला, जपत जपत पहे दीन दयाला, करूं बेनती सतगुरे अपनी, कर कृपा राख।

मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करे सोई पाल।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया। आसा महला पंजवा, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम

माया मद माती जागत भगत सिमरत हर राती रहाउ मोह भरम बहु जोन पवाया अस्थिर भगत हर चरण त्याया बंधन अंध कूप ग्रह मेरा मुक्ते संत बुझह हर नेरा कहो नानक जो प्रभ सरनाई इहां सुख आगे गत पाई।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहु गुण मह वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो ना

ना जानी भोर भया बहोर पछतानी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करो री रहाओ कर्म है अमृत आनन सारे खिसर गयो भूम पर डारियो साध मोहे लादी अहंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे

पंजवां ठाकर स्यों जाकी बन आई भोजन पूर्ण रहे अगाई कछु न थोरा हर भगतन को खात खर्चत बिलचत देवन को रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

आनंद ने मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर पाया।

उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना हम

गर्भ मोह तज हूं रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमख निमख एही आराधो, दिन सरहन ए सेवा साधो। भये कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद। आसा महला पंजवा, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना को।

सगल उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस सार संग भूले।

मालिक माया कर कर अनर्थ बिहाजी माया संचत संचत थैली कीनी प्रभ उसते डार अवर को दीनी काच गगरिया अंब मझरिया गर्भ

संबाहा निकसिया फूक ता हुए गयो स्वाहा। ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतियां मोहे।

आठ घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वडे ठगाऊ, छोड़ह नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

तेरे भाई वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जा कै केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जा कै एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने। कोट कोट अग काटन हा।

चली ताका संग बांचह सुरदेव अमोग दर्स सफल जाकी सेव कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संतहां टहल दी जय गुणतास आसा महला पंजवां सगल सूख जप एक नाम सगल धर्म हर के गुण गाम महा पवित्र साधका संग जिस भेट त लागे प्रभ रंग गुर प्रसाद होए आनंद पावे जिस सिमरत मन होए परगासा ताकी गात मित

देखते लेखा भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा कहो नानक जिस सतगुर पूरा वाजे ता कै अनहद तूरा।

अहर जसै अगानी जप जप जीवा सारग पाने करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ लाल जिवे हर भरे भंडार तोट न आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै जा।

मेरा धन सुहागा। कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर। बोलै कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर। ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया। हम गुर राखे मेरे पाई रहाव, पाए ठगौली सब जग जोहया। ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ भवे सब धरना। से उबरे जे सतगुर की सरना, माया मोहे सबो जग बहंदा। हौ मैं पचै मन मुख।

वहां पकड़ हम राखा आसा मोहल्ला पंजवा सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी ईहा ऊहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत ना।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई, रहाउ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्र है मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम,

प्राण अधारी जाकी सेवा सर्व सुख पाव है अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है सदा आनंद आनंदी साहिब गुण निधान नित नित जापी है बलिहारी तिस संत प्यारी जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है रहाओ जाका दान नुखूटे नाही पली पांत सब सहज समाही जाकी बख्श न मेटे कोई मन वासाई है साचा सोई सगल समग्री ग्रह जाके पूरन प्रभ के सेवक दुख ना चूरन ओट गही निर्भव पद पाई है सास सास सो गुण निद गाई है दूर ना होई कतहूं जाई है नदर करे ता हर हर पाई है अरदास करी पूरे गुर पास नानक मंगे हर धन रास आसा महला पंजवां प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सगल को हुआ सुख कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल तिस सतगुर को जाओ गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख बनासे सतगुर की शरणाई रहाओ गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए।

प्रगट भया जन का प्रताप। गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई, जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ। सरन परे साचे गुरदेव, पूर्ण

तुम संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोई सर्व रहया परपूर सच

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर हुए। रस कास सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है।

भाव कर तो निद हर पावो सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसह सिंगारे नानका तिस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी।

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ परता कह सुमानी है एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर राय री तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री।

लो ज्यों मन के भरमा भ्रम काटे गुरे अपने पाए विश्रामा हुए बिखादी दुखिया ए गुरते हुटे हम छूटे अब उनाते हुए हम ते छूटे रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमै बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाव ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाव बलिहारी गुरे अपने सद सद बल जाओ गुरु विटो हों वारिया जिस मिल सच सुआओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लगे है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ भावे पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम पै बिन से भ्रम मोह गए को जिसे ना बिया नानक राखे पा।

सर्व सुख पावौ आज्ञा पावौ के ना पावौ एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हौ मांगो आनल जावो सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ उठो बैसो रह पीना साको दर्शन खोज खजावो ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो ताकि शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आ

मार्ग पंथ सुमारी नाम दृढ़ गुरमन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभु पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवा जिसनो तू अस्तर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समग्री सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आवगे आ गया पार ब्रह्म की

कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उठाहा। आसा महला पंजवा अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुध हसनई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाओ मोहि किरपन को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई। आसा महला पंजवा रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेग ताया सस्त वखर।

गंदन वहन सुनह उर्जा वह नाम लैत अलकाया निंद चिंद को बहुत अमाहयो बूजी उल्टाया पर तन पर तन परती निंदा अखाद खाहे हरकाया साच तर्म सिंह रुच नहीं आवै सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हर नाया नानक आहे सरन प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाई मोह माया कर बांधे जह जानो सो चीत ना आवे अहम बुद्ध भय आंदे मन बैरागी क्यों ना अरादे काच कोठरी माहे तू बसता संग सगल बिखे

कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोह तरंग मान है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ। पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तू मर। जैसा संग बिसियर स्यों है रे, तैसो ही एहो परग्रहो। बैरी कारण पाप करता, बस्त रही अमाना। छोड़ जाहे तिन ही स्यों संगी, साजन स्यों बैराना। सगल संसार एह बिद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा। कहो नानक पाव सागर तरेओ, पये पनीत शरीरा। आसा महला पंजवा दोपदे, लूक कमानो सोई तुम पेखेओ। मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे। फिर पाछे पछतानी, प्रभ मेरे सब विद आगे जानी। भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ। जित जित लाए तित तित लागे।

हाउ तिस सेवक कह हो बलिहारी जो अपने प्रभ भावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसन आवे आसा घर ग्यारवां महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद नटुआ भेख दिखावे बहु बिद जैसा है ओह तैसारी अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर।

गुण गाए, एहो जन्म पदार्थ जीतारे रहाओ, त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कमन बिद तरिया रे, कुमन केर अगाह गाखरी, गुर शब्दी पार उतरिया रे, खोजत खोजत खोज बिचारे, तात नानक एहो जाना रे, सिमरत नाम निदान निर्मोलक, मन माणक पतिया नारे, आसा महला पंजवा धोपदे, गुर प्रसाद मेरे मन वसिया, जो मांगो सो पामो रे, नाम रंग एहो मन त्रिपताना, बहुर न कतहु तामो रे, हमरा ठाकुर सब ते उच्चा, रैन

तिन जन मिरदलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना

ला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे

महा भौजन लंघी है सदा हर गुण गाओ जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पुर होए नाम निधान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिया मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग।

महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत सास सास त्याए सो प्रभ त्याग अवर प्रीत रहाओ कर्ण कारण समरथ सो प्रभ जी दाता आप त्याग सगल सियाणपा आठ पहर प्रभ जाप नीत सखा सहाये संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ सर्व सुख बड़ी बड़ियाई

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यो त्यो रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रवतारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने से परगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरी।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवै पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावै लोभ बिखया बिखै लागे हर वित चित दुखाही

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जिहे कार्ज रह ओला सोई काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन मैदान पाए सब

प्रभ त्यावो भ्रम पीत जीत मटावो निद नाम नानक मोरे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम।

बिनस ना जाए मरहा गुरते जानिया नानक मन मानिया मेरे मना। असावरी महला पंजवा एका ऊट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आगे आ सत सहो हां मन है निदान लहो हां सुख

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नौवा बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रसे हो दस हूं दिस धावत आसा लागे ओ धन की रहा सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत नह सुद राम भजन की मानस जन्मे अकारथ खोवत लाज ना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कमत बनासै तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उत्तर अब कट सरवर नावै बकै न बोलै हर गुण गावै जल आकाशी सुन समावै रस सत झोल महारस पावै ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार रहया सब ठौरे रहा सच ब्रत नेम ना काल संतावै सतगुर शब्द क्रोध जलावै गगन निवास समाध लगावै पारस परस परम पद

काय जीवन मुक्त मन नाम वसाय गुरमुख होए ता सच समाय जिन तर साजी गगन आकाश जिन सब थापी था।

जग ज्ञानी विरला आचारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोई

कोई कौरो वै दुख कोई सोरो वै जिस बेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सो होए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हौं बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै तरना निरपहु आप।

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी।

नित्य ससोग अमृत ज्ञान महारस भोग पंच समाई सुखी सब लोग सगली जोत तेरा सब कोई आपे जोड़ बछोड़े सोई आपे करता करे सो होई ताहे उसारे हुक्म समावे हुक्मों वर्त जोत सुभावै।

क्या लहस निदान, जिसका अन तन सहज ना जाना, परम पुलाना फिर पछताना, गल पाही बौरा बौराना, बूढ़त जग देखिया तो डर भागे, सतगुर राखे से वड भागे।

राग सुनाए कहावे है बीते, बिन नावे मन झूठ अनीते, कहां चलो हो मन रहो हो करे, गुरमुख राम नाम तृप्तास्ते, खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लाभ लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नामन साच पछाणे, अंतर की गात गुरमुख जाने, साच शब्द बिन महल ना पछाणे, निरंकार मह आकार समावे, अकल कला सच साच टकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहां नाम मिले तह जाऊं, गुर प्रसादी कर्म कमाऊं, नामे राता हर गुण गाऊं, गुर सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता।

नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल साकत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना इत उत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा सिमरहो राम नाम अत निर्मल अवर त्याग हो हौमै कौरा रहाओ इहो मन मुगद कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुर मेले काल कंटक मारे सच पेले इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा इहो मन पंच तत ते जन्मा साकत लोभी इहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रे भवन सोजी होई इहो मन जोगी भोगी तप तापै गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै मन बैरागी होमै त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखै

ग्रास इकत थाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाओ धुन होई अहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब याद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के।

तू आप भुलावह नाम विसार, तू आपे रख है कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा, गुरबिन परम जप है जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द है जन्म के लेख है। देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जा की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

0: सुख तिस लागे।
1: जो जन राम नाम लिव जागे,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भये हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने।

पास एक लाख लहन बैठिया लख लहन खड़िया गरी सुहारे खांदिया मानन से जड़िया तिन गल सिलका पाइया टुटन मोत सरिया धन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी।

कामण जिस वेख नींद ना पाई कहां सो पान तंबोली हरमा होया शाई माई इस जर कारण कणी विगुत्ती इन जर कणी

जाननी घट ब्रह्म लुकाना। एक तपसी बन मह तप कर है नित तीरथ वासा आप ना चीन है तामसी काहे भये उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जती कहावह बिन गुर शब्द ना छूट ही भ्रम आवह जावह। एक गिर ही सेवक साधका गुरमति लागे नाम दान इशनान दृढ़ हर भगत सो जागे।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जन्म है के तारा की है

संसार सच ना पाया, क्या भविया क्या ढूंढिया, गुर शब्द दिखाया, ममता मोह विसर्जिया, अपने घर आया रहाऊ, सच मिले सच्चाई।

किया मन मुख पत खोई रहाउ जिन्नी एको सेविया पूरी मत पाई आद जगाद निरंजना जन हर सरनाई साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई

सोह करे जिस आप कराए नानक सिर दे छूटी है दरगाह पत पाए आसा महला पहला रूड़ो ठाकुर महारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे भाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी मैं उल गिया उल गी हम छोरू थारी ज्यो त्यो राख त्यो रहा मुख नाम हमारे रहाओ दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाईए मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया भाणे पत पाईए साचो दूर ना जानिए अंतर है सोई जह देखा तह रव रहे किन कीमत होई आप करे आपे हरे वेखै वड्याई गुरमुख होए निहाली है।

एक आधार तू दर सेवक दरवान दर्द तू जानही भगत तेरी हैरान दर्द गवावही दरगाह नाम हदूर गुरमुख जान सी वेला सच परवान शब्द पछाण सी सत संतोख कर पाओ तो सा हर नाम से मनहु छोड़ विकार सच्चा सच दे सच्चे सच्चा नेहो सच्चा लाया आपे करे नियाओ जो तिस पाया सच्चे सच्ची दात देह दयाल है जिस सेवी दिन रात नाम अमोल है तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आवन जाना क्यों रह क्यों मेला होई जन्म मरण का दुख घणो नित सहसा दोई बिन नावे क्या जीवना हित त्रिग चतराई सतगुर साधना सेविया हर भगत ना पाई रहाउ आवन जावन तौ रह पाइए गुर पूरा राम नाम धन रास दे बिनसै भ्रम पूरा संत जना को मिल रह तन तन जस गाए आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख हर पाए नटुए सांग बनाया बाजी संसारा खिन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा हो मैं चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा सब जग हारै सो जिने गुर शब्द विचारा ज्यों अंधलै हाथ टो

हर नाम अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारी नानक नाम ना विसरे पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपे जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ता के रूप ना जाही लखणी।

परम पद पाई है, कथे अकथ कहानी, तू करता किया सब तेरा, क्या तू करे पनाणी, जां को नदर करह तू अपनी, साई सच समाणी, नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती आवन जानी, जां तुद पावै ता गुरमुख बूजै, होर मनमुख फिरै इयाणी, चारे वेद ब्रह्मे कौ दिए, पढ़ पढ़ करे विचारी, ताका हुक्म न बूझै बपड़ा, नरक सुर्ग अवतारी, जुगह जुगह के राजे किए, गाव है कर अवतारी, तिन पी अंत न पाया ताका, क्या कर आख विचारी, तू सच्चा, तेरा किया सब साचा।

नामे ही सुख उपजै नामे सरनाई बिन नावे कोई ना मनिए मनमुख पत गुआई जामपुर बद्दे मारी है बिरता जन्म गुआई नामे की सब सेवा करे गुरमुख नाम बुझाई नाम हो ही नाम मनिए नामे वडियाई जिसनों देवे तिस मिले गुरमती नाम बुझाई नानक सब किस नाम।

ठीक है। बहुविध श्रिष्ट उपाय हुक्मी कार कराईंदा, दूजा किस कही है भाई, बुझना अबुझना तुद किया, ए तेरी सिरकार, एक ना बख्शे मेल लह, एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार, एक तुर पवित पावन है तुद ना मेलाए, गुर सेवा ते सुख उपज, सच्चे शब्द बुझाए, एक कुचल कुचील विखली पते, नाम हो आप खुआए, ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संजमी फिर है उतवताए, नदर करे जिस अपनी तिस नु भावनी लाए, सत संतोख एह संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए, लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाए, गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए, इहो मन देही सोध तू गुर शब्द वीच।

लाती जा, अमृत जिना चखायुन रस आया सहज सुभाई, सच्चा वे प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाई, अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखां मुख पाई, मन सदा हरियावला सहजे हर गुण गाई रहाउ, मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिल लाहे, जिन्ना पिर का स्वाद ना आयु जो तुर लिखिया सो कमाहे, गुरमुख बीजे सच जम्मे सच नाम वापार, जो इत लाहै लायन भगती दे भंडार, गुरमुख सदा सुहागणी भै भगत शिंगार, अन दिन रावै फिर अपना सच रखै उरतार, जिन्ना पिर रावया अपना तिन्ना विटो बल जाओ, सदा फिर कै संग रह विचो आप गवाई, तन मन सीतल मुख उजले फिर कै भाई प्यार, सेज सुखाली पिर रवै हो मैं तृष्णा मार, कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार, वर पाया सुहागणी केवल एक मरार, सबे गुनहा बख्शाए लयन मेले मेलन हार, नानक आखण आखिया जे सुन धरे प्यार, आसा महला तीजा सतगुर ते गुण उपजे, जां प्रभ मेले सोए सहजे नाम त्याई है, ज्ञान प्रगट होए

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चे नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाई शब्द हम मैं मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव, असावरी महला पंजवां घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत, निर्मल साची रीत, रहाउ दर्शन की प्यास घणी, चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म, हर कृपा धार मरार, मन परदेसी आया, मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता, सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस, बिनस जाही खिन माहे, भगत रते तेरे नाम स्यों, सुख पुंचह सब ठाई, सब जग चल तो पेखी है, निःचलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों, निःचल पावह ठाव, मीत साजन सुत बंद पा, को होत ना साथ, एक निवाहु राम नाम, दीना का प्रभनाथ, चरण कमल बोहित पै, लग सागर तरयो ते, भेट्यो पूरा सतगुरु, साचा प्रभ स्यों नेह, साध तेरे की जाचना, विसरना सास ग्रास, जो तुद पावे सो भला, तेरे पाणे कारज रास, सुख सागर प्रीतम मिले, उपजे महा आनंद, कहो नानक सब दुख मिटे, प्रभ पीते परमानंद, हास

सुख सिंगार बिखिया के फीके तज छोड़े मेरी माई, काम क्रोध लोभ तज गए प्यारी सतगुर चरनी पाई। जो जन राते राम स्यों प्यारी अनत ना काहू जाई, हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रहे आगाई। अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराई, जन्म मरण दुख कटिया प्यारी

आए तू दाता जिया सबना का तेरा दिता पैर है खाई सुख दुख तेरी आग्या प्यारी दूजी नाही जाय जो तू कराम है सो करी प्यारे अवर किश करन ना जाय दिन रैन सब सुहावने प्यारी जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारी तुर मस्तक लेख लखाई एको आप वर्तदा प्यारी घट घट रहिया समाय संसार कूप ते उधर लह प्यारे नानक हर सरनाय राग आसा महला पहला पट्टी लिखी एक ओंकार सतगुर प्रसाद सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया।

रूप पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज पया कक्के काम क्रोध परमयो हो मूड़े ममता लागे तो

मुंद जोबन बालड़िए मेरा फिर रली आला राम तन फिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम तन फिर मेला हुए स्वामी आप प्रभु कृपा करी सीजा सुहावी संग फिर कै सात सर अमृत भरी कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन अमाहो मुंद सहज सुनो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर पावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै तौ गुण पछाण है ता प्रभ जान है गुण है वस अवगुण नसै तुद बाज एक तिल रह ना साका कहन सुनन ना तीजे नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर बन जारा राम हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम मोल अमोलो सच कर ढोलो प्रभ भावै ता मुंद भली एक संग हर कै करह रलिया औ पुकारी दर खली करन कारण समरथ श्री तर आप कारज सारे नानक नदनी तन सुहागण शब्द अब साधारे हम कर साचा सोहिलड़ा प्रभ आयड़ी मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लियड़ा दीता राम अपना मन दिया हर वर लिया ज्यों भावे त्यों रावे तन मन फिर आगे शब्द सुभागे घर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईए बहु चतुराईए भाई मिले मन पाणी नानक ठाकुर मीत हमारी हम नाही लोकाणी हासा महला पहला अनहदो अनहद वाजे रुण चुन कारी राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारी राम पन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल घर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लिखाया आसन बैसन तिर नारायण तित मन राता विचारी नानक नाम रते बैरागी अनहद रुण चुन कारी तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज घर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना परधाना जप तप कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रतनागर कित रतन कनेरे राम कर मजनू सप्त सरी मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रभ भाई पंच मिले विचारी राम क्रोध कपट बिखिया तज सच नाम उरतारी हौ मैं लोभ लहर लभ थाके पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला हौ बन बनो देख रही त्रिण देख सबाया राम त्रे भवनो तुझह किया सब जगत सबाया राम तेरा सब किया तू ठिर थिया तुद समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन किस सालाही अण मंगिया दान दीजै दाते तेरी भगत भरे भंडारा राम नाम बिन मुक्त ना होई।

आद पुरख अपरंपरु तारे नाम अगमय गोचर अपर अपारा पार ब्रह्म परदानो आद जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण परहर करनी सारी दर सच्चे सत्यारु आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारु साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन परगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला शंत घर दूजा।

कर्म विधाता दुख बसार नहार जियो दुख बसार नहार स्वामी कीता जाका होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक करी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे विचार जियो तू सबनी ताई जितै हो जाई साचा सिरजनहार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जियो ते कबहू ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोहो कुर्बान जियो ताकी सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाइए मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै कालीजै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हौ तिसै बिटोहो कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो तिन फल तोट ना आवै जां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल तोट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करह से सूकह नाही नानक पीड़ ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

सफलियो जन्म सवाया दूजड़ै कामण भरम भुली हर वर ना पाए राम कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मनमुख इयाणी औगुणवंती झूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चा शब्द सुपाए नानक बिन नावे कामण परम पलानी मिल प्रीतम सुख पाए फिर संग कामण जानिया गुरमेल मलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांति आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणी सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके भेखी मुक्त ना पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मलाई सा तन मन आनंद भया हर जियो मेल प्यारे राम सा तन हर कै रस रसी गुर कै शब्द अपारे राम शब्द अपारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन वसी सेज सुहावी जां फिर रावी मिल प्रीतम अवगण नसी जित कर नाम हर सदा त्याई सोहे लड़ा जुग चारी नानक नाम रते सदा आनंद है हर मिलिया कारज सारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा शंत कर तीजा

तुम करहु ता फिर सह खुशी न आवे। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहिला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुक्म पछाने। जिन हुक्म पछाता हरी केरा सोई।

सहज धुन उपजै जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहया समाए यों कह नानक सतगुर मिले है तावत थमिया।

गर्भ लदया जावे मन तू मत मान करह जे हौ किछ जानदा गुरमुख ने माणा हो अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मल खो हो नमाणा सतगुरु अगे मत किसे आप लखावे अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे सतगुर कै भाणे करहें कार सतगुर कै भाणे लाग रहो यूं कह नानक आप छड सो।

महा आनंद सहज भया, मन तन सुख पाया, सो सहो चित आया मन वसाया, अवगण सब वसारी, जा तिस भाणा गुण प्रगट होए, सतगुरे आप सवारी, से जन प्रवान होए जिनी एक नाम दिड़िया, दुतिया पाओ चुकाया, यों कह नानक धन सो वेला, जित मैं सतगुर मिलिया, सो सहो चित आया, एक जंत परम पुले, तिन सह आप पलाए, दूजे पाए फिर हैं, हम मैं कर्म कमाए, तिन सह आप पलाए।

साए सब संसार दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाजह नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाता ज्योति ज्योत समाणी मन मुखा मन मुख मुए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यो रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम छाए ज्यो चक कुम्हार पवाया दुख खावे हैं दुख संचह भोग हैं दुख की बिरद वधाई नानक बिकम से

निस्तारी रामो राम नाम जपया दुख किल विखनास गवाया राम गुर परचह त्याया

लागा। जिन मन तने अर्प चढ़ाया राम, मन तने अर्पया बहुत मन सरदया, गुर सेवक पाए मलाए।

हर हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधु,

पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है। हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ। सोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभे को। दूजा अवर ना कोई हर हर लिवलाई। हर नाम सखाई हर दरगाह पावे मान जियो। सत जुग सब संतोख सरीरा। पग चारे धर्म ध्यान जियो। एता जोग आया अंतर जोर पाया। जत संयम कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया। मन हिरदय क्रोध जलाए दियो। मन हिरदय क्रोध महा बिसलोद। निरपता वह लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना। हों मैं अहंकार वधाया। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर। देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। एता जोग आया अंतर जोर पाया। जत संयम कर्म कमाए जियो। जुग द्वापर आया परम परमाया। हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है। हत किरिया कर्म कमाए जियो। किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया। दोए पग टिके टकाए जियो। महाजुद जोद बहुकीने। विच हों मैं पचै पचाए दियो। दीन दयाल गुर साध मलाया। मिल सत गुर मल लह जाए दियो। जुग द्वापर आया परम परमाया। हर गोपी कान उपाए दियो। कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया। पग चौथा टिकै टकाए दियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया। हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रोते आई।

आया मन हृदय नाम लखाए जियो। कलयुग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टिकै टकाए जियो। आसा महला चौथा हर कीरत मन भाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया तुर मस्तक भाग प्राण जियो। तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग हर नामे हर गुण गाया। मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगति हर नामे हर सुहाया। ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया मिल सतगुर मनुआ मान जियो। हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रदान जियो। तिन हम चरण सरे वह खिन खिन पग धोवह जिन हर मीठ लगान जियो। हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख भागा रती चारी गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी सब एक दृष्ट समत कर देख सब आत्म राम पछाण जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो। सत संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो। हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया बीजा अवर ना कोए जियो। अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कढ ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते।

मुख मस्तक पाग सुभागा जन नानक हर कृपा तारी मन हर हर मीठा लाए जियो हर दया प्रभ तारहु पाखण हम तारहु कड लेव हो शब्द सुपाए जियो आसा महला चौथा मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे मन लागा गुरमत पाओ जियो मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ जीवन मुकत सुख होई जीवन मरन हर नाम सुहेले मन हर हर हृदय सोई मन हर हर वसिया गुरमत हर रसिया हर हर रस गटाक पियाओ जियो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरन ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़ ले जाए जियो हर अंतर बाहर हर प्रभ एको एहो जी अड़ा रखिया ना जाए जियो क्यों जियो रखी जै हर वस्तु लड़ी जै जिसकी वसत सो ले जाए जियो मन मुख करन पलाव कर परमे सब औखद दारू लाए जियो जिसकी वसत प्रभ लए स्वामी जन उभरे शब्द कमाए जियो जग मरन न पाया नित आप लकाया मत जम पकड़ ले जाए जियो तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया जन उभरे हर हर ध्यान जियो हर सोभा पाई हर नाम वडियाई हर दरगाह पैंदे जान जियो हर दरगाह पैंदे हर नामे सीते हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोए दुख मेटे हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया जन उभरे हर हर ध्यान जियो जग उपजै बिनसै बिनस बनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए हर अमृत हर मुख चोए जियो हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया फिर बहोड़ मरन ना होई हर हर नाम अमर पद पाया हर नाम समावै सोई जन नानक नाम आधार टेक है बिन नाम अवर ना कोए जियो जग उपजै बिनसै बिनस बनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आदि निरंजन निरंकार जियो तां की गत कही ना जाई अमित वडियाई मेरा गोविंद अलख अपार जियो गोविंद अलख अपार।

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब में रहया समाए जियो, घट अंतर

मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पेरा मुकी सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया, हर भगत एक मंगा। मेरा मन तन शब्द विगासिया, जप अनंत तरंगा। मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा। दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी। हौ मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया। भगत वच्छल हर बिरद है।

नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। आसा महला चौथा, जिने अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाने राम राजी, जे बाहर हो।

तेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजे गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल पाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर कुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर कुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुर टुठा। जन नानक हर हर होया।

हरे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे जम सास हिरे भाग मणि सुहागन मेरे प्यारे नानक हर पुर धारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे चातरक बूंद जिवें मन सी

सब किस मैं सब किस पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अच्छा।

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाते दूक संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे आप

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम, वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम, सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता, घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता, गुरपुरा पाया नाम ते आया जूए जन्म न हारे, बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे, बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम, तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम, हर धूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे, अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे, मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा, बिनवंत नानक गुर सरण तरिय अपने प्रभ पावा, आसा संत महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर चरण कमल मन बेदया किशियान न मीठा राम राजे, मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजे, हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे, गुण निद गाया सब दुख मटाया हूं मैं बिनसी गांठे, प्रियो सहज सुपाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा, हर नानक बेदे चरण कमल किश आन ना मीठा, ज्यों राती जल माछुली त्यों राम रस माते राम राजे, गुरपुरे अपदेसिया जीवन गत पाते राम राजे, जीवन गत स्वामी अंतर जामी

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अदारा राम राजे मालक जीना।

हर सास ग्रासमा बिसरै कबहू गुर शब्दी रंग माणिय प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख डारा चातरक जाचे बूंद जियो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मानोरथ पूरा राम राजे ताठी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लखाए सब निद दीन दयाला आद माद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे।

पंथ भणी तह साध संग ना डरपी कर कीरत गोविंद गुणी सगल परास्त दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर स्यो ने हो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे मेह हर प्रीत करी जय यो मन दीजै हथ लाइय चित।

मन हर चरण गिहिजै, ऐसी मन प्रीत कीजै। आसा महला पंजवां सलोक, बन बन फिरती खोजती, हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब, हर पाया मन माही। संत जा को खोजह असंख मुनि, अनेक तपे। ब्रह्मे कोट अराधह ज्ञानी, जाप जपे। जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना। कर गवन बसदा तीर्थ है मज्जन, मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी, सगल तुझ आराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक, मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार, संकर जटा तार। चाह है तुझ दयार, मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर, सगल पूरक प्रभ धनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है, जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा, जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक, साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेव है, लक्ष्मी अनक पांत। गुप्त प्रगट जाको राध है, पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्याव है, वसुद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी, सदा सदा त्यावे। सिमरत

सहज सुभाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै भगत।

आवे अवनाशी अवघत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाणे गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सहनार सोभा पूर्वणा मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जा को राम पतार ता कै अनद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

पास सेवा लागी है। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहु ना तामो शरण पावो, करना मैं प्रभ करमया, समर्थ अगत अपार निर्मल।

कीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक।

आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ता की शरण गही निरपो भये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भये राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रही अगन सागर भये शीतल साधे अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याहे पूर्ण साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरले किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त सुमानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निध जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे।

गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत संत। इन्नी रहनड़ी है चाम कन तारी, जाग है संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जाग है, नाम सिमर है अन दिनो, चरण कमल ध्यान हिरदय, प्रभ बिसर नाही एक खिनो। ताज मान मोह बिकार मन का, कलमला दुख जारी, बिनवंत नानक सदा जाग है, हर दास संत प्यारी। मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुखगामी, चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख भागे, प्राण मन तन सब हरे। मन इच पाई प्रभ त्याई, संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री तार, सगल आनंद रस बनिया। मिल सखियां पुछ है कहो कंत नीचाणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी, गुण गूढ़ गुप्त अपार करते, निगम अंत ना पावहे, भगत पाए त्याए स्वामी, सदा हर गुण गावहे। सगल गुण सुगयान पूरन, अपने प्रभ पाणी, बिनवंत नानक रंग राती, प्रेम सहज समाणी। सुख सोहिलड़े हर गावन लागे, साजन सरसियड़े दुख दुश्मन भागे, सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते, प्रभ आप कृपा धारिया, हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया। शुभ दिवस आए सहज पाए, सगल निद प्रभ पागे, बिनवंत नानक सरण स्वामी, सदा हर जन तागे। हासा महला पंजवा, उठवाज बटाउड़िया, तैं क्या चिर लाया, मोहलत पुन्नड़िया, कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया, करहें पाप अमित्या, तन पसम टेरी जमै हेरी, काल बपड़ै जितया, माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया, नानक कमाणा संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया, हाथ हो मिर्ग जिवै, पेख रहन चंद्रायन, सुख हो दुख भये, नित पाप कमायन, पापा कमाणे छड्डह नाही, लै चले कत गलाविया, हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ सेजा रावया, लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन, नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन, मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी, हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी, तरण देहला पया खिन मह, खसम चेतना आयु, दुखा सजाई गणत नाही, किया अपना पायु, गुजा कमाणा प्रगट होवा, ईत उतह खुआरी, नानक सतगुर बाज मूठा, मन मुखो अहंकारी। हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी, कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना, आप नाम जपाया, साध संगत आप हुआ, आप जगत तराया।

धर्म करे दूत भय पलायन, धर्म धीरज सहज सुखिए, साध संगत हर भजे, कर अनुग्रहो राख लीने, मोह ममता सब तजे, गह कंठ लाए गुरमलाए, गोविंद जपत अगायण, बिनवंत नानक सिमर स्वामी, सगले आस पुजायण, निध सिद चरण गहे ता केहा काड़ा, सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा, गह पुजा लीने नाम दीने, करतार मस

आयो माथे जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथ है संग देख करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट है दोख कमाते वलवंच कर उदर पर है मूर्ख गावारा सब किस दे रहे।

सिद्ध साधक देव मुन जन भगत नाम आधारा बिनवंत नानक सदा भजिए प्रभ एक करने हारा खोट ना कीचई प्रभ परखण हारा कूड़ कपट कमाम दड़े जन्मह संसारा संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक ते आया ताज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई आया जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा एक हर चंदौरड़ी अस्त्र किस नाही माया रंग जेते से संग ना जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही पाओ दुतिया जाली है मीत जोबन माल सर्बस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक।

आद कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करहु गात।

नानक मगन होत अलियल गुंजात, अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास, चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा ले वो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर्श।

करत न लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ है हजार। एते चानन होंदिया गुरबेन घोर अंधार। महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मान्या।

विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरै भाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

कोलू चरखा चक्की चक, थल वारो ले बहुत अनंत, लाटू मादानिया अनगाह, पंखी पौंदिया लैन ना साह, सूए चाड़ पवाई है जंत, नानक पौंदिया गणतना अंत, बंधन बंद पवाए सोए, पै किरत नचै सब कोए, नच

मन भाऊ पौड़ी ना तेरा निरंकार है ना ही लय नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाई है जे जरवाना पर हर है जर वेस करेंदी आई है को रह ना परिये पाईये सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत

जित नाव है अर्चा पूजा अगर वास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन।

चार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विद्या आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया।

तिथहु उपज कित संयम एह जाय हम एहो हुक्म है पय कृत फराय हम दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कह सुनहो जनहो इत संयम दुख जाहे पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदै पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला

ए सब नहा जिन करता करना किया चिंता पे करनी ताह सो करता चिंता करे जिन यो पाया जग तिस जो हारी स्वास्थ तिस तिस देवान अपहग।

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया।

यह पढ़ पढ़ परी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेती आरजा, पढ़ी है जेते सास। नानक लेख है एक गल, होर हूं मैं चखना चाख, महला पहला लिख लिख पढ़िया ते ता कढ़िया, बहु तीर्थ भविया ते तो लविया, बहु भेख किया देही दुख दिया, सहोवे जिया अपना किया, अन्न न खाया साध गुआया, बहु दुख पाया दूजा पाया, बस्तर न पहरे अहनिस कहरे, मोन बगूता क्यों जागे गुरबिन सूता, पग उपे ताना अपना किया कमाना, फल मल खाई सिर शाही पाई, मूर्ख अंधे पत गुआई, विण नावे किस थाए ना पाई, रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाई, हर का नाम मन वसाई, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते निह केवल, हम मैं शब्द जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन पावंदे, दर सोहन कीरत गावंदे, नानक कर्मा बाहरे, दर ढो ना लहनी तावंदे, एक मूल ना बुझन अपना, अण हुंदा आप गणाएं दे, हौ ढाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाएं दे, तिन मंगा जे तुझै त्याएं दे, श्लोक महला पहला, कूड़ राजा कूड़ प्रजा।

बल उतर तन करे हछातूय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार।

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है।

इनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया इना जनता कै बस किश नाही तुद वेकी जग ते उपाया इक नानू तू मेल लै इक आपो तुद खवाया गुर किरपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया। सलोक महला पहला।

ना होई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहिया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहिया महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक।

सह साच रहे सबको सच समावे ऋग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर नाए लय परास्त जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन मह रंग किया कल मह वेद अथर बन हुआ नाउ खदाई अल्लुह भया।

कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिका तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

ताग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश पान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याईए सोच होवे तां सच पाईए पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो हो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहु कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गे सो मिले

आज ना कोई पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोय नानक सूतक एव ना उतर है ज्ञान उतारे तोय महला पहला मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर धन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला सभो सूतक भरम है दूजे लगे जाए जम्मन मरना हुक्म है।

सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाई है अपना साकाल बुरी क्यों काली है मंदा मूल ना कीचे ही दे लम्मी नजर निहाली है ज्यों साहिब नाल ना हारी है ते वेहा पासा ढाली है किश लाहे उपर काली है सलोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कड़ेरिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा।

मंग अमृत वेखो एहो न्याओ महला दूजा नाल आने दूसती कदे न आवै रास जेहा जान ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगास महला दूजा नाल आने दोस्ती।

आप कराए करे आप, हों कैस्यो करी पकार, नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। श्लोक महला पहला। आपे पांडे साजियन आपे पूर्ण दे, इकनी दुध समाई है इक चुल्ला रहन चढ़े, एक निहाली पै समन एक ऊपर रहन खड़े।

आप तिस विच जंत उपायिक दिखै थाप उथाप किसनो कहिए नानका सब किछ आपे।

कियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लावहु जित पै बंधन टूटै जन्म मरण दुख फेर कर्म सुख जी जन्म ते छूटै रहाउ माया।

सिद्ध अपियो ना चूके, कही ना उपजे उपजी जाने, भाव अभाव बिहूणा उदय अष्ट की मन बुद्ध नासी, तो सदा सहज लिव लीना, ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा, तो मन सुन समाना, आसा गज साडे तै तै धूतियां, तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ निबग वे हर के संत।

चरावे ऊपर काठी धोए जलावे बसदा खोद करह दोए चूले सारे मान सखावे वे पापी सदा फिर है अपराधी मुखों अपरस कहावे सदा सदा फिर है अभमानी सगल कुटंब डुबावे जित को लाया तित ही लागा तैसे कर्म कमावे कहो कबीर जिस सतगुर भेटै पुनरप जन्म न आवे आसा।

गया न बाजी हारी मुई मेरी माई हों खरा सुखाला पहरों नहीं दगली लगे ना पाला रहाऊ बाल किस बापै जिन्हों जाया।

मेरा मन पाया, हम पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठाहर दोहां बसेरा, कहो कबीर जन एको बूझिया, गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया, आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी कोठन गन बाडाडू, किन्ह बबेकी काटी तू रहाऊ, सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलियां की हो।

हाल आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु व्याकरण तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राजभोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू न उबरना कहो कबीर इं रामह जंपो मेत जन्म मरना आसा फीलर बाबी बल्द पखावज कौआ ताल भजावे।

रहाओ। बैठ सिंह कर पान लगावे, कीस गलौरे लियावे, कर कर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए।

हासा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिद पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाओ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तुई दृष्ट की अग्न जलावे।

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। अर्द शरीर ही नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाद कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकरी टेक राम की, तुर्क रहे पचेहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस के ला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कह ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोवो मेरे भाई, सहज बलोवो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिन ते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपर

खंडस अवगन मेरा रहाउ। जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया। चिंत भवन मन

समझावूं, आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ, दो तुके पंज, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाती तोरै मालनी, पाती पाती जीओ, जिस पाहन को पा

सुनडारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग भुलाना हम।

काल पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्द फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

सो कृत कर लीजै रे मन रहाओ, कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुखताहल काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया मुग्ध कह धन मेरा, जम का डंड मूंड मह लागै किन मह करै निवेरा, हर जाने उत्तम भगत सदावै आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावै सत

चरण रहे कर धरक परे हैं, मुखो नानक सह बाता थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत धर रमते मृतक भय दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चार, सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बिशन महादेव शलिया, मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी, जिन त्रे भवन दसियले गुर प्रसाद दीठी, रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो भाई, जिन साच पछाने

चराए, कह डिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुवान सब करे कराया, जो तुरली

समुंद सिखाई तेह रावण कर खबर ना पाई क्या मांगू किस थिर ना रहाई देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ एक लख पूत सवा लख नाती तेह रावण कर दिया ना बाती चंद सूरज जाके तपत रसोई बैसंतर जाके कपड़े धोई गुरमत

पहला पूत पछहरी माई, गुर लागो चेले की पाई। एक अचंभो सुनो तुम पाई, देखत सिंह चरावत गाई रहाओ। जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा ले गई बलाई। तले रे बैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला। कोरे चार पैस चरावन जा।

राम रमत तिस सब किश सूजै बाईस चौपदे तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जियो के तिप दे अठ दो तुके सत एक तुका एक एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद बिंद तेजन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उदर राखिया बहुर लागी माया प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया पूरब जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया रहा बारक ते बिरद भया होना सो होया जा जम आए चोट पकरै तब है काहे रोया जीम न की आस करह जम नेहा।

आओ नाब कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आस वड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब

अवतार चिरायु कैसे खसम हमारे तू बामन मैं कांसिक जुलहा बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे हर सौ मोहर त्याना आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन सुमान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ नैन देख पतंग उर्जय

मैं है तेरा सोच विचार ना देखे खबर ना कर है दीन के बौरे ता ते जन्म अलेख रहाव साचक ते बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पीता।

जीव के दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरे हीरा वेद पवन मन, सहजे रहे आसमाई। सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। कह कबीर हीरा अस देखियो, जग मह रहा समाई। गुप्त हीरा प्रगट भयो, जब गुर गम दिया दिखाई। आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी, सोहरे पेये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर धरी। भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की धरी रहाओ। कहो कबीर जब लोहरी आई, बड़ी का सुहाग टरियो। लोहरी संग पई अब मेरे, जेठी और धरियो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले राख्यो राम जनिया नाओ। इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा, बिटवह राम।

रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़े रहाऊ। घूंघट काढ़ गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

सोकंत नार हम सोई कहत कबीर सुनो रे लोई अब तुमरी प्रतीत ना होई आसा कोरी को काहू मर्म ना जाना सब जागे आनत नायो ताना रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना।

तरन आकाश की कर गह बनाई, चंद सूरज दोए साथ चलाई, पाई जोर बात एक कीनी, तह तांती मन माना, जो लाहे घर अपना चीना, घट ही राम पछाना।

ये तीर्थ लावे किस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

ऐसे ओए नर फिर फिर जोनी आवह मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाउ जल तरंग हर फेन बुद बदा जल ते भिन्न न होई एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचर ध्यान न होई मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं बयालीस लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काहे करूं आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं ईबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तू सर्वमही आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी।

अपना खसम त्यावो सोइने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साप कुंच छोड़े भिख नहीं छाड़े उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे को कीजै ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर

आदि मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जामह तां की केतक आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिहि संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

सुगंध निवासा माधो सतसंगत शरण तुम्हारी हम अवगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपुरे जस कीरा सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा जाति ऊंचा पाती ऊंचा ऊषा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया तन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो।

हर हर हर हर हर हर हरि, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाउ। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। निमित नाम देव दूध पियाया, तौ जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखै देखै सुनै बोलै। दौर्यो फिरत है रहाउ, जब कछ पावै तब गर्भ करत है। माया गई तब रोवन लगत है, मन बच क्रम रस कसै लुभाना।

जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद प्रमत फिरत बहु जन्म बिलानी तन मन धन नहीं धीरे लालच बिख काम लुभ दराता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार ना जानिया गुण ते प्रीत बड़ी अनभांति जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया ध्यान मान मन एक मय प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त भये जोत समाए समानी जाके अशली प्रभ पहचानिया धने धन पाया धरनी तर मिल जन संत समानिया महला पंजवा गोविंद गोविंद गो

हीरा रवदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुत कारिया ओ कर कर सुनिया हिरदय वसिया पार ब्रह्म।

वध भागा रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर विबह ना जानस कोई जे तावह ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई रहाउ जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया दास द्वारा दे आहार अगन मह राखे ऐसा खसम हमारा।

साध दिनहु मोहब्बत जिन से सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते भोए भारथिये रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जड़ेंदी माओ आए सफल से।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीदै खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

मन पीरिया कंचन मन्ने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहिया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक कूंजा चेत डौ सावन बिजलियां से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़िया चले चलन हार बचारा ले मनो गा देंदिया छे माह तुड़ंदिया हिक खिनो जिमी पुछै।

प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाउ राव सस दीपक जा के त्रे पवन एका जोत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाध करह नित झगड़ा दोहु लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागे सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला

पाई, ऐसा सतगुर सेविए मना, जित सेवे हैं गोविंद प्रीति उपजे, अवर विसर सब जाय, हर सेती चित गहर है, जरा का पौ न होवे, जीवन पदवी पाए रहाउ, गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी, आप सेती आप खाया, ता मन निर्मल हुआ, ज्योति ज्योत समई, बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाईए, जे लोचै सब कोई, कूड़ै की पाल विचों निकलै, ता सदा सुख होए, नानक ऐसे सतगुर की, क्या ओह सेवक सेवा करे, गुर आगै जियो तरे, सतगुर का पाणा चित करे, सतगुर आपे कृपा करे, गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी, हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है।

जाई। हर मेरा धन मेरे साथ चाले, जहां हों जाऊं तहें जाई। सो झूठा जो झूठे लागे।

विसरे हर हर करह सदा मन चीत रहाउ हृदय जिन कह कपट वसे बाहर हूं संत कहाहे तृष्णा मूल ना चुकई अंत गए पछताहे अनेक तीर्थ जे जतन करे ता अंतर की हम मैं कदे ना जाय जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राय तिस देश जाए कर्म होवै सोई जन पाए गुरमुख बूझै कोई नानक विचो हम मैं मारे ता हर भेटै सोई गुजरी महला तीजा तिस जन शांत सदा मत निश्चल जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझै हर चरणी चित लाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह सदा सुख होई रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होवै पारस होए ता पूज कराए जो उस पूजे सो फल पाए दीखिया देवै साच बुझाए बिन पारसै पूज ना हो वई बिन मन परचे अवरां समझाए गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओहो मार्ग पाए नानक बिन नदरी किछु ना पाई है जिस नदर करे सो पाए गुर प्रसादी दे वडियाई अपना शब्द वरताए गुजरी महला तीजा पंच पदे ना कांसी मत उपजै ना कांसी मत जाए सतगुर मिले मत उपजै।

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा।

देव मोकौ राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाउ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख सागर।

कथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभ पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड भागी हर नाम।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव। धीरज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर सिउ चित लावे। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, ते भागहीन मोए मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मलावे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा घर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वास है। शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे ग्रिस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करहें जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिव लाई। गुजरी महला पंजवां चौपदी कर पहला, एक ओंकार।

से तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरया, सिर सिर

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हुम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

अठसठ मज्जन कर इचनाना भ्रम आए धर सारी अनक सोच करह दिन राती बिन सतगुर अंधियारी तावत तावत सब जग तायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मह पाया माई खाते आयो घर कूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहाओ हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुलहा हर तन बेड़ी।

नव निध पाई हाथ चरेहु हर थूका खावहु खर्चहु तूट न आवे हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवा जिस सिमरत सब किल विखनासह पितरी हुए उदारू सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत न पारू पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश रहाउ सतगुरु तुम कहो हुए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत

काटी काम क्रोध माया बिख ममता ए व्याध ते हाटी हर जस साध संग मिल गायु गुर प्रसाद पयु मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायु रहाउ जो कछ कियो सोई भल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्तर सब एक समानी जोग जुगत निशानी पूरन पूर रहो सर्ब थाई आन न कतहु जाता घट घट अंतर सर्ब निरंतर।

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे।

पंजवा मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश न रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साध ते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल भ्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दरड़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटे है माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति

तह भरम अंधेरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्व प्रत पालक, प्रभ को सदा सलाही। रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही कहो प्रभ आही। नानक टेक पई करते की, होर आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवां, कर कृपा अपना दर्स दीजै। जस गावो निस हर भोर, केस संग दास पग चारू, एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चितवो हर रसन आराधो।

पंजवा आप जा समित हुए जग कीरत दरगाह बैसन पाई है जम की त्रास नास हुए खिन मह सुख आनंद से ती घर जाइए जाते काल ना बिरथी जाइए आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा ते

व्यवहार मिथ्या भज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आगै टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करन कारण समर्थ श्री धर सरन ता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक।

चरण कमल अराद हृदय एक स्यो लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया।

महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महादीर गरोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करन कारण योग मन तन बांछिए जन तूर कोट जन्म के लह पातिक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते माध्य आसा कूकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमणं।

काल सिमरण मिटत जूनी भवन मित्र पुत्र कलत्तर सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पकार है कतह नाही चोट हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवां घर चौथा दोपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज

मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मतंत सिमरन काट जम दूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाऊ कर अनुग्रहो प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भई।

बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उधरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरे अष्टपदिया महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे केत हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात घर आंगन मेरै ओह पपत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन संभू छोटो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै।

काम क्रोध अहंकार तदियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियले

इतना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रभ बख्श ना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

आई तू वड पुरख अगम सरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिल लाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दृढ़ मती गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहित व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लभ लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन चाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छी सोई फल पाई नाच रे मन गुर कै आगै गुर कै भाणै नाच है ता सुख पाव है अंते जम पौ भागै रहाउ आप नचाए सो भगत कहियै अपना प्यार आप लाए आपे गावै आप सुनावै इस मन अंधे को मार्ग पाए अन

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है। अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी। गुरमुख नाम अमृत जल पाइए जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ। सनकस नंदन नारद मुन सेव है अन दिन जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहलाद जन आए तिनकी पैज सुवारी।

कथा न पावे ओए डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल धोवे ओहो मल पख माया धारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी एहो परपंच खेल किया सब करतै हर करतै सब कल धारी हर एको सूत वरतै जोगे अंतर सूत खिंचै एकंकारी रसन रसन रस गावह हर गुण रसना हर रस धारी नानक हर बिन अवर

बंधव पतत पावन देव पै त्रास नास कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार करनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुद करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सह

बेकार रख धर्म परम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ पंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक श्री धर पय गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस हरीत बेत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

और पौड़ी अपना आप अपायुन तदहो होर ना कोई मता मसूर ते आप करी जो करे सो होई तदहो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई तदहो आपे आप निरंकार है ना उपत होई ज्यों तिस भावै तिवें।

नानक हुक्म बुझ परवान होए तां फल पावै सच कतनी बदनी करता फिरै हुक्मै मूल ना बुझई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया।

आई ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करी पसाऊ मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ महला तीजा नानक मुक्त द्वारा।

सतगुर मिलया हो मैं गई जोत रही सब आई इहो जियो सदा मुक्त है सहजी रहया समाई पौड़ी।

वसयो मन आए त्रिक अवेहा जीव्या क्या जुग मह पाया आए माया छोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाए हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाए जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वसया मन आए हर नाम त्यावह रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाए नानक सतगुर सो तन सौ।

पाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लिव लाए पौड़ी। ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रह हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा, रैन सबाई जल मोई कंतना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाए कितै ना पाईऐ हर कर्म बधाता। गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा, काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड जाए। ऐस नूं कूड़ बोल के खवालीऐ जे चलदिआं नाल ना